एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की सातवीं तिथि, तदनुसार 27 मई सन 2026। प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: एक 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन

ईश्वरीय शक्ति अदृश्य शक्ति है। ये शक्ति हमारे भीतर विश्वास, सहनशीलता और सच्चाई की प्रेरणा है। ये अदृश्य शक्ति हमें सही राह पर चलने की प्रेरणा देती है। भले ही हमारे सामने कितनी भी चुनौतियाँ क्यों ना आए, कई बार जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तब कोई अदृश्य सहारा हमें फिर से पुनः प्राप्ति की ताकत देता है। यही ईश्वर की लीला है। हमें चाहिए हम इस अदृश्य शक्ति पर विश्वास रखें। जब मनुष्य अपने कर्मों में सत्य, प्रेम और श्रद्धा रखता है, तभी ईश्वरीय शक्ति स्वतः उसके जीवन में प्रवाहित होती है। ये शक्ति न तो दिखती है और न ही उसे बंद किया जा सकता है, लेकिन उसका प्रभाव अमिट होता है। यही विश्वास हमें हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति देता है और जीवन को एक ऊंचे उद्देश्य की ओर ले जाता है।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। ये हमारा जीवन प्रभु से मिला उपहार है, इसे सत्कर्म में लगाने से ही इसे सफल माना जा सकता है।

ये थी वंदना कार्यक्रम की अंतिम भक्ति रचना। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं श्री राम चरित मानस गान। आज आप सुनेंगे भाग 101।

परशुराम और लक्ष्मण के वाक युद्ध से स्थिति बिगड़ती देख श्रीराम ने ऋषि की क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए क्षमा याचना की। बालक यदि चपरता भी करते हैं तो गुरुजन तथा माता पिता के हृदय में आनंद उत्पन्न होता है, अतः समदर्शी सुशील धैर्यवान तथा ज्ञानी मुनि होने के नाते उन्हें इस अबोध दुधमुहे बच्चे को क्षमा कर देना चाहिए। किंतु तभी लक्ष्मण ने मुनि को एक बार फिर छेड़ा। खड़े खड़े मुनिवर के चरण दुग गए होंगे, सो उन्हें क्रोध त्याग कर बैठ जाना चाहिए। यदि टूटा हुआ धनुष उन्हें इतना ही प्रिय हो तो किसी गुणी को बुलवाकर उसे जुड़वा देने का उपाय करना चाहिए। स्थिति गंभीर होते देख राजा जनक समेत उपस्थित जन आतंकित और भयभीत हो गए। श्रीराम के शीतल वचन सुनकर परशुराम जी ने कहा, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं, किंतु ये मन का मैला और शरीर से वैसा ही सुंदर है जैसे विष से भरा सोने का कलश। श्रीराम ने एक बार फिर उनका क्रोध शांत करने के उद्देश्य से उन्हें सच्चाई से अवगत कराया कि वो नाहक ही उस बालक पर क्रोध कर रहे हैं, वास्तविक दोषी तो स्वयं राम हैं, और जिस प्रकार भी मुनि का क्रोध समाप्त हो वो सभी उपाय करने को तत्पर हैं। किंतु मुनि का क्रोध दूर भी हो तो कैसे, लक्ष्मण तो अब भी उन्हें टेढ़ी दृष्टि से ही ताक

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

सुबह 7:10 पर सुप्रभात कार्यक्रम में आज विशेष के अलावा जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि, ईद उल अजहा, रमणीक स्थल बीड बिलिंग और पर्यावरण में कठफोड़वा पक्षी पर जानकारी साझा की जाएगी। 7:40 पर आप सुनेंगे हिमाचली गीतों और लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग। 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज हम आपको सुनवाएंगे 1995 में बनी फिल्म रंगीला के गीत। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुनेंगे सुबह 9:00। फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा सुबह 10:00। 10:30 पर सुनिएगा हिमाचली गीत और लोकगीत। फिल्मी कव्वालियों का आनंद लीजिएगा 11:05 पर। 11:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित किया जाएगा। दोपहर 12:00 सुनिएगा कार्यक्रम सैनिकों के लिए। 12:30 पर महिलाओं के कार्यक्रम घर परिवार में आज बातचीत का विषय रहेगा ईद उल अजहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि, विज्ञान से संबंधित जानकारी में आज रॉकेट पर जानकारी साझा की जाएगी और खान पान में डेग पुलाव बनाने की विधि बताई जाएगी। दिन में 3:05 पर सामयिक चर्चा आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले की जाएगी। दोपहर 1:10 से लेकर शाम 5:00 तक हमारे केंद्र से रिले किए जाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम। गैर फिल्मी भजन आपको सुनवाएंगे शाम 5:10 पर और सदाबहार संगीत सुनिएगा शाम 6:06 पर। शाम 5:30 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा मंच। मौजा ग्राइंदियां ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:30 पर। इसमें कृषि औजारों की देखभाल इस विषय पर जानकारी साझा की जाएगी। शाम 7:10 पर किसान वाणी कार्यक्रम में आज किसान भाई सुनेंगे हिमाचल प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र और साथ ही भेंट वार्ता भी सुनवाई जाएगी। रात्रि 8:00 सुनिएगा विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस देशगान 8:30 पर। रात 9:15 पर एक ही गीतकार कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुनिएगा कौसर मुनीर द्वारा लिखित फिल्मी गीत। 9:30 पर चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। 10:30 पर सुनेगा पुरानी फिल्मों से गीत कार्यक्रम होगा चित्रपट संगीत। आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रातः 9:20 पर सुबह 11:00, दोपहर 3:00, शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9:00 News@9, रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

ये थी आज प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। सुबह के 6:55 होने को है। थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से पहले संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: पूर्व आईपीएस अधिकारी बाला। इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केन्द्रेण अनुप्रवेशेण अन्यैः कारणैः च जनसांख्यिकीय परिवर्तनस्य समाह्वानान् निवारणाय उच्चस्तरीय समित्याः निर्माणं विहितम्। सामाजिकान्तरजालीये पटले केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः ह्यः अवदत् यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य पूर्व न्यायाधीशः प्रकाश प्रभाकर नावलेकरः समित्याः अध्यक्षः भविष्यति। जनगणना आयुक्तेन सह पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तवः, अर्थशास्त्री डॉक्टर समीका रवि इत्येषा च समित्याः सदस्यरूपेण नियुक्तः अस्ति। गृहमंत्रालयस्य संयुक्त सचिवः एकः वैदेशीयः समित्यां सदस्य सचिवरूपेण कार्यं करिष्यति। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन उक्तं यत् ड्रोन यन्त्रैः मादकद्रव्याणां शस्त्राणां च तस्करणं निवारयितुं अग्रिमेषु षण्मासेषु एव सर्वकारः ड्रोन अवरोधप्रणाल्याः नियोजनं प्रचालयिष्यति। राजस्थानस्य बीकानेर जनपदस्य सांचू सीमा पोस्ट इत्यत्र बीएसएफ सैनिकान् संबोधयन् सः अवदत् यत् यद्यपि सीमापारात् उद्भूताः विभीषिकाः महत्वपूर्णानि एव सन्ति, तथापि देशस्य अन्तः एतादृशानां विभीषिकानां साहाय्यं कुर्वताम् आन्तरिकतत्त्वानां विषयेपि समानं ध्यानं दातव्यम्।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी

0: और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेश मंत्रिणा पेनी वोंगह इत्येषा ह्यः नवदिल्ल्यां प्रधानमंत्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मिलितवती। श्रीमोदी रक्षा व्यापार प्रौद्योगिकी इत्यादिषु क्षेत्रेषु वर्धमानस्य भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक सामरिक सहभागित्वस्य विषयेपि आपूर्ति श्रृंखलायाः स्थितिस्थापकतायाः विषये च चर्चितवान्। प्रधानमंत्री अवदत् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशौ स्वतंत्रं मुक्तं सुरक्षितं समृद्धं च हिंद प्रशांत क्षेत्रस्य कृते निरन्तरं कार्यं करिष्यतः। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः सुश्री वोंग इत्यनया सह 17वें विदेश मंत्रिणां फ्रेमवर्क संवादेत्यस्य सह अध्यक्षतां कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् ते हिंद प्रशांत प्रदेशे पश्चिम एशियायाः स्थितिम् अन्येषु क्षेत्रीय वैश्विक बहुपक्षीय विषयेषु च मतानाम् आदान प्रदानं कृतवन्तः। भाजपेति दलाध्यक्षः नितिन नवीनः ह्यः नवदिल्ल्याः दलस्य मुख्यालये नो बीजेपी इति उपक्रमस्य अन्तर्गतं 12 देशानाम् अभियानप्रमुखैः सह वार्तालापम् अकरोत्। श्रीनवीनः ब्राजील, जर्मनी, इण्डोनेशिया, मलेशिया, मॉरिसस, न्यूजीलैंड, सेशेल्स, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम इत्यादीनां देशानां प्रतिनिधीनां स्वागतम् अकरोत्, तथा च भाजपेति दलस्य यात्रायाः विचारधारायाः संघटनात्मक शक्तेः लोकसेवायाः प्रतिबद्धतायाः च विषये अवधानं प्रदत्तवान्। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः दृढविश्वासं प्रकटितवान् यत् भारत कनाडा आर्थिक सहभागित्वस्य अग्रिमः अध्यायः विश्वासेन प्रेरितः भविष्यति, येन द्वयोः राष्ट्रयोः संयुक्त समृद्धिः भविष्यति। गतरात्रौ कनाडा देशस्य टोरेंटो नगरे राजनैतिक पुनरुत्थापनात् वाणिज्यिक वितरण पर्यन्तम् इति मंत्रिस्तरीय पूर्ण सम्मेलनस्य उद्घाटन सत्रं संबोधितवान् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
3: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ विदेश मंत्रियों की 17वें द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। बोर्ड ने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को अपनी मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी और इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. The centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. The committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar. Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary, Foreigners 1 and Home Ministry will serve as the Member Secretary in the committee. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah said that infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. The Supreme Court will today pronounce judgment on a batch of petitions challenging the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rolls done by the Election Commission of India. The controversy primarily centres around the ECI's requirement that voters whose names were absent from the 2002 electoral rolls or the 2003 rolls in certain states must establish ancestral linkage to a person whose name appeared in those electoral rolls. The petitioner's side had argued before the apex court that the condition could potentially disenfranchise genuine voters particularly marginalized and migrant populations who may not possess documentary proof tracing their ancestry to earlier electoral records. Central Board of Secondary Education, CBSE, has clarified that there has been no security breach in its actual on-screen marking system used for evaluation of answer books. The board said that the URL http://cbse.onmarks.co.in is the testing site only with sample data for internal testing and review purposes. CBSE emphasized that no security breaches have come to light on the portal deployed for the actual evaluation work. The board stated that on-screen marking system has been implemented to enhance transparency in assessments with strong grievance redressal mechanisms. The board also reassured the concerned that robust safeguards are in place to ensure the integrity and security of the evaluation platform. In Punjab's municipal general elections held yesterday, nearly 64% voting was recorded. The polls were held to elect representatives in 102 civic bodies, including 8 municipal corporations, 75 municipal councils, and 19 Nagar Panchayats. The counting of votes is scheduled to take place on 29th May 2026. Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal has expressed confidence that the next chapter of the India-Canada economic partnership will be driven by trust, leading to the shared prosperity of the two nations. Addressing the opening ministerial plenary session from political reset to commercial delivery in Toronto, Canada last night, Mr. Goyal emphasized that trust between the nations is unlocking new trade and investment opportunities as both sides push for comprehensive economic partnership agreement.
5: Our effort at the government level is to make it easier to work with each other. Free trade agreement, of course, will help with reducing barriers to trade, tariff and non-tariff. It will open up a plethora of investment opportunities, but more significantly will be the messaging that will go out with the free trade agreement or the comprehensive economic partnership. We will achieve a very good, fair, equitable and balanced agreement, which will define the roadmap as the two economies power on.
4: India Meteorological Department has issued a red alert predicting heat wave to severe heat wave conditions over Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha today. Royal Challengers Bengaluru stormed in the final of the IPL 2026, beating Gujarat Titans by 92 runs in the qualifier one match at Dharamshala last night. And that is the end of this news bulletin.

कोई प्रशंसा करे या निंदा, दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान होने का अवसर।

मनोरंजन और जानकारियों का कार्यक्रम सुप्रभात आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। आज 27 मई है और श्रोताओं आज का दिन इतिहास में अपनी खास और विशेष जगह रखता है, तो अब नजर डालेंगे आज विशेष पर। 1957 में 27 मई के दिन कॉपीराइट अधिनियम पारित किया गया था, इसे 21 जनवरी 1958 को लागू किया गया था। 2010 में भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में परमाणु तकनीक से लैस धनुष और पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। साल 1964 में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था और गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। सत्रह सौ 1703 में सेंट पीटर्सबर्ग की

स्थापना हुई थी। रूस के इतिहास में इस शहर का खास महत्व है और इसे 1917 की महान रूसी क्रांति के गवाह के तौर पर विशेष पहचान मिली। ५१ में बम्बई, जिसे अब मुंबई कहा जाता है, वहां तारो पोरवाला मछली घर का उद्घाटन हुआ था। आज ये मछलियों के एक बड़े संग्रह के तौर पर विख्यात है। यहाँ देश दुनिया की बहुत सी प्रजातियों की मछलियां और अन्य समुद्री जीव रखे गए हैं। १९९९ में भारत पर्यावरणविद थॉमस कैरी को विश्व के सबसे बड़े पर्यावरण पुरस्कारों में से एक सोफी पुरस्कार से नवाजा गया था। और जिन महान हस्तियों के जन्म आज के दिन हुए उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर रवि शास्त्री का जन्म 1962 में हुआ था। 1930 में स्वतंत्रता सेनानी रवि नारायण रेड्डी का जन्म हुआ था, जिन्होंने किसानों और मजदूरों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। अगली जानकारी आपके साथ साझा करेंगे इस गीत के बाद।

इस गीत के बाद फिर से आप सबका स्वागत है सुप्रभात कार्यक्रम में। श्रोताओं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि हर साल 27 मई को मनाई जाती है। 27 मई 1964 को नई दिल्ली में उनका निधन हुआ था। नेहरू जी को आधुनिक भारत का शिल्पकार कहा जाता है। उन्होंने देश को आगे ले जाने के लिए कई मजबूत स्तंभ खड़े किए। IIT, IIMS और इसरो जैसी बड़ी संस्थाओं की नींव रखने में उनकी दूरदर्शिता का बड़ा हाथ था। साथ ही शीत युद्ध के दौरान भारत को किसी महाशक्ति के दबाव में न लाकर एक स्वतंत्र विदेश नीति दी। जवाहरलाल नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे और सभी बच्चे प्यार से उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। और श्रोताओं, ईद उल अजहा, जिसे बकरीद भी कहा जाता है, इस्लाम धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये त्योहार रमजान के पवित्र महीने के खत्म होने के लगभग 70 दिनों बाद और इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने जुल हिज्जा के 10वें दिन मनाया जाता है।

ये त्योहार इंसान को अपने भीतर के अहंकार, स्वार्थ और बुराइयों को छोड़कर इंसानियत के रास्ते पर चलने और दूसरों की मदद करने का संदेश देता है।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं मनोरंजन और जानकारियों का कार्यक्रम सुप्रभात। रमणीक स्थलों की श्रृंखला में आज आपको लिए चलते हैं बीड़ बिलिंग। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित बीड़ बिलिंग को भारत की पैराग्लाइडिंग राजधानी कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन पैराग्लाइडिंग स्थलों में से एक है। यदि आप रोमांच, अध्यात्म और प्राकृतिक सुंदरता का एक साथ अनुभव करना चाहते हैं तो बीड़ बिलिंग एक आदर्श जगह है। यहाँ की मुख्य गतिविधि पैराग्लाइडिंग है। यहाँ आप अनुभवी पायलट के साथ पैराग्लाइड कर आसमान से धौलाधार पर्वत श्रृंखला और हरी भरी घाटी का नज़ारा देख सकते हैं। बीड़ में तिब्बती मठ हैं जिसके कारण यहाँ का माहौल बेहद शांत और आध्यात्मिक है। बीड़ की लैंडिंग साइट को स्थानीय लोग सनसेट पॉइंट भी कहते हैं और शाम के समय घास के मैदानों में बैठकर आसमान से उड़ते पैराग्लाइडर्स के पीछे छिपते सूरज को देखना एक जादुई अनुभव होता है। मार्च से जून के बीच मौसम सुहावना होता है और ये समय पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये स्थान सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है तो आप यहाँ आसानी से आ सकते हैं।

और इस गीत को सुनकर आपको ऐसा ही लगेगा कि आप बीड़ बिलिंग से बेहद ही खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले रहे हैं।

सुप्रभात, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। पर्यावरण में आज हम जानकारी लेकर आए हैं कठफोड़वा पक्षी के बारे में। ये दुनिया के सबसे दिलचस्प और अनोखे पक्षियों में से एक है। इसे वुडपेकर भी कहा जाता है क्योंकि यह अपनी मजबूत चोंच से पेड़ के तनों को खोदकर अपना घोंसला बनाता है और साथ ही भोजन की तलाश भी करता है। कठफोड़वा पक्षी की चोंच छैनी की तरह तेज और मजबूत होती है और इसी कारण से ये आसानी से कठोर लकड़ी में भी छेद कर लेते हैं। इस पक्षी की जीभ इसकी चोंच से 3 गुना लंबी होती है। कठफोड़वा की पेड़ पर बार करने की अद्भुत क्षमता है। ये 1 सेकंड में लगभग 15 से 20 बार पेड़ के तने पर चोंच से प्रहार कर सकता है। और श्रोताओं, इतनी तेजी से प्रहार करने के बाद भी इनके दिमाग पर कोई चोट नहीं लगती और इसकी वजह इनकी खोपड़ी की खास बनावट है। वुडपेकर का मुख्य भोजन पेड़ की छाल से मिलने वाले कीड़े, चींटियां, दीमक और लार्वा है। कठफोड़वा को पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इनके द्वारा बनाए गए पुराने खोखलों में बाद में अन्य पक्षी और गिलहरियां अपना घर बनाते हैं। इस तरह ये जंगलों के इकोसिस्टम को बनाए रखने में मदद करते हैं। तो ये थी जानकारी कठफोड़वा पक्षी के बारे में और उम्मीद करते हैं आज के सुप्रभात कार्यक्रम की सभी जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी।

अभी आप सुन रहे थे मनोरंजन और जानकारियों का कार्यक्रम सुप्रभात, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। आइए अब सुनते हैं हिमाचली गीतों और लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं सोना कुमारी के गाए इस लोकगीत के साथ।

हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को हैं। थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ रिले की जाएगी।

0: नमस्कार
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
5: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
4: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
6: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में SIR प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थीं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
0: याचिकाओं में SIR प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि SIR प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि SIR प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
4: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
7: CBSE बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
4: अमरीका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन NASA ने चंद्रमा पर

0: inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value, with its bold design and spacious comfort. It's built to impress every single day.
0: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
1: Yes, Rs. 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
0: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: Most TVs keep you tied to the city, but you deserve the freedom to explore. Introducing the Maruti Suzuki e-Vitara. With its massive 61 kilowatt hour battery and a range of 543 kilometer, the horizon is finally yours. Own it for Rs. 10.99 lakh with a battery EMI of just Rs. 3.99 per kilometer. Backed by India's largest charging network, India Goes Electric.
1: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
0: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
1: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 8999 per month.
0: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
1: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
4: एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं फिल्म रंगीला के गीत। इस फिल्म में मुख्य कलाकार थे आमिर खान, उर्मिला मारतोंडकर और जैकी श्रॉफ। रंगीला का संगीत एआर रहमान का था। रंगीला का संगीत भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। यह फिल्म महान संगीतकार एआर रहमान की पहली ओरिजिनल हिंदी एल्बम थी। रहमान साहब ने इस फिल्म के संगीत में वेस्टर्न बीट्स और क्लासिकल का ऐसा फ्यूज़न डाला कि लोग दीवाने हो गए थे। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का और आरडी बर्मन अवार्ड फॉर न्यू म्यूज़िक टैलेंट भी मिला था।

रंगीला फिल्म के सभी खूबसूरत और जिंदा दिल गाने महबूब ने लिखे थे। आशा भोंसले, उन्होंने रंगीला रे और तन्हा तन्हा जैसे गानों को अपनी खूबसूरत आवाज़ दी थी। इन गानों ने उनके करियर को एक नया और फ्रेश मुकाम दिया था। तन्हा तन्हा के लिए उन्हें उस साल का फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड भी मिला था। आइए सुनते हैं उसी गीत को।

0: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
1: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
0: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
0: Yes, Rs. 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
3: हो गया इंतजाम।
4: किसका?
3: गुड्डी की फीस का।
4: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है? ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत। वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए।
5: आरबीआई कहता है।
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
1: Meet the Maruti Suzuki Grand Vitara, where strong hybrid technology meets premium comfort and safety. Now at an effective price starting from just Rs. 9.72 lakhs.
0: Yes, Rs. 9.72 lakhs. Offer valid till 31st May. Own this style icon at an EMI of just Rs. 899 per month.
1: Experience luxury with a panoramic sunroof, ventilated seats, 360-degree view camera, heads-up display and 6 airbags as standard.
0: Hurry, limited stock available. Visit your nearest Nexa showroom. PNC apply.
2: Nexa.
1: Inspiration built into every arrival. This May, drive home your favorite Nexa car and unlock new possibilities.
0: Meet the Maruti Suzuki Fronx, the SUV that's big on style and smart on value. With its bold design and spacious comfort, it's built to impress every single day.
1: And now, it's yours at an effective price of just Rs. 6.70 lakh.
0: Yes, Rs. 6.70 lakh. Valid till 31st May. Don't miss out. Visit your nearest Nexa showroom and bring home your Fronx today.
1: Hurry, offers for a limited time only. TNC apply.
2: Nexa.
7: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
8: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
9: एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुन रहे हैं फिल्म रंगीला के गीत। रंगीला के गीतों को आवाजें दी हरिहरन, सुरेश वाडेकर, उदित नारायण, AR रहमान, कविता कृष्णमूर्ति, आशा भोसले और श्वेता सेट्टी ने। ये गाना आपको सुनवा रहे हैं जिसे गाया है AR रहमान और श्वेता सेट्टी ने, जो अपने समय का एक बेहद आधुनिक और अलग तरह का गाना था।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम के अंतर्गत आज बस इतना ही। आज हमने आपको सुनवाए फिल्म रंगीला के गीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9 बजे हैं और संगीता हाजिर है गीतांजलि कार्यक्रम के साथ। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं राहत फतेह अली खान के गाए इस गीत के साथ है। फिल्म है अनजाना अनजानी।

एक्शन रीप्ले इस फिल्म का गीत अभी श्रोता सुन रहे थे, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजें थी। इस गीत का संगीत तैयार किया था प्रीतम चक्रवर्ती ने और बोल लिखे थे इरशाद कामिल ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं नीति मोहन और साथियों की आवाजों में, फिल्म है भारत, संगीतकार हैं विशाल शेखर और गीतकार इरशाद कामिल।

0: ਵੇਖਿਆ।
1: गीतांजलि कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको सुनवाते हैं मोहित चौहान और अंतरा मित्रा का गाया हुआ गीत। प्रीतम का संगीत है, फिल्म है राजनीति।

0: सकते हैं।
1: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
2: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
1: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
2: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न, 78.85% रहा मतदान। कल 28 मई को पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण का मतदान होगा। 1274 पंचायतों में डाले जाएंगे वोट। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश के लिए एक विशेष और सुव्यवस्थित धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाने पर दिया बल। और मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी के चलते पर्यटकों ने भारी संख्या में किया प्रदेश का रुख। कुल्लू के होटलों में 90% हुई ऑक्यूपेंसी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण का मतदान कल संपन्न हुआ, जिसमें 1293 ग्राम पंचायतों में चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई। निर्वाचन आयोग के मुताबिक पहले चरण में 78.85% मतदान दर्ज किया गया, जो वर्ष 2021 में हुए पंचायत चुनावों से ज्यादा है। वर्ष 2021 में पहले चरण में 77% मतदान हुआ था। अधिक ब्यौरा इस रिपोर्ट में।
1: पंचायती राज चुनाव के पहले चरण में प्रदेश भर में मतदाताओं में भारी उत्साह देखा गया। मतदान 78% से अधिक दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा 84% मतदान कुल्लू जिला और सबसे कम 69% लाहौल स्पीति में दर्ज हुआ। सिरमौर के कमरव ब्लॉक की तिलोधार ग्राम पंचायत कुनेर धमौन में सबसे ज्यादा 97% वोट पड़े। 10 जिलों में महिला मतदाताओं का प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा। कुल्लू में 85% महिलाओं ने वोट डाला। नए मतदाताओं के साथ 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग भी उत्साह के साथ अलग अलग स्थानों पर मतदान करने पहुंचे। प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्य के नतीजे देर रात घोषित किए गए हैं। इस बीच शिमला जिला के रामपुर में नरेन पंचायत के वार्ड नंबर 1 में मतदान प्रक्रिया के दौरान गंभीर त्रुटि के चलते मतदान स्थगित किया गया। यहां 30 मई को दोबारा मतदान होगा। उपायुक्त शिमला ने गंभीर लापरवाही को देखते हुए पोलिंग पार्टी के 4 अधिकारियों को निलंबित किया है। इधर मंडी जिला के करसोग पंचायत समिति के वार्ड नंबर 12 मेहड़ी में थाच, धर्मा व परलोक पंचायतों का बीडीसी सदस्य का मतदान स्थगित किया गया। यहां मतपत्र पर चुनाव लड़ रहे एक प्रत्याशी का नाम नहीं लिखा गया था। इस वार्ड का चुनाव कल 28 मई को दोबारा करवाया जाएगा। इसके अलावा चंबा जिला की चंबी पंचायत के वार्ड नंबर 3 में उम्मीदवार की मृत्यु के कारण चुनाव स्थगित हुआ। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं पुष्पा ठाकुर।
0: इस बीच 28 मई को होने वाले पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण के लिए सक्रिय चुनाव प्रचार बीते कल दोपहर 3 बजे समाप्त हो गया। इन क्षेत्रों में अब प्रत्याशी व्यक्तिगत रूप से ही प्रचार कर रहे हैं। चुनाव के दूसरे चरण में 1274 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। तीसरे व आखिरी चरण में 30 मई को मतदान होना है, जिनमें 1187 पंचायतों में चुनाव होगा। हिमाचल प्रदेश की अपार आध्यात्मिक और पर्यटन क्षमता पर जोर देते हुए राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने देवभूमि हिमाचल के लिए एक विशेष और सुव्यवस्थित धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी पहल न केवल राज्य की आध्यात्मिक पहचान को मजबूत करेगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी और हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित करेगी। राज्यपाल ने ये बात कल कांगड़ा जिला में मां ज्वाला देवी मंदिर के दर्शन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही। राज्यपाल ने कहा कि धार्मिक पर्यटन में हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ बनने की क्षमता है। उन्होंने राज्य सरकार, पर्यटन मंत्रालय और सभी संबंधित हितधारकों से आह्वान किया है कि वे इस पवित्र स्थलों की पवित्रता और धार्मिक सार को बनाए हुए तीर्थ

0: यात्रियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित करने की दिशा में मिलकर काम करें। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस सरकार पर लगाए गए आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में पूर्व में भी आचार संहिता के बीच कैबिनेट की बैठकें होती रही है, इसलिए भाजपा को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वहीं प्रदेश में पर्यटन सीजन को देखते हुए 24 घंटे दुकानें खुली रखने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कारोबारियों को पर्यटन सीजन का पूरा लाभ मिल सके, इसलिए ये निर्णय लिया गया है। प्रदेश भाजपा मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने कहा है कि केवल 4-5 दिनों के लिए मुख्य सचिव की नियुक्ति करना राज्य सरकार की गलत कार्यशैली और प्रशासनिक अस्थिरता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि संजय गुप्ता पिछले 1 वर्ष से अतिरिक्त कार्यभार के रूप में कार्यवाहक मुख्य सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे थे और अब सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले इनकी मुख्य सचिव के रूप में नियमित नियुक्ति करना सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा है कि इस महत्वपूर्ण पद पर अल्पकालीन नियुक्ति अधिकारियों के मनोबल पर प्रभाव डालेगी। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारे DTH सेवा और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों में बढ़ रही तपिश के चलते पर्यटकों ने भारी संख्या में हिमाचल का रुख किया है। कुल्लू जिला में इन दिनों पर्यटक सीजन अपने चरम पर है। यहां होटलों की ऑक्यूपेंसी 90% तक पहुंच चुकी है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
1: कुल्लू जिला में इन दिनों पर्यटन सीजन अपने चरम पर है तथा मनाली सहित जिला के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर प्रतिदिन सैलानियों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैदानी इलाकों में झुलसा देने वाली पड़ रही गर्मी से निजात पाने के लिए काफी संख्या में लोगों ने पहाड़ों की ओर रुख किया है। पर्यटक जहां पर रोहतांग पास में जाकर जहां बर्फ का दीदार कर रहे हैं, वहीं अटल टनल होते हुए लाहौल की तरफ भी जा रहे हैं। पर्यटक कुल्लू में जहां रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, जिप लाइन व अन्य गतिविधियों का आनंद ले रहे हैं, वहीं जिला के ग्रामीण इलाकों में स्थित झरनों और प्राकृतिक जल स्रोतों पर भी इनकी भारी भीड़ देखी जा सकती है। सैलानियों की बढ़ती आवाजाही से पर्यटन कारोबार को भी बढ़ावा मिला है तथा मनाली के होटलों की ऑक्यूपेंसी लगभग 90% तक पहुंच चुकी है। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए मनाली में 25 SDRF के जवान भेजे गए हैं तथा पंचायत चुनाव समाप्त होते ही और भी जवानों की तैनाती की जाएगी। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: HPCL स्टेडियम धर्मशाला में बीती रात हुए IPL क्वालिफायर 1 मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर ही सिमट गई। रजत पाटीदार को नाबाद 93 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। लाहौल और स्पीति को जोड़ने वाली लोसर ग्रामफू चंद्रताल सड़क हल्के वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दी गई है। प्रशासन की ओर से जारी सूचना के अनुसार बीते वर्ष दिसंबर माह से बर्फबारी के चलते बंद इस मार्ग को फिलहाल 4x4 वाहनों की आवाजाही के लिए खोला गया है। अगले कुछ दिनों में सड़क के पूरी तरह तैयार हो जाने पर यहां भारी वाहनों की आवाजाही शुरू की जाएगी। जिला प्रशासन ने यात्रियों से प्रशासन द्वारा जारी दैनिक एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। इस सड़क पर यातायात बहाली से लाहौल स्पीति में चंद्रताल तक पर्यटकों की आवाजाही फिर शुरू हो जाएगी। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने पहले चरण में पंचायत चुनाव से जुड़ी खबरों को सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल में लू के बीच रिकॉर्ड 78.83% मतदान, 1293 पंचायतों में चुनी गांव की सरकार। दैनिक जागरण के शब्द है, ग्रामीण संसद के लिए जमकर पड़े वोट। हिमाचल दस्तक लिखता है, कुल्लू में सबसे अधिक 84 और लाहौल स्पीति में सबसे कम 69% मतदान। पंजाब केसरी ने खबर दी है, शिपकीला दर्रे से 1 जून से फिर शुरू होगा भारत चीन सीमा व्यापार। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, रिटायरमेंट से सिर्फ 5 दिन पहले IAS संजय गुप्ता बने CS, अभी था CS का अतिरिक्त कार्यभार। दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है, धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने लिया IPH मुकाबले का आनंद। मौसम पर दिव्य हिमाचल के शब्द है, हिमाचल में भीषण गर्मी, 6 जिलों में लू, 28 मई से राहत के आसार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न, 78.85 रहा मतदान प्रतिशत। कल 28 मई को पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण का मतदान होगा, 1274 पंचायतों में डाले जाएंगे वोट। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश के लिए एक विशेष और सुव्यवस्थित धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाने पर दिया बल। और मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी के चलते पर्यटकों ने भारी संख्या में किया प्रदेश का रुख, कुल्लू के होटलों में 90% हुई ऑक्यूपेंसी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
2: एक 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 9:30 हुए हैं। गीतांजलि कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। श्रोताओ, नीलेश मिश्रा का लिखा हुआ गीत आपको सुनवा रहे हैं। प्रीतम का संगीत है, आवाज है कार्तिक की और फिल्म है वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई।

0: मोहित चौहान की आवाज में राजशेखर का लिखा हुआ गीत अभी श्रोता सुन रहे थे। फिल्म थी तनु बिट्स मनु।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना
2: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी। आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
3: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी। छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

गीतांजलि कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कुमार सानू और श्रेया घोषाल का गाया हुआ ये गीत है राउडी राठौर फिल्म से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतांजलि। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 10 बजे हैं और बिल्कुल हाजिर हैं अपने श्रोताओं के बीच लेकर कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम से जुड़े हमारे सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त ज्योति का स्नेह अभिवादन। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं साधना सरगम और उदित नारायण के मिले जुले स्वर में गाए इस गीत के साथ। प्यार, इश्क और मोहब्बत, इस फिल्म से ये गीत हमने लिया है। आनंद बख्शी ने बोल लिखे हैं, बीजू शाह का संगीत है।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
2: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र। कार्यक्रम का अगला गीत अब आपके रेडियो सेट्स पर भेज रहे हैं। मुझे कुछ कहना है इस फिल्म से। बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की आवाजें हैं। समीर ने इस गीत को लिखा है और धुन बनाई है अनु मलिक ने।

0: मैं हूं एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी धर्मशाला से हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं और इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत अब आपको सुनवा रहे हैं बाजीराव मस्तानी फिल्म से। श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजें हैं। बोल लिखे हैं सिद्धार्थ गरिमा ने और संगीत से सजाया है संजय लीला भंसाली ने।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज़, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।

कार्यक्रम में अब शामिल कर रहे हैं अजनबी फिल्म से ये खूबसूरत गीत। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें हैं, गीतकार समीर, संगीतकार अनु मलिक।

0: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

इसी के साथ फिल्म संगीत के आज के सुहाने सफर में बस इतना ही। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:30 हुए हैं। अब श्रोता सुनेंगे हिमाचली गीतों और लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं राकेश सिंह सलाथिया की आवाज में गाया हुआ ये लोकगीत।

0: ये लोकगीत आपने सुना मानसिंह और सुनील राणा के मिले जुले स्वर में।
1: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
2: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
1: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट ₹4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट ₹4.42 लाख ओनली।
2: विद ₹1,999 डाउन पेमेंट एंड ₹1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
0: आकाशवाणी धर्मशाला से हमारे श्रोता इस समय जुड़े हुए हैं और हिमाचली गीतों व लोक गीतों का आनंद आप ले रहे हैं। कार्यक्रम का अगला लोकगीत अब आपको सुनवा रहे हैं राज प्रभाकर की आवाज़ में।

0: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
1: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
0: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट 4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट 4.42 लाख ओनली।
1: विद 1,999 डाउन पेमेंट एंड 1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।

0: इंदर राज की आवाज में ये लोकगीत आपने सुना। आकाशवाणी धर्मशाला से आप जुड़े हुए हैं और इस समय सुन रहे हैं हिमाचली गीतों व लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम।
1: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
2: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
1: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट ₹4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट ₹4.42 लाख ओनली।
2: विद ₹1,999 डाउन पेमेंट एंड ₹1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
0: आइए अब सुनते हैं रूप लाल को इस अगले लोकगीत में।

0: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
1: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
0: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट 4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट 4.42 लाख ओनली।
1: विद 1,999 डाउन पेमेंट एंड 1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।

इसी के साथ हिमाचली गीतों व लोकगीतों के आज के सफर में बस इतना ही। 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र। सुबह के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: AIR पर भी सुना जा सकता है।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण का मतदान कल संपन्न हुआ, जिसमें 1293 ग्राम पंचायतों में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। निर्वाचन आयोग के मुताबिक पहले चरण में 78.85% मतदान दर्ज किया गया, जो वर्ष 2021 में हुए पंचायत चुनावों से ज्यादा है। वर्ष 2021 में पहले चरण में 77% मतदान हुआ था। अधिक ब्यौरा इस रिपोर्ट में।
2: पंचायती राज चुनाव के पहले चरण में प्रदेश भर में मतदाताओं में भारी उत्साह देखा गया। मतदान 78% से अधिक दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा 84% मतदान कुल्लू जिला और सबसे कम 69% लाहौल स्पीति में दर्ज हुआ। सिरमौर के कमरव ब्लॉक की तिलोधार ग्राम पंचायत कुनेर धमौन में सबसे ज्यादा 97% वोट पड़े। 10 जिलों में महिला मतदाताओं का प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा। कुल्लू में 85% महिलाओं ने वोट डाला। नए मतदाताओं के साथ 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग भी उत्साह के साथ अलग अलग स्थानों पर मतदान करने पहुंचे। प्रधान, उपप्रधान और वार्ड सदस्य के नतीजे देर रात घोषित किए गए हैं। इस बीच शिमला जिला के रामपुर में नरेन पंचायत के वार्ड नंबर 1 में मतदान प्रक्रिया के दौरान गंभीर त्रुटि के चलते मतदान स्थगित किया गया। यहां 30 मई को दोबारा मतदान होगा। उपायुक्त शिमला ने गंभीर लापरवाही को देखते हुए पोलिंग पार्टी के 4 अधिकारियों को निलंबित किया है। इधर मंडी जिला के करसोग पंचायत समिति के वार्ड नंबर 12 मेहड़ी में थाच, धर्मा व परलोक पंचायतों का BDC सदस्य का मतदान स्थगित किया गया। यहां मतपत्र पर चुनाव लड़ रहे एक प्रत्याशी का नाम नहीं लिखा गया था। इस वार्ड का चुनाव 28 मई को दोबारा करवाया जाएगा। इसके अलावा चंबा जिला की चंबी पंचायत के वार्ड नंबर 3 में उम्मीदवार की मृत्यु के कारण चुनाव स्थगित हुआ। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं पुष्पा ठाकुर।
1: इस बीच 28 मई को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दूसरे चरण के लिए सक्रिय चुनाव प्रचार बीते कल दोपहर 3 बजे समाप्त हो गया। इन क्षेत्रों में प्रत्याशी व्यक्तिगत रूप से ही प्रचार कर रहे हैं। चुनाव के दूसरे चरण में 1274 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। तीसरे व आखिरी चरण में 30 मई को मतदान होना है, जिसमें 1187 पंचायतों के लिए चुनाव होगा। हिमाचल प्रदेश की अपार आध्यात्मिक और पर्यटन क्षमता पर जोर देते हुए राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने देवभूमि हिमाचल के लिए एक विशेष और सुव्यवस्थित धार्मिक पर्यटन सर्किट बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी पहल न केवल राज्य की आध्यात्मिक पहचान को मजबूत करेगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी और हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित करेगी। राज्यपाल ने ये बात कल कांगड़ा जिला में ज्वाला देवी मंदिर के दर्शन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कही। राज्यपाल ने कहा कि धार्मिक पर्यटन में हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ बनने की क्षमता है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस सरकार पर लगाए गए आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में पूर्व में भी आचार संहिता के बीच कैबिनेट बैठकें होती रही है, इसलिए भाजपा को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वहीं प्रदेश में पर्यटन सीजन को देखते हुए 24 घंटे दुकानें खुली रखने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कारोबारियों को पर्यटन सीजन का पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए ये निर्णय लिया गया है। लाहौल और स्पीति को जोड़ने वाली लोसर ग्रामफू चंद्रताल सड़क हल्के वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दी गई है। प्रशासन की ओर से जारी सूचना के अनुसार बीते वर्ष दिसंबर माह से बर्फबारी के चलते बंद इस मार्ग को फिलहाल 4x4 वाहनों की आवाजाही के लिए खोला गया है। अगले कुछ दिनों में सड़क के पूरी तरह तैयार हो जाने पर यहां भारी वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो जाएगी। जिला प्रशासन ने यात्रियों से प्रशासन द्वारा जारी दैनिक एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। इस सड़क पर यातायात बहाली से लाहौल स्पीति में चंद्रताल तक पर्यटकों की आवाजाही फिर शुरू हो जाएगी। मैदानी क्षेत्रों में बढ़ रही तपिश के चलते पर्यटकों ने भारी संख्या में हिमाचल का रुख किया है। कुल्लू जिला में इन दिनों पर्यटन सीजन अपने चरम पर है। यहां होटलों की ऑक्यूपेंसी 90% तक पहुंच चुकी है।

0: पर्यटकों के लिए रोहतांग दर्रा मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं अटल टनल से होते हुए लाहौल घाटी भी भारी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। रोहतांग में बर्फ का आनंद लेने के अलावा पर्यटक विभिन्न साहसिक पर्यटन गतिविधियों सहित ग्रामीण इलाकों के अनछुए पर्यटन स्थलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। पर्यटकों की आमद बढ़ने से प्रभावित हो रही यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए मनाली में 25 SDRF के जवान तैनात किए गए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है।
2: FM बैंड 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:05 हुए हैं। अब श्रोता सुनेंगे कवालियां। पेशे खिदमत है कार्यक्रम की पहली कवाली, जिसे हमने लिया है दिल ही तो है फिल्म से। आशा भोंसले और साथियों की आवाजें हैं, शाहिर लुधियानवी के बोल, रोशन का संगीत।

0: आकाशवाणी धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कवालियां कार्यक्रम में। अब रुकते हैं और लेते हैं ये कमर्शियल ब्रेक।
1: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
4: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
3: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट 4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट 4.42 लाख ओनली।
4: विथ 1,999 डाउन पेमेंट एंड 1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
0: मन्ना डे की आवाज़ में कार्यक्रम की अगली कवाली वक्त फिल्म से अब शामिल कर रहे हैं। शाहिर लुधियानवी के बोल हैं, रवि का संगीत है।

0: मुगले आजम फिल्म से ये कवाली आपने सुनी लता मंगेशकर और शमशाद बेगम और साथियों की आवाज में, शकील बदायूनी के बोल नौशाद का संगीत।
1: मैं हूँ एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
4: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रूपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
3: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट ₹4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट ₹4.42 लाख ओनली।
4: विद ₹1,999 डाउन पेमेंट एंड ₹1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
0: आपके रेडियो सेट्स पर पेश है कार्यक्रम की ये आखिरी कवाली। लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर और साथियों की आवाजें हैं। परवरिश फिल्म से ये कवाली हमने ली है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

कार्यक्रम किसी अंतिम कव्वाली के साथ दीजिए अपनी रेडियो दोस्त ज्योति को कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत। आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अभी आप सुन रहे थे कव्वालियां। सुबह के 11:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार न किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
3: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कलां दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
3: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
2: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
3: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
2: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को, आज हम किस फूल की बात करेंगे?
3: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
2: वाह जी जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
3: बिल्कुल।
2: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
3: विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है।
2: जी,
3: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
2: जी, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुंचा और फिर सारे यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
3: जी, अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से, जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ओटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे तुलिपा कहा जाता था। बाद में ये शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
2: जी, रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
3: जी,
2: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है।
3: जैसे
2: लाल रंग ट्यूलिप प्रेम का, पीला ट्यूलिप मित्रता का, सफेद ट्यूलिप क्षमा और शांति का, और बैंगनी ट्यूलिप राजसी गरिमा का।
3: जी, इसीलिए अक्सर अवसर और भावना के अनुसार ये ट्यूलिप फूल किसी को दिए या भेजे जाते हैं।
2: जी,
3: अब विमलेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास जिसका उत्तर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे, विशेषकर वे जो बागवानी में रुचि रखते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि ट्यूलिप फूल कैसे उगाया जाता है?
2: अजीत जी, सबसे रोचक बात तो ये है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता था, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल उगा सकता है। जहाँ तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
3: जी श्रोताओं, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
2: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
3: हाँ, वो क्या?
2: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
3: ये घटना क्या थी?
2: उन दिनों यूरोप में

0: ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
1: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओं, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जहां तक भारत की बात है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
0: तो अजीत जी, समाप्त करने से पहले एक और बड़ी रोचक बात श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गंधहीन होते हैं। कुछ प्रजातियां ही हैं जिनमें बहुत हल्की सुगंध आती है। तापमान और रोशनी के अनुसार अपनी पंखुड़ियां खोल या बंद कर सकते हैं। ये अक्सर रात को लगभग बंद हो जाते हैं
1: और सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियां खोलकर सूर्य का स्वागत करते हैं, मानो कह रहे हो गुड मॉर्निंग सन।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओं कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
1: जी।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है, मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
3: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
4: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
3: बेटा, अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
4: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
3: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
4: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
3: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
1: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको

0: ओह शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
1: मश्क।
2: होशियार,
1: समझदार।
2: पेंसिल तराश,
1: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
2: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
1: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
2: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनि अंकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
3: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
4: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना, और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
5: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे?
6: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
5: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
6: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाए हो नहीं सकता।
5: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
7: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
6: क्या बात है,
7: सुनकर ही जोश आ गया।
6: हाँ
7: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो, और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
8: युद्ध में तो जाना ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा, या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
4: ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे, और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के

0: छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है। और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया। कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन 1, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। 2 रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
1: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमास

0: शान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
1: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन 2, दिन 19 जून 1999, स्थान 0.5140। 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे दो हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल एक रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
2: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
3: 1 घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
2: अरे देख लेंगे।
1: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था, उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया। और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 0.5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
4: कैप्टन विक्रम, 0.5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
0: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
5: क्या बात कही है?
4: ये दिल मांगे मोर। हाउ नाइस। विक्रम जी, आप पर सारे देश को नाज है, और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
0: धन्यवाद।
1: इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
1: चलो
3: संभल कर।
1: अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
2: जी सर।
1: देखो तुम यहीं पोजीशन संभालो।
2: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
2: जी सर।
4: हमला करो दुर्गा माता की।
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबराकर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
5: साहब जी आप मत जाइए, मैं जाता हूं।
1: नहीं, तू बीवी बचवा रहा है, पीछे हट।
5: नहीं लेकिन साहब जी,
1: मैंने कहा ना पीछे हट जा, मैं जा रहा हूं।
5: साहब जी।
0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
1: क्या हुआ तुम्हें? नहीं।
0: और तभी उन्होंने वीर गति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया, तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को 0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: होता है, तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: एक सौ 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक भाइयों जय हिंद। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं जाल फिल्म के गीत के साथ। गीतकार, संगीतकार और गायक हैं आनंद राज आनंद।

0: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
1: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
0: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट 4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट 4.42 लाख ओनली।
1: विथ 1,999 डाउन पेमेंट एंड 1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
2: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से, और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
0: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
1: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
0: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट 4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट 4.42 लाख ओनली।
1: विथ 1,999 डाउन पेमेंट एंड 1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
4: सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। आई मिलन की रात, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पोडवाल, और साथियों ने इस गीत को गाया है। आनंद मिलन का संगीत है।

0: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
1: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
0: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट 4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट 4.42 लाख ओनली।
1: विद 1,999 डाउन पेमेंट एंड 1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
0: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
1: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
0: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट 4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट 4.42 लाख ओनली।
1: विद 1,999 डाउन पेमेंट एंड 1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।

0: वाह तेरा क्या कहना। इस फिल्म का गीत अभी सैनिक भाई सुन रहे थे। समीर ने इस गीत को लिखा था, जतिन ललित का संगीत था, आवाजें थी अलका याग्निक और उदित नारायण की। अगला गीत इस ब्रेक के बाद।
1: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
2: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रूपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
1: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट ₹4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट ₹4.42 लाख ओनली।
2: विद ₹1,999 डाउन पेमेंट एंड ₹1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
1: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
2: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रूपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
1: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट ₹4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट ₹4.42 लाख ओनली।
2: विद ₹1,999 डाउन पेमेंट एंड ₹1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
0: सैनिक भाइयों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं अनु मलिक के संगीत से सजा हुआ गीत। फिदा फिल्म का ये गीत है, आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की।

सैनिक भाइयों, कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं पहचान फिल्म का गीत। संगीतकार हैं आनंद मिलंद और गायक कलाकार हैं कविता कृष्णमूर्ति और अभिजीत।

103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम घर परिवार।

0: परिवार।
1: नमस्कार सखियो, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम घर परिवार में। हाजिर है आपकी रेडियो सखी ज्योति।

आज के इस अंक में ढेर सारी जानकारियां और सुरीले गीत लेकर। सबसे पहले बात सखियों के साथ कार्यक्रम में हम करते हैं मौसम और मिजाज की। सखियों, गर्मियों का ये मौसम है और गर्मियों का मौसम अपने साथ चिलचिलाती धूप लेकर आता है, लेकिन ये मौसम बहुत खास भी होता है। ये वो समय है जिसमें ठंडे पानी की घूंट और आम की मिठास होती है, साथ ही तरबूज खरबूज खाने को मिलते हैं। लेकिन इस चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के बीच अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाता है और हमारी सखियां बहुत अच्छे से इसको निभाती भी हैं। और आजकल सखियों, हमारे प्रदेश हिमाचल की शांत वादियों में पंचायती राज चुनावों की हलचल है। हमारे प्रदेश में इन दिनों हो रहे पंचायत चुनाव केवल सत्ता का हस्तांतरण नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की उन जड़ों को सींचने की प्रक्रिया है, जहां गांव का आम नागरिक अपने भविष्य का निर्णय स्वयं करता है। अमूमन ये चुनाव सर्दियों के मौसम में करवा लिए जाते थे, इस बार गर्मियों के मौसम में ये हो रहे हैं। पिछले वर्ष हुई बरसात में भारी आपदा के चलते ये चुनाव लगभग 4 महीने देरी से हो रहे हैं। मतदान की तिथियां हैं 26 मई 28 मई और 30 मई निर्धारित की गई हैं, तो बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस पर्व में हमने भाग लेना है। और सखियों, अब हम बात करेंगे ईद उल अजहा की, जिसे बकरीद भी कहते हैं। ये इस्लाम धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, इसे कुर्बानी की ईद भी कहा जाता है। बकरीद सिर्फ बकरों की कुर्बानी का नाम नहीं, ये एक बहुत ही खूबसूरत सबक है। अपनी सबसे प्यारी चीज़ को इंसानियत और खुदा की राह में कुर्बान कर देने का। सोचिए, अगर हम भी अपने अहम, अपनी नफरत, अपने गुस्से की कुर्बानी दे दें तो हमारा घर और हमारा समाज कितना खूबसूरत बन जाएगा। इस त्यौहार पर घर घर में सेवैयाँ बनाई जाती हैं, गले मिलकर लोग पुरानी रंजिशें गिले शिकवे भूल जाते हैं, क्योंकि सखियों त्यौहारों का असल मकसद ही यही है, दूरियाँ मिटाना और दिलों को जोड़ना। और त्यौहार कोई भी हो, किसी भी धर्म विशेष का हो, त्यौहार खुशियां ही बांटते हैं। पकवानों की महक रिश्तों में मिठास घोलती है, अपनों का साथ इन त्यौहारों को और भी खास बना देता है। तो चलिए सखियों, अब कार्यक्रम में हम भी ये गीत शामिल कर लेते हैं और मिलते हैं इस गीत के बाद।

0: कार्यशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।
2: मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है और आप इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम घर परिवार। सखियो, कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं। सखियो, आज का दिन हमारे राष्ट्र के इतिहास में एक ऐसा दिन है जब हम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के शिल्पकार और स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में जन्मे पंडित जी, जैसा कि उन्हें प्यार से बुलाया जाता था, का पूरा जीवन देश और देशवासियों के लिए समर्पित था। वे केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि एक ऐसे दूरदर्शी थे जिन्होंने आज़ाद भारत के नव निर्माण की मजबूत नींव रखी। चाहे वह भारत में भारी उद्योग की स्थापना हो, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना हो, या फिर पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक विकास की रूपरेखा तैयार करना हो, नेहरू जी हमेशा भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में देखा करते थे। आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। आज़ादी के समय दिया गया ये ऐतिहासिक भाषण आज भी हमें रोमांचित कर देता है। उनकी कलम और वाणी दोनों में जादू था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और विश्व इतिहास की झलक जैसी पुस्तकों के माध्यम से उन्होंने हमें अपने समृद्ध अतीत से जोड़ा। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता के रूप में उन्होंने विश्व पटल पर भारत को एक स्वतंत्र और शांति दूत की छवि प्रदान की। वे अक्सर कहा करते थे, सत्य का मार्ग अटूट है और अंततः विजय उसी की होती है। बच्चों के प्रति उनका विशेष स्नेह था, इसलिए उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे बच्चों को देश का भविष्य और देश की असली संपत्ति मानते थे। सखियो, नेहरू जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, आप किसी भी राष्ट्र की स्थिति उस राष्ट्र की महिलाओं की स्थिति को देखकर बता सकते हैं। आज जो हम महिलाओं को शिक्षा का, संपत्ति का और समाज में बराबरी का हक मिला हुआ है, उसकी मजबूत नींव नेहरू जी के कार्यकाल में हिंदू कोड बिल के जरिए रखी गई थी। वे चाहते थे कि हर महिला आत्मनिर्भर बने, पढ़े लिखे और अपने फैसले खुद ले सके। आज 27 मई को उनकी पुण्यतिथि के दिन हम उन्हें शत शत नमन करते हैं।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर,
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
1: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
2: आरबीआई कहता है
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: मैं हूँ एचआईवी वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ

0: बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने से और एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ एचआईवी वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
2: लौट आए हैं एक बार फिर कार्यक्रम घर परिवार में, जहां अब बात होगी सामान्य ज्ञान की श्रृंखला में विज्ञान से संबंधित। सखियो, आज की इस भागम भाग भरी जिंदगी में विज्ञान हमारे रसोई से लेकर आसमान तक छा चुका है। जब हम सुबह उठकर मौसम का हाल देखती हैं, टीवी पर मनोरंजन के कार्यक्रम देखती हैं, या दूर बैठे अपने रिश्तेदारों से मोबाइल पर वीडियो कॉल करती हैं, तो क्या आप जानती हैं कि इन सब सुविधाओं के पीछे आसमान में तैरते हमारे उपग्रह यानी सैटेलाइट्स का हाथ है? और इन सैटेलाइट्स को आसमान तक कौन पहुंचाता है? जी हाँ, हमारा आज का हीरो रॉकेट। आज हम इसी रॉकेट के विज्ञान को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो सखियो, चलते हैं रॉकेट और अंतरिक्ष की सैर पर। सखियो, कल्पना कीजिए कि आप एक भारी कुकर में बहुत सारा पानी उबाल रही हैं ढक्कन लगाकर। जब भाप को बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती तो वो ढक्कन को ऊपर की ओर धकेलती है। बस रॉकेट भी इसी सिद्धांत पर काम करता है, जिसे विज्ञान की भाषा में न्यूटन का गति का तीसरा नियम कहते हैं, यानी हर क्रिया की एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट के अंदर बहुत शक्तिशाली ईंधन होता है। जब ये ईंधन जलता है तो बहुत तेज गति से पीछे की तरफ गैस और आग निकलती है। बदले में जमीन से मिलने वाली प्रतिक्रिया रॉकेट को ऊपर आसमान की ओर धकेलती है। इसे हम एक्शन और रिएक्शन कहते हैं। सखियों, क्या आप जानती हैं कि एक सामान्य रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में जाने के लिए कितनी रफ्तार चाहिए होती है? क्योंकि हम कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वह नीचे आ गिरती है, तो फिर रॉकेट अंतरिक्ष में कैसे टिक जाता है? इसके लिए सखियों, रॉकेट को जादुई रफ्तार की ज़रूरत होती है। इसे पलायन वेग कहते हैं। इसे रॉकेट का लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ना होता है। ज़रा सोचिए, एक सेकंड में 11 किलोमीटर से भी ज़्यादा, यानी पलक झपकते ही रॉकेट आपकी नज़र से ओझल। आज सखियों, हमारे देश भारत ने भी अंतरिक्ष की दुनिया में अपना परचम लहराया है। इसरो जैसे हमारे वैज्ञानिक संस्थाओं ने भारी भरकम सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए PSLV और GSLV जैसे शानदार रॉकेट बनाए हैं। PSLV इसे इसरो का सबसे भरोसेमंद घोड़ा कहा जाता है। इसी रॉकेट ने हमारे चंद्रयान 1 और मंगलयान को अंतरिक्ष में भेजा था। GSLV ये हमारा बाहुबली रॉकेट है। ये सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में बहुत ऊंचाई तक ले जाने की क्षमता रखता है। इसी के उन्नत संस्करण LVM3 ने हमारे चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचाया था। तो सखियो, विज्ञान किसी जादू से कम नहीं। रॉकेट का उड़ना हमें सिखाता है कि अगर हम अपनी पूरी ऊर्जा और लगन के साथ सही दिशा में प्रयास करें तो हम भी आसमान छू सकते हैं। लेकिन अब बारी है सखियो पेट को छूने की, क्योंकि सखियो दिन का समय है और भूख भी अब जोरों की लगी है। तो बिल्कुल समय हो चुका है खान पान का, जिसमें सेहत और स्वाद से जुड़ी बातें हम आपके साथ करते हैं। आज स्वादिष्ट और खिले खिले वेज पुलाव की रेसिपी आपको बता रहे हैं। सामग्री सबसे पहले इसके लिए नोट कर लें। चावल 1 कप, बासमती चावल जिसे 20 मिनट भिगो कर धो लें। सब्जियां 1/2 कप, अपनी मनपसंद सब्जियां आप ले सकती हैं कोई सी भी। खड़े मसालों में 1 तेज़पत्ता, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी, 2-3 लौंग, 2 हरी इलायची और 1/2 छोटा चम्मच जीरा। अन्य सामग्री में 1 बारीक कटा प्याज, 1 चम्मच अदरक लहसुन का मिश्रण, स्वादानुसार नमक और 2 बड़े चम्मच घी या तेल भी आप ले सकते हैं। बनाना सखियो जल्दी से शुरू करते हैं। एक भारी तले के बर्तन या कुकर में भी आप इसे बना सकती हैं। उसमें आप घी गरम करें और इसमें फिर सारे खड़े मसाले डालकर हमने भून

लेने हैं। अब इसमें कटा हुआ प्याज डालेंगे और सुनहरा होने तक भून लेंगे। अदरक लहसुन का मिश्रण भी डालेंगे और 1 मिनट के लिए अब इसे पकाएंगे। इसके बाद सारी कटी हुई हरी सब्जियां डालकर 2-3 मिनट इसे हमने अच्छे से भून लेना है। अब भीगे हुए चावल डालें और हल्के हाथों से इसे मिलाएं। अंत में 2 कप पानी और नमक हमने डाल देना है। बर्तन को ढककर धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि चावल का पानी जो है वो पूरी तरह सूख ना जाए। या कुकर में भी 1-2 सीटी आप लगवा सकती हैं। आपका गरम गरम वेज पुलाव बिल्कुल तैयार है। इसे रायते के साथ परोसें और गर्मियों के इन दिनों में सखियों इस हल्के खान पान का ज़रूर आनंद लें। और चलते चलते इस गीत का भी।

कार्यक्रम के इसी अंतिम गीत के साथ आज का हमारा ये कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है। चलते चलते आपको बताते चले कि आज के कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपनी रेडियो सखी ज्योति के साथ। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग अंकित धीमान का, इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है जतिंद्र पाल सिंह। प्यारी सखियों नमस्कार।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर परिवार। दोपहर का 1 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में समाचार और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले

0: साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता कि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है, जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। CBI ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल ने कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग भारत के प्राचीन ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है और निवारक स्वास्थ्य देखभाल तथा संतुलित जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज दोपहर के कारोबार में 41 अंक बढ़कर 76,051 जबकि निफ्टी 21 अंक के वृद्धि के साथ 23,935 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Supreme Court today upheld the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rolls done by the Election Commission of India and observed that electoral SIR advances the constitutional imperative of free and fair elections. The court held that the Election Commission has the power to conduct SIR under Article 324 of Representation of the People Act 1950 and the rules made thereunder. The judgment pronounced by CJI Suryakant held that when the statute itself authorizes a special revision at any time for reasons to be recorded and in such a manner as the Election Commission may deem fit,

हमारे श्रोता ने उत्तर दिया कि आपने चलती का नाम गाड़ी फिल्म का यह गीत गीतकार मजरू सुल्तानपुरी है, बिल्कुल सही। भला का उल्टा लाभ, बिल्कुल सही है। हम दूसरों का भला करेंगे तो हमारा भी लाभ होगा। शादी दिशा, तो शादी जो होती है वो सही दिशा में हो तो कितना अच्छा है। नवीन नवीन दोनों तरफ से एक जैसा होता है। और हमारे श्रोता ने लिखा मरा राम, तो इसके लिए हम बचपन में कहा करते थे जब तक मरोगे नहीं तब तक राम के कैसे होगे। तो राम का होने के लिए भी हमें उनके लिए पूरी तरह से समर्पित होना पड़ता है। ऐसे कई सारे शब्द आपकी तरफ से आ रहे हैं और अगर आते रहते हैं तो बड़ा आनंद आएगा। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बड़ा अच्छा अच्छा लिखा है कि किसी को अपने सफ़र में शामिल करने के पहले यह समझना चाहिए कि उसका नज़रिया क्या है। जब आप लोगों को सम्मान देते हैं, उनकी चिंताओं को सुनते हैं, महसूस करते हैं, उनकी कद्र करते हैं, तो गहरा भावनात्मक जुड़ाव होता है। अपने विश्वास को इस तरह से पेश करें कि सामने वाला उसमें अपना भी कोई सपना भलाई नज़र आए। जब व्यक्तिगत उद्देश्य एक बड़े साझा उद्देश्य के लिए जुड़ जाते हैं तो कारवां अपने आप बनता जाता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी। एक और लिखते हैं, हमारा विश्वास है कि हमें सब कुछ दिला सकता है फिर भी हमारे जीवन में राह सुकून भरी हो जाती है। जैसे नदी के किनारे सुकून मिलता है, इसी दौरान कदम दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हमारे जीवन के दिन बड़े हो जाते हैं और किसी की मुस्कुराहट की वजह भी बन जाते हैं। अच्छा, आपने हमारी इबारत को ही घुमा दिया। हमारे श्रोता लिखते हैं, जीवन को खुशहाल और सार्थक बनाने के लिए छोटी छोटी खुशियाँ और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि अक्सर हम बड़ी सफलताओं की खुशी तलाशते हैं लेकिन असल में दैनिक जीवन के छोटे छोटे पल ही मानसिक शांति और सकारात्मकता का आधार बनते हैं। इसीलिए हर दिन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना ही एक सच्चे और खुशहाल जीवन का रहस्य है। सच बात है, छोटी छोटी खुशियाँ बड़े जीवन की बड़ी प्यारी सी खुशियां बन जाती हैं। तो चलिए, हम अगला गीत आपको दे रहे हैं। ऐसे ही जो शब्द है ना, एक दूसरे से उल्टे पलटे पर मिलते जुलते या कहीं ना कहीं जुड़ते जुड़ते, अगर कोई शब्द आपको आता है तो आप ज़रूर हमें भेजिए और साथ में सुनिए ये गीत। अब फिर से मैं आपसे पूछ रही हूँ, इस गीत के गीतकार कौन है? बहुत खूबसूरत गीत है, सुनिए।

हम सुन रहे थे खट्टा मीठा फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ में। राजेश रोशन ने इसे संगीतबद्ध किया और हमने आपसे पूछा था कि इसके गीतकार कौन हैं, तो आपने बताया कि गुलजार ने इस गीत को लिखा है और कई लोगों ने कहा कि कितना सच्चा गीत है ना ये, थोड़ा है थोड़ी की ज़रूरत है ज़िंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। लेकिन ये बड़ा खूबसूरत सा बड़ा प्यारा सा गीत हम सुन रहे थे और इस गीत के साथ में हमारे श्रोताओं ने लिखा कि कई सारे शब्दों के बारे में बताया, जैसे पापा, दादा, नानी, मम्मी की नानी और नानी की मम्मी, ये रिश्ते बदलने से पात्र बदलते हैं। बिल्कुल सही बात। हमारे एक श्रोता लिखते हैं मधु, धूम कितनी बढ़िया है। हमारे श्रोता लिखते हैं मैं राधा का नाम जपूं जमुना धारा में, कितना बढ़िया है ना, मैं राधा का नाम जपूं जमुना की धारा में, मुझे भी बड़ा मज़ा आया पढ़कर ये। सीधा पढ़ो या उल्टा राधे राधे, जी बिल्कुल। एक ने लिखा है तेजू के पापा के जूते, इसको उल्टा सीधा एक साथ पढ़ सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बताया तेजू के पापा और पापा के जूते, इसको उल्टा सीधा करेंगे तो एक जैसा हो जाता है। कनक, एक बचपन में पढ़ा करते थे, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या काय बौरात नर वा पाए बौराए, इसी बात को लिखकर उन्होंने बताया है कि कनक के लिए उन्होंने अर्थ बताया कि एक कनक सोना है और दूसरा कनक आटा भी होता है, तो इसे भी हम ले सकते हैं, देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बताया हरा राह हवा वाह सखा खास, ये बहुत अच्छा लगा कि हमारे सखा हमारे लिए खास होते हैं। टोपी पीटो दिखा खादी, खादी दिखाइए के लिए दिखा खादी, नाम मना, और इसके साथ ही लीला लाली, लीला करने से ही लाली आती है। ऐसे हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने और भी बहुत सारे शब्द भेजे हैं, आप भी भेजते जाइए। अब जो अगला गीत है मैं आपको सौंपूंगी, उसके पहले हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छा लिखा है कि थोड़ी सी खुशियाँ, विश्वास और मुस्कुराहट के सहारे ज़िंदगी का सफ़र आगे बढ़ता रहता है। जैसे नदियाँ अपनी धारा के साथ निरंतर चलती हैं, वैसे ही पल भर नहीं रुकती। दूसरों के कदम के लिए अगर सबके कदम दूसरों की मदद के लिए उठें तो दिन और खूबसूरत बन जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने एक चीज़ और लिखी है कि थोड़ी सी खुशियाँ, दूसरों की मदद और मुस्कुराहट बांटते हुए जीवन का सफ़र चलते रहने का विश्वास, यही तो है सुरीला सफ़र की असली मिठास। जी बिल्कुल, और इस मिठास के साथ हम अगले गीत की तरफ बढ़ रहे हैं। अब थोड़ा सा एक गंभीर सा सवाल, ये जो आप उल्टा सीधा लिख रहे हैं वो ज़रूर लिखते जाइए, पर उसके साथ एक सवाल और है, आपके माता पिता ने कोई ना कोई ऐसी सीख दी होगी जो आज भी आपके कानों में गूंजती है, जरा सोचिएगा, है ना, जरा इस सीख को याद कीजिए। जैसे मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि बेटा हमारा हाथ हमेशा ऊपर देने हो रहना चाहिए, जैसे देने वाले का होता है, प्रयास करो सदा दूसरों को देते रहो। ऐसा ही कुछ आपके माता पिता ने भी आपसे कहा होगा जो आपके कान में आज भी गूंजता है, उस विषय को याद कीजिए। और चलते हैं अगले गीत की तरफ, बस बहुत सामान्य सा सवाल है, इस गीत के गायक कौन है।

ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, और ये प्यारा सा गीत हम सुन रहे थे अनोखी रात फिल्म से। और इस गीत को लिखा इंदिवर ने, रोशन ने संगीतबद्ध किया, और हमने आपसे पूछा था कि गाया किसने, तो आपने कहा बहुत खूबसूरत सी आवाज़ मुकेश की है। बिल्कुल सही आपने पहचाना। और हम आपसे बात कर रहे थे दो विषयों पर। एक विषय तो ये चल रहा है कि कोई भी शब्द जो उल्टा सीधा एक सा होता है वो बताइए, साथ में दूसरा प्रश्न हमने आपसे पूछा कि ऐसी कौन सी सीख है जो आपके माता पिता ने आपको दी है। हम वह सीखें आज यहाँ से पढ़ेंगे ताकि सारी माता पिता की सीखें हम सबके पास में आ जाएंगी। हमारे एक श्रोता ने उस विषय पर लिखा है जहाँ पर शब्द उल्टे सीधे होते हैं, चौबे जी भाजी बेचो जी, बिल्कुल ये बिल्कुल उल्टा सीधा एक जैसा हो जाता है। राधा की बुनी में नींबू की धारा, बिल्कुल ये भी हो सकता है। इसके साथ ही हमारे श्रोता ने लिखा है हार रहा, और इसके साथ ही राज जरा धूम मधु, इसके लिए हमारे श्रोता लिखते हैं दादी बोली धूम मत मचाओ तो मधु मिलेगा। बिल्कुल सही। नवजीवन नवीन, अगर शब्द को उल्टा सीधा करते हैं तो वो एक जैसा हो जाता है। मज़ा आ रहा होगा शायद बचपन के इस खेल को खेलकर, और उसी बचपन में हम वापस चलते हैं। हमारी सीखों के लिए कितना अच्छा होगा अगर हम सारी सीखें याद कर लें तो दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी। हमारे श्रोता लिखते हैं मेरे पिताजी की दी हुई सीख कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, अगर चल नहीं सकते हो तो रेंगो, क्योंकि रुकने पर जिंदगी बोझ लगने लगती है। क्या बढ़िया बात कही आपके पिताजी ने। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे मम्मी पापा अक्सर कहा करते थे कि अगर आसमान को छूना चाहते तो हमेशा धरती के हर प्राणी से प्यार करो और सबसे प्रेम से बात करो। क्या बढ़िया बात कही है। और हमारे श्रोता ने हमारे उस गीत के लिए कहा है कि जो अनोखी रात फिल्म का ये गीत है उसमें जो आलाप है वो हेमंत कुमार जैसा लगता है। अब इस बात की जानकारी हमें नहीं है, शायद आपको हो। एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे पापा ने बहुत प्यारी सीख दी है कि हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो तो सदा सुखी रहोगे। इस सीख को हम सदा याद रखते हैं और ज़्यादा की चाहत नहीं करते। एक और श्रोता लिखते हैं कि जीवन में धैर्य ज़रूरी है, इसे हमेशा बनाए रखना, ऐसा पापा कहते थे। मैं कोशिश करती हूँ और कभी धैर्य और धीरज खो ना दूँ, इस बात का ख्याल रखते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं हमें बोला गया था चाहे ज़्यादा हो या बहुत कम मदद करो, पर लेने वाले की आँख में मत देखो क्योंकि उसकी लाफे नींद छीन लेगी। कितनी बढ़िया बात सिखाई है, देते समय उसकी नज़र में मत देखो। हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे पापा ने कहा है कि दूसरों की मदद करते जाओ, कोई मदद करे या ना करे, बस भगवान है ना बस। और मम्मी कहती हैं जो साथ मिलकर रहने में खुशी है वो खुशी कहीं और नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है। और इसी बात को हमने एक आपके सामने कनक कनकते सौ गुने पढ़ा था, तो हमारी एक हिंदी की शिक्षिका यानी हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि हिंदी में यमक अलंकार का सबसे लोकप्रिय उदाहरण है। इसमें कनक दो बार आया है, पहली कनक का अर्थ है धतूरा अर्थात जहर, दूसरे कनक का अर्थ है स्वर्ण धातु। बिल्कुल सही बात है। और चलिए हम अगले गीत की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखकर हमें भेजी थी कि एक बात तो सच है कि लोग क्या कहेंगे इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और डर को छोड़कर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर लोग इस डर से अपनी खुशियां खो देते हैं, और विचार सिखाता है कि दूसरों की भलाई और अपनी खुशी के आगे फिजूल की बातों को भूल जाना चाहिए। बिल्कुल भूल जाना चाहिए। और जो मैंने आपसे दो प्रश्न रखे हैं उन दो प्रश्नों के उत्तर देते जाइए कि आपके माता पिता ने आपको क्या सिखाया, माँ ने सिखाया या पिता ने सिखाया, किसी ने तो कोई

हम सुन रहे थे सफ़र फिल्म का यह गीत मन्ना डे की आवाज़ में इंदिवर के बोल और कल्याण जी आनंद जी के संगीत के साथ। और आप सब ने बिल्कुल सही पहचाना, ये कल्याण जी आनंद जी का संगीत है और बहुत खूबसूरत संगीत है, बहुत प्यारा माटी से जुड़ा गीत है। अब हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी हैं अपने माता पिता के बारे में, और वह एक और हमारे श्रोता ने बड़ा अच्छा लिखा है कि नाव तो क्या बह जाए किनारा, बड़ी ही तेज है समय की धारा। ये बहुत प्यारे बोल हैं, बहुत प्यारा लिखा है इंदिवर ने इस गीत को। और हमारे श्रोता थोड़ी सी शिकायत कर रहे हैं कि बार बार ये गीत सुनाया जा रहा है, क्षमा चाहेंगे, अगली बार प्रयास करेंगे कि नए गीतों को लेकर आपके बीच आएँ। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि माता पिता का अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है, वैसा कोई और प्रेम नहीं होता। माता पिता के प्यार से समझाने के लिए आपको स्वयं बच्चों का पालन पोषण करना होगा। बच्चे अपने माता पिता से मुस्कुराना सीखते हैं। मेरे हीरो मेरे माता पिता हैं और हमेशा रहेंगे। बिल्कुल बढ़िया बात कही है आपने, बड़ा आनंद आया इस बात को पढ़ने के बाद में हमें। और इसके साथ ही हमारे सुरीला सफ़र कार्यक्रम में आप सब बहुत अच्छे से जुड़कर बहुत सारे प्यारे प्यारे संदेश भेजते हैं, उसके लिए भी हम सबकी तरफ से हम आपको बहुत धन्यवाद देते जाते हैं। और इसके साथ ही हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे गुरुजी कहा करते थे कि हाथ एक दान से करो तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। किसी को कुछ दो ना दो, पर दो शब्द एक प्यार भरी मुस्कान दे दो। किसी को अगर किसी का कुछ काम करो तो ये भावना ना हो कि वक्त पड़ने पर वह हमारे लिए काम आएगा, बल्कि ऐसा कहो कि किसी का बुरा वक्त आए ही ना। कितनी बढ़िया सीख आपको मिली है आपके जीवन में आपके गुरु के हाथों से। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि विदी जी, मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि जब मैं बहुत छोटी थी तो उन्होंने कहा था कि जब भी कोई हमारे घर आता है और जब वह जाने लगे तो दरवाजे तक उसके साथ जाकर उसे विदा करूं, जिसे मैं आज तक निभा रही हूं। जी, आजकल होता है कि कोई निकलता है और हम दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, पर पहले ऐसा था कि जब तक वह दिखना बंद ना हो जाए तब तक हम उसे विदा करते थे। कितनी अच्छी बात थी ना। इसके साथ हमारे श्रोता कहते हैं कि मेरी माता ने मुझसे कहा था कि किसी मजदूर का एक पैसा भी मत रखो, हो सके तो ज़्यादा दे देना। मैं इस बात को आज तक अमल में लाता हूँ, कभी किसी मजदूर या श्रमिक का कोई पैसा नहीं रखता हूँ। मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं वे कभी अलग ना हो पाए, ऐसा ही रहे। बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं, किसी की हाय मत लो, यह सिखाया गया है इनके पिताजी के द्वारा। हमेशा हमारे पापा तो हमेशा कहते थे, एक समय के पाबंद रहो, तरक्की उन्नति सदैव करोगे। बिल्कुल सही बात। एक और पिताजी कहा करते थे, किसी से मत डरो, जो डर गया समझो मर गया। अच्छा, बहुत अच्छी बात कहते थे, डरना तो बहुत गलत चीज़ है शायद। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जो बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही है कि उनके जो जीवन में सीख है माता पिता के संस्कारों से टिकी है। उनके पिताजी ने कहा था कि बेटा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, तुम्हारे शब्दों में किसी का रूह आना आहत हो, मेरी आत्मा में बसी है ये बात। वहीं पिता का अडिग मंत्र, व्यापार हो या जीवन, ईमानदारी ही एकमात्र धर्म है, मेरी राह का दीपक। आज जो भी हूँ, इन दो पवित्र विरासतों की बदौलत हूँ, इन्हीं के प्रकाश से अपना जीवन जी रहे हूँ। बहुत सही बात कही है। पिताजी ने कहा था, बेटी, किसी की बात पर विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं, फिर तुम आत्मविश्वास को जीत जाओगी। और विश्वास शब्द हमारे इस इबारत में भी है। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि उनके नाना जी ने उन्हें सिखाया था, अंतिम समय में सीख गले लगाकर सीख दी थी कि ये संसार कुछ भी नहीं है, कर्म ही प्रधान है, सभी को साथ में लेकर चलना, किसी से भी जलन मत रखना। वो दिन मेरे लिए बहुत अहम रखता है। ऐसे ही जीवन में अहम रखते हैं ये सारी बातें, और ये ऐसे ही बनी रहें आप सबके साथ। मैं आपको अगला गीत सौंपना चाहती हूँ, और उस गीत के साथ में मैं एक प्रश्न और यहाँ पर जोड़ दे रही हूँ, और वो प्रश्न ये है, आज तक हमने कई लोगों के लिए मदद की होगी, कभी कोई ऐसी मदद जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आई और आत्मा में सुकून, बताइएगा। कभी कभी ऐसा लगता है ना, किसी को कुछ देकर हमारा पेट भर गया, ऐसा कब आपके साथ घटित हुआ था, ज़रूर से बताइएगा। और ये जो अगला गीत हम आपको सौंपने जा रहे हैं, ये गीत मैं जो जिस फिल्म से लिया गया, उस फिल्म का नाम आपको बता देना है। और ये तीन प्रश्न आपके साथ चल रहे हैं, उल्टा सीधा वाला, आपके माता पिता की सीख वाला, और कोई ऐसी मदद जिससे आत्मा की भूख मर गई हो, थोड़े समय के लिए ही सही।

0: हम सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में हसरत जयपुरी के बोलों से सजे हुए शंकर जय किशन के संगीत के साथ इस प्यारे से खूबसूरत से नायाब से गीत को जो फिल्म अंदाज से लिया गया है। और यही प्रश्न हमने आपसे पूछा था कि ये फिल्म कौन सी है और आप सबने बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर दिया। और हमारे एक श्रोता ने प्रश्न पूछा है कि मैं थोड़ी देर से जुड़ी हूँ, क्या चल रहा है बताइएगा उल्टा सीधा। तो हमने एक प्रश्न कहा था कि जैसे राही हीरा, राही का उल्टा होता है हीरा और उसका कोई अर्थ भी होता है, ऐसे ही कुछ शब्द अगर आपके दिमाग में आए तो आप सुझा सकते हैं। साथ ही हमने एक और प्रश्न पूछा कि माता पिता की सीख आप बताइए और ऐसा कुछ जो आपने किया है और आपको बड़ा सुकून मिला है उसे भी सबके साथ साझा कीजिए। तो हमारे श्रोता ने लिखा है कि अगर हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो जानवरों के लिए दाना पानी की व्यवस्था तो कर सकते हैं, गर्मी बहुत है, सच बात है, हम तो पानी लेकर पी सकते हैं, कहीं से व्यवस्था कर सकते हैं, पर वो बेचारे अब उध कहाँ जाएंगे, उनकी मदद भी तो हमें ही करनी है ना, क्योंकि उनके जंगलों को साफ करके, उनकी नदियों को पाट कर, उनके समंदर को पाट कर हम उनकी जगह पर रहने लगे हैं, तो इस बात का ख्याल हमें ही उनके लिए रखना होगा। तो हम सभी अगर ख्याल रखें तो कितना अच्छा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सोना बड़ा कीमती है, सोना अर्थात नींद भी बहुत कीमती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया शब्द दिया, सोना सोना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि विधि, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बहुत थक जाती थी, ससुराल में बहुत काम करना पड़ता था, तो मेरी माँ कहती थी कि काम करने से इंसान और मजबूत होता है। मुझे अपनी पढ़ाई के लिए वक्त नहीं मिलता था तो पापा कहते थे कि थोड़ा सोने में से वक्त कम कर दो, पढ़ाई का वक्त निकल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ दिल में चाह होनी चाहिए, बस दिल की चाह पूरी करते जाइए। और हमने जो प्रश्न पूछा था उसके लिए हमारे श्रोता लिखते हैं कि अंदाज फिल्म मोटरसाइकिल पर हेमा मालिनी को बॉम्बे की मुंबई की सड़कों पर गाते हुए घुमा रहे हैं राजेश खन्ना। बिल्कुल सही है। हमारे एक और श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि व्यवहार, व्यक्ति का व्यवहार इस प्रकार होना चाहिए कि जब वह अपनी कॉलोनी गली से निकले तो हर आदमी आपकी इज्जत करे, और वह भी किसी डर या दौलतमंद होने के कारण नहीं बल्कि व्यवहार और नम्रता के कारण। कितनी अच्छी बात लिखी है। एक और श्रोता ने लिखा कि कोई भी काम छुपकर नहीं करना चाहिए, ऐसा उनके पिताजी ने उन्हें सिखाया। कितनी बड़ी सीख सिखा गए, छुपकर नहीं करेंगे तो गलत काम होगा ही नहीं। इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, इसे आप किस तरह से जी रहे हैं आप पर निर्भर करता है, जिंदगी सहरा भी है, जिंदगी गुलशन भी है, प्यार में खो जाओगे तो जिंदगी मधुबन भी है। कितनी अच्छी बात आपने कही। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि माताजी पिताजी के गुजर जाने के बाद इनका भाई जो है वो पंडिताई करते रहे हैं, तो गांव में तीन बच्चों के साथ रह रहे थे और वो शहर में, और जब विकट स्थिति विश्व की आई थी उस समय रोजगार के अभाव में संकट था, तो आर्थिक जिम्मेदारी निभाई थी और आज वह संपन्न है पर उनकी बात नहीं भूला। बहुत सही बात है, मदद करने से जो खुशी मिलती है ना, खुशी कहीं नहीं होती। और मैं हमेशा करती रहती हूँ, कभी टीचर्स की, कभी दोस्तों की, कभी फैमिली की, इंसान को बराबर समझती हूँ, कभी कोई भी हो सबकी मदद करनी चाहिए। बस इतनी अच्छी बात आप लिख रहे हैं, मदद ज़रूर करिए मगर निस्वार्थ रखिए, फिर देखिए आपको कितनी खुशी मिलती है। ये हमारे श्रोता कह रहे हैं, पुराने कपड़े, पुराना सामान, बच्चों के खिलौने आदि जो कुछ हमारे काम का नहीं है, हम तो अनाथ आश्रम में दे आते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बेचारों के माता पिता नहीं हैं, किसी बहाने उनके माँ बाप बन जाएं तो उनको भी खुशी होगी। हमारे श्रोता ने लिखा कि उनके गुरु जी कहा करते हैं कीरत करो अर्थात कीर्तन सत्संग करो, नाम जपो प्रभु जी का, वाहेगुरु जी का नाम जपते रहो, मंड रखो यानी मिल बांट कर खाओ, और इनके पिताजी ने भी यही सिखाया है इनको। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बात अजीब लग सकती है पर मेरे पिताजी मेरे से इसलिए नाराज़ रहते थे कि मैं हमेशा ईमानदारी सच्चाई का साथ देती हूँ, मैं 51 साल की हूँ और लोग मुझे अभी भी बेवकूफ़ समझते हैं। नहीं, सच्चाई का साथ देने वाले का साथ हमेशा उसका ईश्वर ज़रूर देता है, तो साथ देते रहिए, अच्छी बात है। और चलिए अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। हमारे श्रोता ने एक लिखा है कि मेरी माँ ने सिखाया है कोई कुछ भी बोले उसे मन पर नहीं लेना, हमेशा भूल जाओ यही मानसिकता रखना। हमारे एक श्रोता तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन का बीड़ा उठाया है, और उसके साथ लिखते हैं कि उन्होंने अपनी आँखें भी आँखों के बैंक में डोनेट कर दी हैं, आइज भी आइज बैंक में डोनेट कर दिए हैं। कितना अच्छा काम किया है, आपके बाद भी आपकी आँखें ये दुनिया देख सकेंगी। हमारे श्रोता लिखते हैं एक और, चाहे थोड़ा खाओ लेकिन जो खाओ वो अच्छा खाओ, ये बात पिताजी कहते थे और हमेशा हमें याद रहती है। बहुत बढ़िया बात है। हमारे एक श्रोता ने प्रश्न उठाया है, इस प्रश्न का उत्तर आप सब देने वाले हैं। अब ये प्रश्न मेरा नहीं, हमारे एक श्रोता का है, और वह प्रश्न ये है, आज बच्चों में नैतिक मूल्य कम होते जा रहे हैं, इसके लिए क्या हम माता पिता जिम्मेदार नहीं हैं? ज़रा इसका उत्तर आप दीजिएगा। और तब तक सुनिए अगला गीत, और अगले गीत में बता दीजिए कि इसके गायक कलाकार कौन है। गायक कलाकारों के नाम बताइए और बताइए क्या बच्चों में की जो संस्कार अगर कम होते हैं तो उसके लिए माता पिता जिम्मेदार होते हैं, बताइएगा।
1: उठे सबके कदम देखो रंग।

हम सुन रहे थे बातों बातों में फिल्म से यह गीत। अमित खन्ना ने इसे लिखा, राजेश रोशन ने संगीतबद्ध किया और हमने आपसे पूछा कि इस गीत के गायक कलाकार कौन है, तो आपने तो हमें बड़ी सारी जानकारी दे दी। और उस जानकारी में पहले तो आपने बताया भी कि इसके गायक कलाकार अमित कुमार और लता मंगेशकर हैं। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे से बताया कि एक बेहतरीन पारंपरिक गीत है, वासु चटर्जी की एक बेहतरीन पारिवारिक रिश्तों को लेकर बनाई गई फिल्म है। इसके लिए हमारे श्रोता बड़े खुश होते हैं कि उनके गीतों को सम्मिलित किया जाता है। तो इसके लिए भी हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि डेविड बूढ़ा और लीला मिश्रा को, जी को एक ईसाई वाला रोल किया, अमोल पालेकर और टीना जी के प्रेम चल रहा है, डेविड बूढ़ा मस्ती ले रहा है, लीला मिश्रा जी गजब ईसाई कल्चर है। जी बिल्कुल, बहुत सही बात है। और अब चलते हैं हम हमारे संदेशों की तरफ जो हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं, और जल्दी जल्दी से हम हमारे संदेशों को पढ़ लेते हैं क्योंकि समय भी हो रहा है सुरीला सफ़र का। हमारे श्रोता लिखते हैं कि माता पिता नहीं वस्तुतः नैतिक मूल्य गिरने का कारण स्वयं बालक का ही होता है। बिल्कुल सही बात है, हम इस बात को मानते हैं। हमारे श्रोता ने लिखा है, आज की जनरेशन में नैतिक मूल्यों की कमी के कारण हर माता पिता हैं, क्योंकि हम उन्हें खर्च का पैसा दिया है, मोबाइल दिया है, अच्छे विद्यालय में प्रवेश दिलाया, लेकिन हमने अपने संस्कार, हमारे गुरुओं के साथ के बारे में बैठकर शिक्षा नहीं दी है। घरों में अपने धार्मिक ग्रंथ पढ़ने को रखें, इस बात की वो सलाह देते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि माता पिता ही सबसे पहले जिम्मेदार हुआ करते हैं, समाज या माहौल उसके बाद में, क्योंकि पक्षी अपने चूजे को पंख निकल जाने से पहले तक पालता है, और जब पंख लग जाए तो उसके बाद वह आपके रोकने पर भी नहीं रुकेगा। पैदा होते ही शिशु के हाथ में मोबाइल आ जाता है, तो अपने हितों के चलते ऐसे में किसको दोष दें। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं, मेरी मम्मी बोलती थी, जहाँ काड़ वहाँ हड़ा बाड़, जो आपके पास है उसकी ज़रूरत के हिसाब से खर्च करो, अपने आसपास के लोगों की मदद करो, ईश्वर कभी कमी नहीं आने देते। ये बात तो मैं अपने ऊपर भी लागू करती हूँ और इस बात का वो ख्याल रखते हैं। इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातों को लेकर इसमें लिखा है। और इसके साथ ही अभी जो हम चल रहे हैं उनमें हमने दो शब्दों के बारे में भी आपसे बात करी थी, तो राख का खरा का राख होता है, जो जितना खरा होगा वो राख नहीं बन पाएगा, ऐसा हम मानकर चलते हैं। इसके साथ ही एक और शब्द आया कि जीना भी कला है। जीना का दो अर्थ होते हैं, एक होता है सीढ़ियाँ और एक होता है जीवन। एक और श्रोता ने लिखा है, नवजीवन का उल्टा सीधा दोनों एक जैसा होता है। हमारे श्रोता ने उत्तर दिया, हवा, वाह। एक ने लिखा, इस गर्मी में कोई हवा कर दे तो मुंह से वाह निकल जाती है। जी मन नम, हमारे श्रोता ने बड़ा अच्छा लिखा है, मन मन यानी चंचलता का प्रेरक है, तो अगर नम है तो आर्द्रता के लिए कहा जाता है। बिल्कुल बढ़िया बात कही है आपने। इसके साथ हमारे एक श्रोता ने मन की बात लिख दी कि बहन जब ससुराल जाती है तो भाई को रोना आता है, और शायद अब वही समय वही काल आ रहा है कि बहनें अपने अपने ससुराल जाने की कोशिश करने लगी हैं। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, नाम मना। कई लोग होते हैं जो अपने नाम को बताने के लिए मना करते हैं, और शायद वही सही मायने में बड़े प्रस्तोता होते हैं, बड़े कार्य को करने वाले होते हैं। और इसके साथ हमारे श्रोता लिखते हैं, बस सब मिलकर बस कर सकते हैं, ऐसा लिखा है बहुत सारी चीज़ें। हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी, सबको खुश करना चाहिए, सबकी मदद करनी चाहिए, दिखावे के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। अब हमारे श्रोता ने एक और श्रोता ने बात लिखी, मेरे पति देव को हमेशा मदद करने की आदत थी, एक बार उनके मित्र को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा तो मेरे पति ने उन्हें फोटोस्टेट मशीन खरीद कर दिया। आज बात को 20 साल हो गए, लेकिन उनकी माँ इस बात को याद करके कभी धन्यवाद देना नहीं भूलती हैं। बहुत बढ़िया बात है, बच्चे सबसे पहले अपने घर से सीखते हैं। व्यस्त जीवन शैली, काम के दबाव, अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण माता पिता अक्सर बच्चों को समय नहीं दे पाते। इसके अलावा माता पिता का आपस का व्यवहार और घर का माहौल सीधा बच्चों पर असर डालता है। स्कूलों में नैतिक शिक्षा नींव की कमी है। ये बहुत सारी बातें हैं जो हम सबको समझनी चाहिए। और आज के कार्यक्रम का ये गीत हम आपको सौंपते हैं, बस एक प्रार्थना करते हैं, मुस्कुराते रहिए और दूसरों के लिए भी मुस्कुराने की वजह बन जाइए। साथ दीजिए, हाथ दीजिए, और ये जीवन बड़ा सुंदर हो जाएगा।

हम सुन रहे थे गीत बड़े दिल वाले, फिल्म से लता मंगेशकर, उदित नारायण की आवाज़ में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देवर्मन के संगीत के साथ। सुरीला सफ़र कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप सब ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे का साथ देते रहिए, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन एक दूसरे के साथ का ठिकाना होता है। अपने बच्चों को संस्कारित कीजिए, क्योंकि यही पीढ़ी है जो भारत को आगे लेकर जाएगी। और इसी के साथ आज्ञा दीजिए, विधि प्रवीण जैन को नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, मुस्कुराओ। मुस्कुराने में पैसे नहीं लगते, लेकिन मुस्कुराने से खुशियां जरूर आती हैं। जीवन में भागा दौड़ है, चुनौतियां हैं, परेशानियां हैं, पर इस सब के बीच केवल एक चीज है जो आपको सदा के लिए खुशी दे सकती है, और वह है आपकी खिलखिलाती हंसी। तो एक बार जोर से खिलखिला लीजिए अपने जीवन में, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारियां हैं, काम हैं, कई सारी और मुसीबतें भी हैं। इन सब के बीच हमारे पास हमारा अपना बचता है, वो है मुस्कुराना और खिलखिलाना। तो हंसी एक ऐसा उपहार है जो हमें मिला है और जो हमें बनाता है भीतर से मजबूत। अगर कहीं हार रहे हैं

मुस्कुरा लीजिए, वो मुस्कुराहट आपकी जीत की प्रेरणा बन जाएगी। कभी अगर जीवन में कोई समस्या सामने दिख रही है तो बस मुस्कुरा लीजिए, वह समस्या के लिए दवा बन जाएगी आपकी अपनी मुस्कुराहट। और कोई भी साइड इफेक्ट इसके है नहीं, यह शरीर को ही नहीं मन को भी स्वस्थ बनाता है। तो मुस्कुराइए और हंसिए जोर से ठहाके लगाकर।

एक शेर पढ़ा था कहीं कि हंसी के बिना ये जिंदगी अधूरी लगती है, हंसी के बिना ये जिंदगी अधूरी लगती है, मुस्कान हो तो हर मुश्किल भी आसान लगती है, हंसी हमें जोड़ती है, हमारे रिश्तों में मिठास भरती है, दिलों के बीच दूरियां कम करती है, और जब हम हंसते हैं तो ना ही हमारा मन हल्का होता है बल्कि आसपास का माहौल भी खुशनुमा हो जाता है। कभी देखा है दूर से आते हुए किसी अनजान व्यक्ति को एक प्यारी सी मुस्कुराहट दे दीजिए, वो मुस्कुराहट उसके साथ एक लंबी दूरी तक चलेगी और जाने कितने चेहरों को मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी। तो मुस्कुराइए, क्योंकि मुस्कुराना आपके लिए

किसी ने क्या खूब कहा है कि गमों की धूप में भी छांव बन जाती है हंसी, गमों की धूप में भी छांव बन जाती है हंसी, हर दर्द को पल भर में भुला जाती है हंसी। तो जीवन में अगर कोई भी समय आपको मिलता है तो एक खास समय निकालिए अपने लिए और अपने परिवार के बीच, अपनों के बीच बैठकर जोर से ठहाके लगा लीजिए। ठहाके लगाने का मन नहीं है तो कम से कम मुस्कुरा ही लीजिए। कई बार ऐसा लगता है कि हंसी मजाक में कोई कुछ कह देता है तो हमें ऐसा लगता है हमारे लिए गलत कह दिया। ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों को भूलकर हम सकारात्मक रूप से लेकर अपनी आत्मविश्वास के साथ जीवन के प्रति हल्का फुल्का नज़रिया अगर रखें तो मुस्कुराना बहुत आसान होगा। तो मुस्कुराने की आदत डाल लीजिए और कुछ इस बात की तरह कि मुस्कुराने की आदत डाल लो दोस्तों, ये वही दौलत है जो मुफ्त में मिलती है। तो आइए हम संकल्प लेते हैं कि दिन में कम से कम एक बार मुस्कुराएंगे और दो बार जोर से ठहाके लगाएंगे और जी लेंगे अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से और साथ में आसपास के लोगों को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देंगे। तो मुस्कुराइए क्योंकि मुस्कुराने के पैसे नहीं लगते।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा, यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
4: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
3: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
5: कमीशन की तरफ से दिल्ली में SIR टाइम शेड्यूल लॉन्च हो चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है BLOs की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में BLO हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और 2 फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के BLO को दे देना है और दोनों फॉर्म पे BLO काउंटर साइन करेंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए।
3: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट

0: ख्याल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
1: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाईकोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
3: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने

0: यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
1: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
2: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
3: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
1: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए सुनते हैं पहला नगमा पैचू बावरा फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज है, शकील बदायूनी के बोल हैं और नौशाद का है संगीत।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

0: हम सुन रहे थे दाग फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

हम सुन रहे थे दीवाना फिल्म का यह गीत, मुकेश की आवाज़ में हसरत जयपुरी और शैलेंद्र के बोल शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत, रामी धोबन फिल्म से हेमंत कुमार की आवाज़ में राम मूर्ति के बोल और हीरेन बोस के संगीत से सजा हुआ ये प्यारा सा नगमा।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत जलपरी फिल्म से। सुमन कल्याणपुर की आवाज में जफर राही ने इसे लिखा, सुरेश कुमार ने इसे संगीतबद्ध किया।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। यह था कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अंतिम गीत। और आज्ञा दीजिए मुझे इस कार्यक्रम से। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, नमस्कार।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर के 3 बजने को हैं। अब आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार और 3:05 पर सामयिक चर्चा रिले की जाएगी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि भविष्य में बादल फटने की घटनाएं केवल हिमाचल तक सीमित नहीं रहेंगी और उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्य में इन घटनाओं के बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि ये खुलासा केंद्र सरकार द्वारा करवाए गए एक अध्ययन में हुआ है। मुख्यमंत्री शिमला में नगर निगम के पूर्व उपमहापौर टिकेंद्र पंवर द्वारा संपादित पुस्तक सिटी लिमिट्स द क्राइसिस ऑफ अर्बनाइजेशन के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रकृति ने हिमाचल को स्वच्छ आबोहवा और पानी का उपहार दिया है और इन संसाधनों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए विकास को आगे बढ़ा रही है।
1: हमारे पास भगवान ने सब चीजें दी, प्राकृतिक सौंदर्य दिया है, पानी दिया है, हवा दी। हमारी 90% लैंड पहाड़ों से गिरी, 90% हमारी पॉपुलेशन गांव में है, अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा हो और 2040 तक हिमाचल प्रदेश की 50% पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन में रहनी शुरू कर। अब एक जो हमारी अर्बन है, अब सिटी बिगड़ चुकी है और जो सिटी बनाने जा रहे हैं उसको हमने कैसे सोचा? एक तो बिगड़ी सिटी जिसको आपने और हमने पूर्वजों ने बना दिया।
0: झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने इस मौके पर कहा कि लोगों को अपने आचरण में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पर्यटकों के लिए जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के साथ साथ लोगों को अपनी सामूहिक जिम्मेदारी को समझना चाहिए। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने आज भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल से समीरपुर स्थित उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने इस मौके पर प्रोफेसर धूमल को मोदी युग में भारत का सशक्तिकरण नामक पुस्तक भी भेंट की। सिकंदर कुमार ने इस मौके पर कहा कि प्रोफेसर धूमल का राजनीतिक जीवन संगठन, सुशासन और जनसेवा का प्रेरणादायक उदाहरण रहा है। सिकंदर कुमार ने कहा कि प्रदेश के विकास, भाजपा संगठन के विस्तार और आम जन के हितों की रक्षा में प्रोफेसर धूमल का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। इस मौके पर संग्रह पंचायत के नव निर्वाचित प्रतिनिधियों ने भी प्रोफेसर धूमल से शिष्टाचार भेंट की। प्रदेश में कल 28 मई को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। मतदान के तुरंत बाद पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान और सरपंचों के लिए पड़े वोटों की गिनती होगी, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए मतदान की गिनती 31 मई को होगी। 31 मई को ही प्रदेश के 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला के लिए हुए चुनाव की मतगणना भी होगी। पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण के चुनाव के लिए कल 1274 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे और आखिरी चरण में 30 मई को 1187 पंचायतों में मतदान होगा। इस बीच कल होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज उम्मीदवारों ने भीषण गर्मी के बावजूद राज्य के विभिन्न हिस्सों में घर घर जाकर वोट मांगे और अपनी जीत पक्की करने का प्रयास किया। इससे पूर्व बीते रोज हुए पहले चरण के चुनाव में 78% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी के चलते राज्य में वनों में आग की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है। राजधानी शिमला के आसपास वनों में आग की लगभग आधा दर्जन घटनाएं हुई हैं, जबकि सोलन जिला में भी कई स्थानों पर जंगलों में आग लगी हुई है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कसौली के साथ लगते मनोन गांव, गिलबर्ट ट्रेल और अपर मॉल क्षेत्र में जंगलों में लगी आग को सेना, वायुसेना और कसौली व चंडीगढ़ प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से काबू कर लिया गया। इस दौरान भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने चंडीगढ़ के सुखना लेक से लाए गए पानी से इस आग को काबू किया। इस दौरान पश्चिमी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने जंगल की आग से प्रभावित क्षेत्र का दौरा भी किया। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। खासकर राज्य के मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन और मंडी जिलों में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। ऊना जिला में तापमान के लगभग 44 डिग्री पहुंच जाने के चलते छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है और भीषण गर्मी से बचने के लिए एहतियाती उपाय करने को कहा गया है। अत्यधिक गर्मी के कारण राज्य के मैदानी क्षेत्रों में बाजारों से रौनक गायब गायब हो गई है। हालांकि शिमला, मनाली और डलहौजी जैसे शहरों में गर्मी से बचने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार के बाद अब पेश है सामयिक चर्चा। विषय है ग्रामीण भारत में जल शासन। वाचक स्वर प्रभा शर्मा।
0: जल पर्यावरणीय समन्वयता और मानव कल्याण का एक मौलिक आधार है। विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गति बरकरार रखने के लिए जल संसाधनों की उपलब्धता, वितरण और प्रबंधन महत्वपूर्ण है। केंद्रीय जल आयोग के अंतरिक्ष आदानों के उपयोग से भारत में पानी की उपलब्धता का पुनर्आकलन 2019 शीर्षक अध्ययन के अनुसार देश में औसतन सालाना लगभग 3,880 अरब घन मीटर वर्षा होती है। अगर वाष्पण और अन्य प्राकृतिक कारणों से नुकसान को निकाल दें तो देश में औसत सालाना जल उपलब्धता लगभग 2000 अरब घन मीटर रहने का अनुमान है। देश में जल की औसत सालाना उपलब्धता काफी हद तक जल मौसम वैज्ञानिक और भू वैज्ञानिक कारकों पर निर्भर करती है, लेकिन पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता आबादी के आकार से भी निर्धारित होती है। आबादी में लगातार वृद्धि के साथ ही पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता घट रही है। इसके परिणाम स्वरूप जल संसाधनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। विश्व की 17.5% जनसंख्या और 11.6% मवेशी संख्या भारत में है। इससे देश जल संसाधनों पर दबाव काफी बढ़ जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 80-90% जल का उपयोग कृषि में किया जाता है। सीमित जल संसाधनों पर बढ़ते दबाव के परिणाम स्वरूप भूजल के स्तर में गिरावट आ रही है। इससे जल की मौसमी तंगी होने के साथ ही पानी के आवंटन को लेकर टकराव भी बढ़ रहे हैं। ये चुनौतियां आपूर्ति संचालित दृष्टिकोण के बजाय मांग आधारित और योजनाबद्ध जल प्रबंधन प्रणालियों को अपनाने की जरूरत को रेखांकित करती हैं। इस संदर्भ में जल बजटिंग पानी की कमी वाले उन क्षेत्रों में संवहनीय विकास के महत्वपूर्ण साधन के तौर पर उभरी है, जहां तंगी और असमान वितरण से आर्थिक स्थिरता, खाद्य सुरक्षा और जलवायु अनुकूलता को खतरा है। जल बजटिंग का मतलब नवीकरणीय उपलब्धता के साथ पानी के इस्तेमाल को संतुलित करने के मकसद से गांव, जल क्षेत्र, प्रखंड और जिला जैसी किसी परिभाषित भौगोलिक इकाई में जल की सुलभता और मांग का व्यवस्थित ढंग से आकलन है। जल बजटिंग के मूल में वाष्पण, बहाव और भूजल, भूमि पर प्रवाह, भूजल संचय समेत जल के सभी आदानों का आकलन है। बुनियादी गणना से आगे एक विस्तृत जल बजट प्राकृतिक परिवेश के अंदर जल के प्रवाह और वितरण को समझने में मदद करता है। इसमें सतही जल और भूजल प्रणालियों के बीच अंतःक्रिया, वर्षा और रिचार्ज में मौसमी परिवर्तन तथा कृषि, शहरीकरण और औद्योगिक उपयोग जैसी मानव गतिविधियां का प्रभाव शामिल है। जल बजटिंग को विभिन्न पैमानों पर व्यक्तिगत खेतों और गांवों से लेकर समूचे जल क्षेत्र और नदी घाटी तक लागू किया जा सकता है। इससे स्थानीय स्थितियों, संसाधनों की उपलब्धता और मांग की प्रकृति के आधार पर किसी खास स्थान के लिए जल प्रबंधन योजनाओं को तैयार करना संभव होता है। इस तरह का योजना निर्माण खासतौर से भूजल की कमी, मौसमी तंगी, बाढ़ या जलवायु से संबंधित अनिश्चितताओं का सामना कर रहे क्षेत्रों के लिए खासतौर से महत्वपूर्ण है। शासन के दृष्टिकोण से देखें तो जल बजटिंग सूचनाओं और साक्ष्यों पर आधारित निर्णय लेने में मददगार है। ये अधिकता और तंगी वाले क्षेत्रों की पहचान कर कृषि, घरेलू उपयोग, मवेशियों और उद्योगों के लिए जल के कुशल आवंटन को संभव बनाती है। राष्ट्रीय एकीकृत जल संसाधन विकास आयोग का अनुमान है कि उच्च मांग वाले परिदृश्य में वर्ष 2050 तक भारत में सिंचाई के लिए पानी की मांग 807 बिलियन क्यूबिक मीटर तक पहुंच सकती है। नाबार्ड द्वारा सहायता प्राप्त सहभागी जल बजटिंग पहलकदमियों के साक्ष्यों से पता चलता है कि पानी की उपलब्धता के अनुरूप चुनी गई फसलें जोखिम को कम करती हैं और उत्पादकता को बढ़ाती हैं। जल बजट एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है जिसमें मवेशी और मत्स्य पालन जैसे संबद्ध क्षेत्रों की जल आवश्यकताओं को भी शामिल किया जाता है। मानक मानदंडों का उपयोग करके मवेशियों की पानी की मांग का अनुमान लगाना और इसे समग्र जल मूल्यांकन में शामिल करना अधिक संतुलित आवंटन सुनिश्चित करता है। सामयिक चर्चा समाप्त हुई। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 3:10 हुए हैं। आइए अब आपको ले चलें आकाशवाणी मुंबई, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।
2: 3:10 हुए हैं। कुल्लू और कल्पा रिले केंद्रों पर अब से लेकर शाम 4:20 तक आप सुन सकते हैं विविध भारती के कार्यक्रम। आकाशवाणी शिमला से हमारे कार्यक्रमों का प्रसारण अब बंद होता है। शाम 4:20 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

0: यही तो सवाल हम आरती से कर रहे हैं कि भाई आरती आप हमारी कौन है?
1: हम आपकी सखी हैं और सभी सखियां जो हैं अब सुन रही हैं उनकी भी सखी हैं, सखाओं के भी।
0: तो हम सबकी हैं सखियां सहेलियां और ये संसार है बातों का, ज्ञान का, मनोरंजन का और गीतों के सफर का, जहाँ बहुत सारी हम बातें करते हैं, बहुत सारी जानकारियां देते हैं। आज हम कलमकारी साड़ियों के बारे में बता रहे हैं।
1: बिल्कुल, साड़ियों के तो बारे में सुनने के लिए वैसे भी हमारी जो सखियां हैं, जो सखा तो इसलिए उतारू रहते हैं कि भाई चलो हम कोई गिफ्ट कर देंगे अपने।

0: बिल्कुल
1: तो इसकी वजह से, तो हम आज लेकर आए कलमकारी साड़ी। तो आंध्र प्रदेश के श्रीकालहस्ती और मसूलीपट्टनम कलमकारी साड़ियों की उत्कृष्ट डिजाइन और सुंदरता के जो जन्म स्थान, मतलब यहीं से ये साड़ियाँ निकली हैं। ये साड़ी कॉटन, मलमल और सिल्क जैसे फैब्रिक में आती हैं और ये पहनने में बहुत ज़्यादा हल्की, आरामदायक और क्लासी लुक देती हैं। क्योंकि हम लोग ऐसी साड़ियाँ ढूंढते हैं ना कि थोड़ी एकदम आरामदायक हो और बहुत ज़्यादा भारी ना हो।
0: बिल्कुल, क्योंकि अब आरती रोज़मर्रा में पहनने की आदत उतनी बची नहीं है ज़्यादातर महिलाओं की, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो बिल्कुल हल्की फुल्की हो, कम्फर्टेबल हो और साथ में एक एक जो उनके लुक आए
1: गरिमामय लुक आए।
0: तो कलमकारी साड़ियाँ कला और कहानी कहने की परंपरा का संगम है। ये हाथ से बनी होती हैं, ब्लॉक प्रिंटेड डिज़ाइनों के लिए ये साड़ियाँ हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। इनके अनूठे रूपांकन और जीवंत पैटर्न इन्हें पारंपरिक अवसर और आधुनिक पहनावे दोनों के लिए पसंदीदा बनाते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रिंट होती है और हाथ से बनी होती हैं, फूल होते हैं, कहीं पे जानवरों के डिजाइन होते हैं, कहीं पे ज्योग्राफिक पैटर्न होते हैं, तो बहुत
1: सुंदर लगती हैं
0: जी।
1: और कलमकारी शब्द फारसी शब्द कलम और करी से बना है, जो कि यानी कि कलम और कारीगरी
0: जी,
1: जिस तरह से इसमें कारीगरी करते हैं ना, जिसका अर्थ है कलम का शिल्प। ये प्राचीन कला जो शैली है वो 3000 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में उत्पन्न कलमकारी कला में प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके जटिल हस्तचित्रण या ब्लॉक प्रिंटिंग का तकनीक अपनाई जाती है।
0: बिल्कुल, और परंपरागत रूप से अगर देखें तो इन साड़ियों में महाभारत, रामायण, पुराणों के पौराणिक दृश्यों को दर्शाया जाता है। अक्सर इनका उपयोग मंदिरों की पृष्ठभूमि के रूप में किया जाता था। उस समय समय के साथ साथ कला का यह रूप फिर धीरे धीरे विकसित भी हुआ। फिर इसमें पुष्प, पशु और जैसे हम बात कर रहे थे ना, ज्यामिति आकृतियों को, इनको भी सबको शामिल किया गया।
1: बिल्कुल, और इससे कलमकारी साड़ियाँ विभिन्न अवसरों के लिए बहुत ज़्यादा बहुमुखी बन गई, मतलब आप किसी भी अवसर पर इनको पहन सकते हैं। पर्यावरण के अनुकूल हैं, प्राकृतिक रंगों के उपयोग से इन साड़ियों को उनके विशिष्ट मिट्टी जैसे रंग और जीवंत रंग मिलते हैं। और कलमकारी डिज़ाइन आमतौर पर सूती, रेशम और यहाँ तक कि ऑर्गेन्जा जैसे कपड़ों पर तैयार किए जाते हैं, जो आरामदायक भी होते हैं और सुंदर भी दिखते हैं
0: जी। अब एक अगर साड़ी बनानी होती है सखियों, तो उसमें कई तरह के चरण हैं, मतलब बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसे पूरा करने के लिए अक्सर हफ्तों लग जाते हैं। अब इनमें जितनी जो मनमोहक कलाकृति है, उसमें कृष्ण रास लीला है, पार्वती, विष्णु या महाभारत, रामायण के दृश्य चित्रित होते हैं। ये दिव्य आकृतियाँ कलमकारी साड़ियों में एक आध्यात्मिक आकर्षण इसे जोड़ती है।
1: बिल्कुल, और अक्सर लोग जब मंदिर वगैरह जाते हैं तो इनको लेना पसंद करते हैं
0: जी।
1: और ये साड़ी कला के माध्यम से समृद्ध प्राचीन इतिहास को संरक्षित भी करती है। पौधों और सब्जियों से निकाले गए प्राकृतिक रंगों से इसे जीवंत रंग और अनूठी बनावट मिलती है। रंगाई और छपाई की प्रक्रिया के बीच एक निश्चित अंतराल कलमकारी साड़ियों की कारीगरी को और भी ज्यादा जटिल बना देता है।
0: बिल्कुल, और कलमकारी साड़ी बनाने में, एक पीस को बनाने में आप ये समझिए कि 2 से 3 हफ्ता लग जाता है। बेहतर रंग अवशोषण के लिए कपड़ों को धोया जाता है, गोबर और दूध से उपचारित किया जाता है, गुड़ और लोहे के जंग से बने रंग का उपयोग करके वो काली रूपरेखा, जो एक उसमें बॉर्डर हमेशा जो इसमें आकृतियों की बॉर्डर होती है वो काले कलर की होती है, तो वो इस तरह से तैयार की जाती है। फिर जो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रंगों को धीरे धीरे एक एक परत दर परत फिर लगाया जाता है
1: जी। कितना अलग ही तरीके का एकदम प्रोसेस है इसका।
0: और हम देखिए ना, जाके दुकान पे फिर कितना बार्गेनिंग करते हैं। हम जानते ही नहीं कि ये साड़ी, अगर आप मतलब एक प्योर कलमकारी साड़ी लेने जाते हैं तो कितना उसमें
1: बहुत मेहनत है,
0: कितनी मेहनत है, परिश्रम।
1: बिल्कुल, और पीले रंग के लिए हल्दी का प्रयोग होता है, लाल रंग के लिए अनार का छिलका और नीले रंग के लिए नील। प्रत्येक रंग लगाने के बाद धुलाई और सुखाने की आवश्यकता होती है। कुछ कपड़ों को रंग स्थायी रूप से लगाने के लिए उबाला जाता है। एक बार जब रंग कपड़े पर पूरी तरह से समा जाता है तो कारीगर हाथ से चित्रकारी करके या ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा डिज़ाइन बनाते हैं।
0: क्या बात है, और कलमकारी डिज़ाइनों को उत्तम फिनिशिंग और बारीकियां देने का काम केवल वर्षों के अनुभव और उत्कृष्ट कौशल वाले कारीगर ही कर सकते हैं। और डिज़ाइनों की रूपरेखा बनाने के लिए एक महीन नोक वाले ब्रश या स्याही से भरे लकड़ी के ब्लॉक का इसमें उपयोग किया जाता है
1: जी। और रूपरेखा पूरी होने के बाद रंगों को भरा जाता है। फिर रंगों और प्राकृतिक बनावट को पक्का करने के लिए साड़ी को धूप में सुखाया जाता है। अच्छी तरह सूखने के बाद अतिरिक्त रंग को हटाने के लिए कपड़े को दोबारा धोया जाता है। और कलमकारी डिज़ाइन भारतीय पारंपरिक कला और रचनात्मकता की चिरस्थायी विरासत का सम्मान करते हैं
0: जी। कलमकारी साड़ियाँ आमतौर पर प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती हैं, इसलिए इन्हें जब इनकी देखभाल होती है बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। इन्हें हमेशा अलग से धोइए, ठंडे पानी और हल्के डिटर्जेंट का प्रयोग करें। साड़ी को ज़्यादा देर तक पानी में न भिगोएं, क्योंकि उसको अगर आपने घर में धोया भी है, ड्राई क्लीनिंग नहीं कराया, घर में धोया भी, तो बस डालना है और बाहर निकाल लेना है, और इसे छाया में ही सुखाना है, तेज़ धूप में कभी नहीं सुखाना है, कम आँच पर उल्टी तरफ से ही इस्त्री इसे करना है।
1: बिल्कुल, और सही देखभाल करने पर कलमकारी साड़ियाँ वर्षों तक चलती हैं। समय के साथ ये और भी मुलायम होती जाती हैं और इनके रंग भी बरकरार रहते हैं। क्योंकि सब कुछ हाथ से बनाया जाता है, इसलिए कोई भी दो साड़ियाँ पूरी तरह से एक जैसी नहीं होती। मामूली अंतर ही इसकी प्रामाणिकता का सूचक होता है।
0: बिल्कुल सही कहा। और इसके जो नेचुरल रंग है, आध्यात्मिक डिज़ाइन, कलात्मक प्रक्रिया, समृद्ध परंपरा, संस्कृति और कला का उत्सव मनाते हैं। विकास, सद्भाव, संरक्षण और दिव्य आकर्षण का प्रतीक प्रत्येक कलमकारी साड़ी पीढ़ियों से चली आ रही एक कहानी बयां करती है। और ये सच में ये साड़ियाँ इतनी सालों तक चलती हैं कि हाँ, नानी माँ को दे सकती है, माँ अपनी बेटी को दे सकती है, तो आपके लिए एक धरोहर के रूप में ये साड़ी बनकर आती है।

0: लाखों ना आजकल निर्भर होते ही चले जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, लोग अपने कामों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर विश्वास भी करते थे, लेकिन आज हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण गैजेट है वो है हमारा स्मार्टफोन।
1: जी, चाहे कॉल करना हो, चैट करना हो, खरीदारी करनी हो, पैसों का लेन देन करना हो या कुछ और, हमारा स्मार्टफोन सब कुछ संभाल लेता है। बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल का जो शौक है वो उनके लिए एक वरदान और अभिशाप दोनों ही हो सकता है। सोशल मीडिया और वीडियो कॉलिंग के जरिए बुजुर्ग अपने दूर रहने वाले बच्चों और रिश्तेदारों से आसानी से जुड़ सकते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि वरदान की तरह है।
0: बिल्कुल सही कहा। और ये किसी भी मेडिकल इमरजेंसी या मदद की ज़रूरत पड़ने पर मोबाइल एक जीवन रक्षक साबित होता है। इसके अलावा मदद पहुंचाने के लिए जीपीएस से उन्हें ट्रैक करना भी आसान हो जाता है। मोबाइल पर वो अपनी पसंद के पुराने गाने हो या भजन हो, धार्मिक प्रवचन हो या समाचार, जो भी चाहें आसानी से देख सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल, घर बैठे ऑनलाइन बिल जमा करना, दवाइयाँ मंगाना या बैंकिंग से जुड़े काम करने के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। बस एक क्लिक पर वो सारा काम बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। कई मोबाइल फ़ोन में स्वास्थ्य संबंधी ऐप्स भी होते हैं जिससे बुज़ुर्ग व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की निगरानी भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और साथ ही दवाओं का समय पता लगा सकते हैं, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से जुड़ सकते हैं। मोबाइल की ई पुस्तकें भी होती हैं, संगीत वीडियो जैसे कई मनोरंजक गतिविधियों ये हमें प्रदान करते हैं। तो बढ़ती उम्र में दिमाग को भी सक्रिय रखना पड़ता है ना, तो उस वो भी रहता है और मनोरंजन भी हमारे बड़ों को मिलता रहता
1: बिल्कुल।
0: है।
1: बिल्कुल, और मोबाइल फ़ोन अब महज विलासिता के उपकरण नहीं रह गए हैं, ये जीवन रेखा की तरह बन गए हैं जो बुज़ुर्गों को अनेक लाभ पहुंचाते हैं। संचार और आपातकालीन सहायता से लेकर ऑनलाइन खरीदारी और बैंकिंग तक, ये उपकरण कई ऐसे फ़ायदे प्रदान करते हैं जो वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं।
0: बिल्कुल, सभी उपकरणों की तरह तकनीक को समझना और सही तरह से इसका उपयोग करना ज़रूरी है। लेकिन आज जिस तरह से युवाओं के साथ बुजुर्गों में फोन का प्रेम बढ़ रहा है, वो दूसरों से बातचीत करने के बजाय स्क्रीन देखने में, हम ऐसा देख रहे हैं कि स्क्रीन देखने में समय उनका ज्यादा बीतता है और इससे अवसाद हो सकता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि आप बहुत ज्यादा समय तक अगर इन सब चीजों में लगे रहते हैं ना, तो एक जो हमारा जो दिमाग है ना वो उसमें लगे लगे अवसाद का शिकार होने लगता है, डिप्रेशन सा होने लगता है हमें,
0: क्योंकि वो बाहरी दुनिया से ऐसा लगता है जैसे कट से गए और घंटों फोन पर गर्दन झुकाए अगर देखते रहते हैं तो एक किसी और ही दुनिया में चले जाते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: और वो हमारे शारीरिक बनावट पे भी बुरा असर डालता है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि एक ही तरीके के उसमें हम बैठे रहते हैं, एक ही तरीके के पोज बनाए हम बैठे होते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से परेशान करता है। और हम सभी ने बाहर घूमते फिरते देखा ही है कि लोग अपने फोन में इतना मगन रहते हैं कि वो अपने काम का आनंद ही नहीं ले पाते। और जब बुजुर्ग लोग परिवार के साथ समय बिताते हैं या अन्य गतिविधियों में स्क्रीन से चिपके रहते हैं तो वो खुद को और अपने प्रियजनों को उन यादों से वंचित कर देते हैं जो जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा बन सकती थी, जब वो साथ में सबके बैठ के बातें करते करें या बच्चों के साथ में खेलें या उनसे कुछ सवाल पूछें, उन्हें अपने अनुभव बताएं। तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं जो खेलते हैं अपने दादी दादा के साथ में, तो वो जो समय है वो उनका रह जाता है।
0: बिल्कुल, वो कहीं छूटता चला जा रहा है। एक रिपोर्ट भी आई आरती इसमें कि अब बच्चों की तरह बुजुर्ग में भी फैमिली टाइम के दौरान सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग के साथ साथ AI चैटबॉट से चैटिंग में लगे रहते हैं, ये इस तरह की रिपोर्ट आई है। और एक और रिपोर्ट आई है कि अगर स्मार्टफोन, टैबलेट और टीवी समेत सारे डिजिटल डिवाइसेस को मिला लिया जाए तो बुजुर्ग लोगों का स्क्रीन टाइम युवाओं से ज्यादा
1: बिल्कुल
0: हो रहा है।
1: ये शोध में सामने आया है कि बुजुर्ग युवाओं से ज्यादा फोन देख रहे हैं और बहुत ज्यादा फोन देखने की वजह से फोन से निकलने वाली जो नीली रोशनी होती है, वो जो ब्लू लाइट कहते हैं जिसे, वो जो नींद लाने वाला हार्मोन होता है वो उसको रोकती है, जिससे रात में ठीक से नींद नहीं आ पाती और सारे दिन की दिनचर्या बिगड़ जाती है। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती ना तो सारा दिन अजीब सा रहता है, बिल्कुल सुस्ती छाई रहती है
0: और हम शिकायतें करते रहते हैं, आज हमारी नींद अच्छे से नहीं हुई, आज हम परेशान से हो रहे हैं। तो कहीं कारण ये भी देख लेना चाहिए कि कहीं देर रात तक हम फोन पे तो नहीं बैठे हुए।
1: बिल्कुल, और बुजुर्गों में फोन की लत डिजिटल डिमेंशिया भी, तनाव वाला भी और तनाव भी पैदा कर रही है, क्योंकि ज्यादा स्क्रीन टाइम से दिमाग पर दबाव पड़ता है, वो भूलने लगते हैं हम चीजों को।
0: हाँ, ये बात तो है, बिल्कुल सही। और भूलने की आदत और चिड़चिड़ापन देखो ना बढ़ता चला जाता है। सोशल मीडिया या वर्चुअल दुनिया में समय अधिक बिताने से वो जो असल की दुनिया है उसमें अकेलापन उनका बढ़ने लग जाता है, डिप्रेशन का कारण बन जाता है फिर ये। इसके अलावा घंटों गलत तरीके से झुक कर बैठे रहना, फोन चलाने से गर्दन, रीढ़ की हड्डी, आप ये देखिए सब में उनमें दर्द की ये शिकायतें करने लगते हैं।
1: और फोन में उलझे रहने के कारण लोग टहलना बंद कर देते हैं, जिससे घुटनों के दर्द और मोटापे की समस्या घेर लेती है। और लगातार छोटी स्क्रीन देखते रहने से

0: इलाकों में सूखापन, जलन और धुंधलेपन की समस्या भी हो जाती है। और बहुत से बुजुर्ग अक्सर तकनीकी रूप से इतने ज्यादा बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं, क्योंकि शहरों में छोड़ दीजिए गाँव में या और किसी ऐसी जगहों पर जहाँ पे बहुत ज्यादा वो तकनीकी रूप से उसमें सदृढ़ नहीं हुए हैं, तो वो परेशानियों का कारण भी बन सकता है।
1: बिल्कुल। और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण बुजुर्ग अक्सर ऑनलाइन ठगों के जाल में भी फंस सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और फंस भी जाते हैं, ऐसे में लॉटरी, बैंक या सस्ते सामान के जो लुभावने संदेश आते हैं ना, उसके चक्कर में भी आ जाते हैं। उसके बदले में वो अपनी गाड़ी, जो कमाई होती है मेहनत से कमाया हुआ पैसा, वो सब गवा बैठते हैं। तो बड़ों के पास समय खूब तो रहता है, लेकिन ऐसे यूजर्स के लिए कंपनियाँ एंडलेस गेमिंग के कंटेंट को डेवलप कर रही है।
0: ऐसे
1: तो,
0: गेम बना रहे हैं ना वो लोग
1: जी,
0: कि जिससे कि वो गेम में लगे रहे, फिर अगला लेवल करना है, अगला लेवल करना है। जैसे कि बच्चों में होता है,
1: हाँ,
0: वैसे बुजुर्गों के लिए भी अलग तरीके के गेम्स बनाए जाने कि वो अगले लेवल पे जाने के लिए पैसा लगाएं, तो जिससे कि उनको
1: तो ये
0: फायदा
1: और
0: हो।
1: उनको लुभावना और आकर्षित करने वाली चीजें हो जाती है और वो फंस जाते हैं उसमें। तो अपनी पैसों को भी संभाल के रखें, वो ध्यान रखें कि हम इन सब चीजों से।
0: और सबसे बड़ी बात है दीपक कि हमको वास्तविक दुनिया से ज्यादा जुड़ना चाहिए बजाय इस तरीके की वर्चुअल दुनिया में रहने के।
1: बिल्कुल। और इसी को लेके देखो ना, कई सारे संदेश हमारे साथियों ने लिख भेजे हैं। ये एक संदेश कहता है कि बड़े बुजुर्गों के हाथ में मोबाइल आने के अनेक फायदे हैं। वो अपने पुराने मित्रों से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पर मुलाकात हो जाती है। शरीर साथ नहीं देता है मोबाइल, लेकिन तो साथ देता है। वो आपस में परिवार के साथ भी जुड़े रहते हैं। मोबाइल आने से उन्हें बहुत फायदा हुआ है।
0: बिल्कुल। और एक कविता भी एक हमारी सखी ने लिखकर भेजी है, जिसको हम पढ़ लेते हैं। गुजरे हुए जमाने में घर के बड़े बुजुर्ग करते थे चिट्ठी पत्री मुलाकातों का इंतजार। जीवन सीधा साधा था, यारों का मेला भी था। तब गप्पों की नगरी में कोई नहीं अकेला था, सब सुख दुख के साथी थे, होठों पे मुस्कानें थी। जब से आई नेट की आंधी, सब उसमें उड़ चले। उससे इससे सीखा उससे सीखा, ज्ञान का पान कर लिया। अब तो व्हाट्सएप चैटिंग करते करते थकते नहीं हैं उनके हाथ। वीडियो कॉल और सोशल मीडिया में खूब रंग जमाते हैं, हंसी मजाक और किस्से जमकर खूब सुनाते हैं। नींद उड़ गई उनकी, लेकिन रातों को भी बतियाते हैं। डर है इतना हमको कहीं ना हो वो बीमार, फ्रॉड कॉल्स में फंसे कभी ना हो जी का जंजाल। डॉक्टर से सब हाल बताकर मिनटों में दवा मंगाते हैं। बुजुर्ग बने हैं बड़े सयाने, दवा खोज कर खाते हैं। उस पीढ़ी से इस पीढ़ी के दौर में वो रम जाते हैं, नए जमाने के संग चलकर वे खूब मजे उड़ाते हैं। ये कविता उन्होंने भेजी है, बहुत
1: बढ़िया। क्या बात है, बहुत सुंदर कविता। और बातों का ये सिलसिला जारी रखते हैं एक अंतराल के बाद।
0: जी।

0: हम अंतराल के बाद एक संदेश सुनते हैं और फिर बातों का सिलसिला भी जारी रखेंगे।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम तो।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: हमारे एक श्रोता ने संदेश लिखा है कि भाई देखिए, मोबाइल बड़े हो या बुजुर्ग या बड़े, सबके लिए अच्छा तो नहीं है हर वक्त इसका इस्तेमाल करना।
1: बिल्कुल।
0: पर घर में कुछ कुछ घर के लिए इसमें ये होता है कि क्लेश भी हो जाता है, जैसे कि पड़ोस के बुजुर्ग हमेशा मोबाइल पर भजन कीर्तन सुनते रहते हैं और वो भी थोड़े ऊंची आवाज में, हमेशा उनका मोबाइल ऑन रहता है घर में भी, और उनके घर के भी सदस्य चिढ़ जाते हैं और इसी तरह बातों को लेकर के माहौल कुछ गर्म हो जाता है। वो ये कहती हैं कि अगर आपके पास, आप उनके पास प्यार से उनको ये कह दिया जाए कि 2 घंटे मोबाइल बंद कर दीजिए, बच्चों का पढ़ने का समय है, या 2 घंटे आप हमारे साथ बैठिए बातें कीजिए, तो उन्हें लगता है हमारे सखी को वो हमेशा मोबाइल पर नहीं बैठे रहेंगे। और साथ में ये भी कहती हैं कि कुछ गलती उनकी भी नहीं है, या यूं कहिए कि कुछ इस तरह की समस्याएं हो जाती है, जैसे मोबाइल पर पूरा वॉल्यूम इसलिए उस पर सुनते हैं क्योंकि उन्हें कम सुनाई देता है। और साथ में कहती हैं फ़ायदा तो मुझे यही नज़र आता है कि कुछ कुछ बातें करते रहते हैं, भजन कीर्तन सुनते रहते हैं, कभी कभी फिल्में भी देख लेते हैं, तो ठीक है, अति हर चीज़ की बुरी होती है, उसके चलते उनकी आंखों में भी प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी आंखों में ड्राइनेस आ जाता है, तो जब समय पर दवा नहीं मिलती तो उसके लिए भी वो हल्ला करते हैं, तो हर चीज़ का एक संतुलन उन्हें ज़रूरी है।
1: ये जो चीज़ें हैं इनकी, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुज़ुर्गों के लिए, बड़े लोगों के लिए ही बुरी हैं, अगर कोई इफ़ेक्ट होता है, अगर कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो सभी के लिए, बच्चे हों उनकी भी आंखों पर खराब असर पड़ता है, बड़ों के लिए भी, है ना। तो कहने का मतलब

0: बस इतना है कि आप उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझें, समझ के तब उसका उपयोग करें, ताकि आप किसी इस तरीके की चीज़ों में ना फंसें, जैसे गेम्स हैं या इस तरीके के जो विज्ञापन आते हैं, जो लॉटरी निकला या आपके ऐसे इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो उसमें ना फंसें, ठीक है। जैसे कि वो इतनी अपनी पूरी उम्र लगा के वो जिस पैसे को कमाते हैं, वो अपनी कमाई को इस तरह गंवा ना दें, बस कहने का ये मतलब है, और बेहतर होगा इस तरीके की चीज़ों को हम समझें।
1: और एक और संदेश आया है कि बुज़ुर्गों में बढ़ता मोबाइल प्रेम और या फ़ायदे, तो वैसे देखें तो मोबाइल का जो सही उपयोग करता है उसके लिए सही है, पर बड़े जो हमारे घर के बूढ़े हैं वो लोग मोबाइल चलाते हैं तो क्या बुराई है, वो कुछ देर कुछ देख लेते हैं, सीखते भी हैं कुछ दुनियादारी की बातें, उनका समय एक तरह से अच्छी तरह से गुजर जाता है। इस उम्र में कुछ बुरा तो वो शायद सीखते भी नहीं हैं, कुछ इस तरह से एक उन्हें लगता है कि एक तरह से अच्छा है मोबाइल फ़ोन बड़े बुज़ुर्गों के लिए।
0: नहीं, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल, ये हम कह भी ये नहीं कह रहा है कि वो कोई चीज़ बुरी है, सिर्फ उन अपने शरीर का ध्यान रखते हुए चीज़ें करें, अपनी आंखों का ध्यान रखते हुए चीज़ें को करें, तो कोई चीज़ इस तरह से बुरी नहीं, बल्कि और फ़ायदेमंद है कि
1: बिल्कुल
0: वो अपना दवाइयाँ मंगा सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं या जो जिनसे वो बात नहीं कर पाते, जा नहीं पाते मिलने, उनसे बातें कर सकते हैं, उन्हें देख के बातें कर सकते हैं वीडियो कॉल पर, बहुत फ़ायदे हैं। नुकसान बस इतना है कि बहुत ज़्यादा अगर उसका उपयोग करेंगे तो आँखों में या उसी पोस्चर में एक ही तरीके से बैठे हुए रहेंगे तो शरीर में परेशानी आ सकती है, और दूसरी चीज़ें चलना फिरना, जो आपसी बातें करते हैं वो चीज़ें छूटने लगती हैं कहीं पीछे, और वो इतना परे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो उनको लगता है कि हाँ उसको मोबाइल को देखते देखते कि अगर कि हम ये चीज़ कर पाते काश हम, तो वो अवसाद में भी आने लगते हैं। बस ये चीज़ें जो बुरा असर अगर आप पर नहीं डाल लें तो वो उसका उपयोग बहुत अच्छा है,
1: बिल्कुल सही
0: जब
1: कहा।
0: तक आपके
1: और
0: ऊपर
1: जो
0: बुरा नहीं
1: अकेले
0: पड़े।
1: रहते हैं घर में
0: जी
1: सीनियर सिटीजन,
0: जी
1: उनके बच्चे बाहर हैं या नहीं उनके किन्हीं कारणों से उनके साथ रह पाते हैं, तो उनके लिए इसका बहुत फ़ायदा है
0: जी बिल्कुल
1: कि वो अपने बच्चों के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं। यहाँ तक कि कई कई घरों में वो नहीं सीसीटीवी टाइप लगा दी
0: हाँ
1: जाती
0: हाँ
1: हैं ताकि वो अपने आप को दिखा सकते हैं, अपने बच्चों को भी देख सकते हैं। और टेक्नोलॉजी सीखने में बुराई नहीं है,
0: बिल्कुल
1: बस
0: नहीं,
1: अगर उसका
0: सही
1: किस तरह से
0: तरीके से,
1: संयमित
0: और ये
1: इस्तेमाल
0: सिर्फ
1: करना है
0: बुजुर्गों के
1: ये
0: लिए
1: हमें
0: नहीं, बच्चों के लिए भी है, हर एक हर इंसान के लिए जो भी इन सब इन गैजेट्स का उपयोग कर रहा है, सभी के लिए चीज़ें हैं।
1: जी
0: और एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि थोड़ी सी सावधानी रखी जाए तो बुजुर्गों के लिए मोबाइल बहुत फायदेमंद होता है, मोबाइल के जरिए वो लोगों से जुड़ पाते हैं और कुछ काम स्वयं कर पाते हैं, जैसे बैंकिंग है, डॉक्टर से परामर्श करना है, टिकट बुक करना है। और बताती हैं कि वो, मेरे पापा भी पहले छोटा फ़ोन चलाते थे, लेकिन कुछ वर्ष पहले जब हमने उन्हें स्मार्टफोन लेकर दिया तो उन्होंने बहुत जल्दी उसे चलाना सीख लिया। अब सुबह उठकर उसका सबसे पहले यही काम उनका रहता है कि वो वीडियो कॉल करके अपनी बहन से बात करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। इसके अलावा वो विविध भारती भी फोन भी जो है उसको भी फोन पर ही सुनते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये।
1: तो चलो विविध भारती का ही कुछ एक गीत सुनते हैं।

0: तो अब हम कहाँ आ गए हैं?
1: अब हम दूसरे सेगमेंट पर आ गए हैं। अपने विषय है हमारा, जो हमने शब्द दिया था अपने श्रोताओं को कि आप इस पर अपने विचार लिखें, वो है आलोचना।
0: बिल्कुल, और बहुत सारे विचार आए हैं, बहुत सारे उन्होंने अपने अपने अनुभव भी साझा किए हैं। तो चलिए जानते हैं क्या कहते हैं। ये पहला संदेश कहता है कि अगर सकारात्मक हो तो उसे समीक्षा कहते हैं। किसी किताब, कविता, नाटक, फिल्म या कार्यक्रम की भली या बुरी विशेषताएं सहज सुंदर शब्दों में सूचित करना। आलोचना अगर जानबूझकर नकारात्मक वृत्ति से हो तो उसे कहते हैं बुराई, जिसमें ऐसे आलोचना ही ज्यादातर दिखाई देती है, जिसमें मत्सर अहंकार की गंध आती है।
1: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि भाई आज का शब्द आलोचना है, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है, और ऐसा देखा जाता है कि लोग वाह वाह तो सुनना चाहते हैं लेकिन आलोचना नहीं, ये लोगों की प्रियता की बात है। फिर वो है ना कि मीठा मीठा गप और तीता तीता थू, आलोचना ऐसे ही तिक्त रसयुक्त ऐसी चीज़ है जो, किंतु जो लोग आलोचना सुनने के प्रेमी होते हैं तो वो लोग अपने में उससे कुछ सुधार भी कर लेते हैं। इस दृष्टिकोण से आलोचना एक सुधार का कार्य भी करती है।
0: क्या बात है, अच्छी उन्होंने जानकारी हमें हमारे श्रोता ने लिख भेजी। अब एक ये संदेश कहता है कि आलोचना किसी कार्य के अच्छे और बुरे दोनों पहलू को दिखाती है। ये सिर्फ एक बुराई नहीं बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान को अपनी कमियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है और उन्हें दूर करने के लिए मत देती है। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधारने का एक तरीका है, बिना किसी निष्पक्षता या भेदभाव के होनी चाहिए। आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए। आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ आपके रिश्ते अगर बिगड़ जाते हैं, बल्कि मतलब रिश्ते बिगाड़ देता है ये, बल्कि तरीके से की जानी चाहिए कि सामने वाला इंसान उसे अपनी कमी सुधारने के लिए उसके बारे में सुनने का उसको मौका मिले और फिर वो उसे दूर करने में मददगार साबित हो।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आलोचना का सही अर्थ केवल किसी की कमी निकालना नहीं बल्कि किसी व्यक्ति विचार या कार्य को गहराई से समझकर उसके गुण और दोष को का निष्पक्ष मूल्यांकन करना है। अगर आलोचना सही भावना और अच्छे उद्देश्य से की जाए तो इंसान को आगे बढ़ने और खुद को सुधारने की प्रेरणा देती है, लेकिन जब आलोचना केवल अपमान या निंदा के लिए की जाए तो मन को चोट पहुँचाती है। और हमें आलोचना से घबराने की बजाय उसे सीख की तरह से लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी कमियाँ वही लोग बताते हैं जो हमें बेहतर बनता देखना चाहते हैं। और साथ ही हमें अपने किसी भी आलोचना करते समय अपने शब्दों पर विनम्रता और सम्मान बनाए रखना चाहिए। और सच्ची आलोचना वही है जो इंसान को तोड़े नहीं बल्कि उसे और भी बेहतर बनने की राह दिखाए। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश कहता है कि आलोचना तब अच्छी होती है जब मन में कटुता के भाव ना हो, सलाह हो, सुझाव हो, तब आलोचना लाभदायक मार्गदर्शक बन जाती है। सामने वाला हमेशा कृतज्ञ होता है।
1: बिल्कुल, और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आलोचना किसी भी कार्य के अच्छे और बुरे पहलू दोनों को दिखाती है। ये सिर्फ एक बुराई नहीं है बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान को अपनी कमियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है, उनको दूर करने के लिए मत देती है कि आप कैसे दूर कर सकते हैं इस चीज़ को। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधारने का एक तरीका है। ये बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए और आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए। आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए कि किसी के साथ आपके रिश्ते बिगाड़ दे, बल्कि इस तरीके से की जानी चाहिए कि वो सामने वाले को अपने कमी को सुधारने में मदद कर सके।
0: तो अब क्या करना चाहिए?
1: एक गीत सुनना चाहिए।
0: चलिए।

0: आरती, देखो हमारे श्रोता कह रहे हैं कि भाई हमारे सिर्फ होश नहीं उड़े हैं, अब हमें कुछ तृप्त भी कीजिए क्योंकि हमें अब कुछ खाने की इच्छा हो रही है।
1: खाने की इच्छा, तो आज हम लेके आए चावल के व्यंजन जो हमारे श्रोताओं ने खूब अच्छे से बहुत अच्छी ढेर सारी रेसिपी भेजी है जिसको हम जाके घर पर भी बना सकते हैं। तो
0: पहली रेसिपी कौन सी बताने वाली हैं आप?
1: पहली रेसिपी मैं बताने वाली हूँ गाजर और चावल की खीर।
0: क्या बात है,
1: मीठी मिठास से शुरुआत करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम गाजर और 1/4 कप चावल और 1.5 लीटर दूध और आधा चम्मच इलायची पाउडर, 10 काजू भीगे हुए, 1 चम्मच घी और स्वाद अनुसार चीनी। आवश्यकता के अनुसार ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए होगा आप वो से ले सकते हैं। और साथ ही इसकी विधि बता देते हैं। तो सबसे पहले गाजर को धोकर कद्दूकस कर लीजिए, फिर छोटे चावल को धोकर 30 मिनट तक पानी में भिगा कर रखें, काजू को भी पानी में भिगा कर रखें, फिर 2 चम्मच चावल और काजू में थोड़ा सा दूध डालकर उसको दरदरा पीस लीजिए। एक तरफ एकदम सिम पर फ्लेम पर दूध को उबलने के लिए रख दीजिए। अब एक कढ़ाई या पैन में 1 चम्मच घी डालकर गर्म कर लीजिए, फिर कद्दूकस किए हुए गाजर को 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर आप भून लीजिए। अब इसमें आप दूध डाल दीजिए और तब तक पकाइए जब तक कि खीर थोड़ी गाढ़ी ना होने लगे। अब इसमें काजू का पेस्ट डालकर 2 मिनट और पकाइए, फिर इलायची का पाउडर और अपनी पसंद के जितने भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं वो आप इसको डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यदि खीर ज़्यादा गाढ़ी लग रही हो तो आप ऊपर से आधा कप दूध डालकर 1 मिनट और पकाइए और स्वाद के अनुसार आप इसमें चीनी डालिए और तैयार है आपकी खीर।
0: क्या बात है। तो देखिए ये खीर बन गई है चावल की। अब हम बता रहे हैं आपको चावल की पिन्नी। इसके लिए लेना है 2 कटोरी चावल का आटा, 1 गिलास दूध, आधा कटोरी चीनी, 5 इलायची, 15 के करीब बादाम, आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, उसी तरह काजू लेना है, 1 सर्विंग स्पून किशमिश और 1 कटोरी देसी घी। बनाना है चावल की पिन्नी के लिए आप चावल के आटे को कोरा भून लें जिससे उसकी नमी निकल जाए, यानी

0: मॉइस्चर उसका बाहर निकल जाए। अब उसमें आधा घी जितना आपने लिया है ना नाप का, उससे आधा घी डालें, 5 मिनट तक उसको भूनना है, फिर 1 गिलास जो दूध लिया है इस आटे में मिक्स करना है धीरे धीरे। अब पहले तो थोड़ा सा धीरे और उसके बाद फटाफट चलाइएगा ताकि वो दूध उसमें एब्जॉर्ब होने लग जाएगा और इसमें मावे का स्वाद आ जाएगा। और इसी समय चीनी डालें और अच्छे से मिक्स करके धीरे धीरे चीनी मेल्ट होने लगे तब तक आप उसको चलाइए। अब इसके बाद आपके पास जो पाउडर है आप वो पाउडर आप इसमें डाल सकते हैं और फिर आधा घी जो बचा है वो उसमें आप डालिए और फिर से इसमें जो भुने हुए बादाम है, काजू हैं जो आपने भून के रखे हुए हैं, चाहे तो भून लीजिए, ना चाहे तो आप थोड़ा दरदर इसके भी उसको डाल सकते हैं। और काजू किशमिश को अलग से घी में उसको थोड़ा सा भून लीजिए, वो डाल लीजिए। फिर इलायची को चीनी डालकर मिक्सी जार में पीस लें और ये पीसी हुई इलायची भी इसमें डाल दीजिए और फिर छिलके सहित इसको आप मतलब पीस लीजिए अलग से, तो खूब अच्छे से ये इलायची पाउडर बन जाती है। इसके बाद अब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो आपने भून रखे हैं उसको डाल करके अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ठंडा होने पर लड्डू इसके बांध लीजिए। आप देखिए कि चावल की जो चावल के आटे के पिन्नी है ये बनकर तैयार हो गई है।
1: बहुत ही बड़े लगते होंगे। और
0: हाँ बिल्कुल
1: जी बिल्कुल। और अब एक हम छोटा सा एक ले लेते हैं। चलिए तो वो मैं बताते हैं कि चावल का डोडा इसमें बताते हैं कि बहुत ही अच्छा बनता है जिसमें टमाटर की चटनी या दही के साथ खाया जाता है। ये सादा भी बनता है और हरी लहसुन के पत्ते, हरी धनिया के पत्ते, प्याज के पत्ते, टमाटर, आलू बारीक कटे हुए मिलाकर नमक मिर्च डालकर गूंथ लेते हैं और हाथ से थपथपाकर तवे पर सेकते हैं। चाहे तो बेलकर भी बना सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है खाने में।
0: चलिए तो हम इसको भी खाकर देखेंगे, बनाकर देखेंगे, लेकिन अभी तो सुन लेते हैं हम ये गीत।

0: आरती, देखो ना, बातों का सिलसिला तो लगता नहीं कि कहीं खत्म हो सकता है ना, लेकिन हमारा समय की जो सुइयां
1: है, समय हमें सीमित समय दिया गया है बात करने के लिए,
0: तो आज तो हम लेते हैं विदा इस वादे के साथ कि कल दो सखियां आकर के फिर ढेर सारी बातें करेंगे और बहुत सारा होगा मनोरंजन। आप सभी को दीपा माहेश्वरी
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।

सखी सहेली की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 4 बजने को है, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सुनीता दुबे को। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता दुबे। बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में आके। कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। और जो विविध भारती का जो पेनिट्रेशन जो रूरल में है वो शायद ही किसी भी दूसरे रेडियो चैनल का है। और चूंकि हमारे भारत के खुद गवर्नमेंट का है तो इसका जो सेल्फलेस वर्क है वो कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता। और मेरे लिए गौरव की बात है कि आपने मुझे इनवाइट किया है आज।
0: क्या बात है, अपने बारे में सबसे पहले थोड़ा बताइए कि आप किस इलाके से आती हैं और मेडिकल की फील्ड में आप कैसे गई?
1: वैसे तो मेरा इलाका पूरा भारत ही है
0: जी,
1: लेकिन ऑफ कोर्स मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में ही हूँ। और ऑफ कोर्स बोरीवली ही नज़दीक में है आपके स्टूडियो के पास। और क्योंकि हम लोग का नेटिव प्लेस भदोही से है,
0: बनारस के पास।
1: पहले बनारस होता था, अभी वो भदोही हो गया क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बढ़ गया। और थोड़ी पढ़ाई मेरी वहाँ पे भी हुई है। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पे लड़कियों का एजुकेशन न के बराबर था। तो आई एम फर्स्ट चाइल्ड टू डू 12th। उसके बाद जो भी पढ़ाई हुई, चाहे वो मेडिकल की हुई या हमारी जितनी पब्लिक वर्क है, वो डेफिनेटली हर एक चीज़ में पहला ही है। लेकिन मैं पहली नहीं हूँ क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पे, हमारे दादाजी ने शुरू किया था सेवाश्रम इंटर कॉलेज, जो 1923 में बनी थी, और उसके माध्यम से। और आज एक डिग्री कॉलेज भी उस गाँव में है जहाँ पर बीएड है, आईएएस ऑफिसर है, डॉक्टर्स हैं। ऐसे लोग वहाँ से पढ़ के बाहर निकल रहे हैं और देश भर में नाम कमा रहे हैं और कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो जरूर मैं पहली थी लेकिन आखिरी नहीं हूं। और जिस तरह से काम हमारी संस्था, हमारी मेडस्केप इंडिया कर रही है, उसके इंस्पिरेशन से कई लड़कियां हर एक फील्ड में, इवन उस कॉलेज के लड़के भी, बहुत सारे देश को डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं।
0: जी, एक ऐसे परिवार से आप आती हैं जिसका ताल्लुक एजुकेशन से है, और मेडिकल फील्ड में आने के दौरान वो क्या फोकस था कि जिंदगी में आगे मेडिकल की दुनिया में क्या करना है?
1: पहले तो पता नहीं था कि डॉक्टर बनेंगे क्योंकि डैड इतना जानकारी नहीं थी, बट उनके मन में अपने खुद के बाकी मेरे भाइयों को डॉक्टर बनाने की कल्पना रखते थे। और 12th के बाद अच्छे मार्क्स आए और वहाँ से थोड़ी ऐसी चेंज आई, एक्चुअली कैन से कि वहाँ पे एक बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज आई मेरी फैमिली में कि उन्होंने मेडिकल कराना चाहते थे और मैं पायलट बनना चाहती थी। तो डैड बोले कि आपको ड्राइवर क्यों बनना है, नीचे का ड्राइवर ऊपर का ड्राइवर। और जब मैंने बोला कि आप पूछे कि आप क्यों बनना चाहते हो, तो उस टाइम क्या होता है 12th स्टैंडर्ड में ऐसा भी होता है कि आप थोड़े से जो यूनिफॉर्म पायलट के होते हैं, जो लाइफस्टाइल होती है, वो आपको काफ़ी एज ए नो टीन एजर काफ़ी अट्रैक्ट करती है। तो ऑलवेज एक कल्पना थी कि हम ऐसा करें, तो वो तो नहीं हुआ। लेकिन डेफिनेटली डैड ने बोला वाइट, तो पता चला एप्रेन भी वाइट होता है। और इमीडिएटली मेरा मेडिकल एडमिशन भी हो गया। तो वहाँ से एक नई दुनिया शुरू हुई जो मेडिकल की, जो काफ़ी सीरियस स्टडीज़ और हार्डवर्क। आज भी वर्ल्ड की सबसे टफ स्टडी में मेडिकल ही मानी जाती है। और जो कि आई थिंक अगर मेडिकल मैंने नहीं लिया होता और आज जो भी काम कर रही हूँ उसका सारा स्वरूप जो स्टार्ट हुआ है, डेफिनेटली वही उसका एक ओरिजिन था। तो आई थिंक ईश्वर ने ज़्यादा बड़ी प्लानिंग की थी, मेरे छोटे आँखों से उस समय नहीं दिख रही थी, बट आई एम वेरी थैंकफुल और प्राउड कि मैं मेडिकल की।
0: आप रेडियोलॉजी की एक्सपर्ट हैं, और जब आप मेडिकल कॉलेज से निकली तो क्या मिशन था आपके जहन में कि मुझे क्या करना है?
1: एक बहुत क्लियर था कि जो भी मैं करूं वो सेवा हो, ह्यूमैनिटी के ऊपर मेरा पहले से सेंसिटाइज भावनात्मक तरीके से, मुझे बचपन में ही पता था कि मैं पब्लिक के लिए काम करूंगी। मेडिकल ने वो ज़रूर रास्ता दिखा दिया जिसमें ये बता दिया कि आपको जो सेवा है जो आपके मेडिकल के द्वारा बहुत बड़े स्केल में हो सकता है, तो वहाँ से शुरू ही। रेडियोलॉजी की ब्यूटीफुल चीज़ ऐसी है कि हमें सब दिखता है, हम डार्क में भी देख सकते हैं। एक जो शरीर पूरी तरह से नॉर्मल दिखता है उसको स्कैन के द्वारा उसकी एबनॉर्मलिटी बता सकते हैं, कैंसर है या किसी भी तरह का, पेट में पानी भरा हुआ है या बच्चा है। इट्स अ ब्यूटीफुल यू नो ब्रांच हमारा जो रेडियोलॉजी, आपको विजडम और एनालिटिकल पावर देता है जो आपको देख सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ है। अब जब एक बार आप प्रॉब्लम आपको पता चल जाती है तो आप सॉल्यूशन पे भी उतनी गहरी से काम कर सकते हो। आई थिंक ये जो ब्रांच है वो टोटली मुझे लगता है बहुत ही ब्लेस्ड आइडेंटिफाइड है ईश्वर के द्वारा मेरे लिए, क्योंकि आज भी जो भी हम प्रॉब्लम देखते हैं, चाहे वो सोसाइटी में हो, हमारे आसपास हो, उसमें सोचने के साथ साथ उसके सॉल्यूशन में भी काम करने की ताकत आई थिंक मुझे MBBS ने और रेडियोलॉजी ने दिया हुआ है।
0: क्या बात है, आगे और बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ इस कार्यक्रम का पहला गाना हम लेना चाहते हैं, तो बताइए आपकी पसंद का पहला गाना कौन सा होगा?
1: मेरा ऑल टाइम फेवरेट है आशाएं।
0: ओ, इकबाल फिल्म का गाना है।
1: हाँ, ये मुझे बहुत पॉजिटिव फील कराता है और मुझे लगता है कि ये हर एक कॉमन पर्सन से जुड़ी हुई सॉन्ग है और सबसे रिलेट होता है।
0: क्या बात है, सुनते हैं।

0: ये आशाओं से भरा गाना हमने अभी सुना, और मैं जानता हूँ कि रेडियोलॉजी की फील्ड में काम शुरू करने के बाद आपने बहुत अलग अलग तरह की मुहिम छेड़ी, जहाँ आपने डॉक्टरों के भले के लिए काम किया, गर्ल चाइल्ड के लिए काम किया और फिट इंडिया के लिए भी काम किया। तो ये जो आपकी मुहिम है, ये कहाँ से आपके जहन में आया? क्योंकि जो मेडिकल का आपका अपना प्रोफेशन है, ये आपको इतना बिजी रखता है कि बाकी कुछ सोचने का वक्त कैसे मिला आपको?
1: मैं 2007 में प्रोफेसर फॉर्मर APJ कलाम को मिली थी जब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने बोला था कि आपको, जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे तो वो मुंबई में, हम राजभवन में मिले, तब उनका कहना था कि आपको कोई भी, मतलब जो स्पेशली जो भारत में सबसे मेजर प्रॉब्लम है हेल्थ के प्रिवेंशन का, डिसीज़ प्रिवेंशन का, अगर आप रूरल हेल्थ में जाएंगे, मेरे गांव में भी जाएंगे, अगर मैं जाती हूँ 200 पेशेंट देखती हूँ तो उसमें कई पेशेंट ऐसे निकलते हैं, कैंसर के लिए निकलते हैं, एस्थमा के निकलते हैं और स्किन के प्रॉब्लम, छोटे छोटे प्रॉब्लम। तो उनका मन था कि हमने एक न्यू इंडिया का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है 14 पिलर, और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें काम करिए। और चूँकि आप डॉक्टरों के लिए काम कर रहे, क्योंकि मेरे बहुत सारे पहले ही 2011 में हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन मेडस्केप इंडिया है जो 21 मेडिकल बॉडी को एक साथ लाया, जिसमें हर स्पेशलिटी के लोग, चाहे एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, डेंटल, आयुर्वेदा, फिजियो, ऑल केम टुगेदर।
0: इसका मकसद क्या था मेडस्केप इंडिया का?
1: ये एक ऐसा मिशन था कि सारे डॉक्टर हर ब्रांच के एक साथ आएं और होलिस्टिक जो मेडिकल है उस पर सहयोग दें और अपनी स्ट्रेंथ, जैसे मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मैं अपने रेडियोलॉजी का एक्सपर्टाइज करूँ, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है हार्ट के लिए काम करे, होम्योपैथिक प्रिवेंशन में काम करे, आयुर्वेदिक, जो सब एक साथ एकजुट कर आएं और अपने विचारों को, और ऑफकोर्स एक मेरा मिशन भी था सेव द गर्ल चाइल्ड, क्योंकि डॉक्टर अपने आप में ही बहुत बिजी रहते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं कि कोई और भी सोशल वर्क करें जो उनके फील्ड के बाहर हो। तो इसके द्वारा लोगों को जोड़ा। 2008 में हमारा पहला सेव द गर्ल चाइल्ड शुरू हुआ था, क्योंकि वो फीमेल फिटिसाइड से शुरू हुआ था, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान हुआ या हरियाणा हुआ, ये सब जगह पे गर्ल चाइल्ड रेशियो, सेक्स रेशियो बहुत लो था 2008 में। तो उस विषय को, क्योंकि मैं खुद रेडियोलॉजिस्ट थी, लोग सोनोग्राफी के लिए आते थे तो पहला क्वेश्चन जो ऑलरेडी मदर हैं, ऑलरेडी जिनको बेटी हैं, वो ज़रूर पूछती थी कि डॉक्टर मेरा बच्चा क्या है। तो डेफिनेटली वो मुझे इंटरनली, क्योंकि आप खुद लड़की हो, उत्तर भारत से हो, आपने वो लड़कियों की ज़िंदगी देखी हुई है, तो आपके मन में था कि आप अपने इस पर्टिकुलर नॉलेज को लोगों को एजुकेट करने के लिए यूटिलाइज करेंगे। तो मेडस्केप का भी एक बड़ा रोल है कि वो डॉक्टरों को इन्वॉल्व करके पेशेंट जब आते हैं तो उनको किस तरह से उनका माइंड पॉजिटिव करें, गर्ल चाइल्ड के बेनिफिट्स बताएं, गवर्नमेंट्स के प्लान बताएं, किस तरह से उन्हें जोड़ें ताकि वो अपनी बेटी को पैदा करने के लिए डरे नहीं। क्योंकि आज भी हम बोलें या ना बोलें, अनजाने में डाउरी है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, आज भी एक बहुत बड़ा इशू है जो हमारी कम्युनिटी में चलता है, और बेटे को आज भी लोगों ने उसी लेगेसी की तरह देखा हुआ है। डेफिनेटली 2008 में आप जब बोलोगे कि क्या स्थिति थी और आज 2026 में बोलोगे तो क्या स्थिति थी, वो बहुत एक देखा जाए तो बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ है, जो बहुत अच्छा है, क्योंकि सब इन्वॉल्व हो गए इस मिशन में। गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट आया, खुद महिलाओं ने महसूस किया कि मैं लड़की होके कैसे दूसरी लड़की को नेगेटिवली सोचूं, वुमेन में थोड़ा वुमनहुड बढ़ा, महिलाओं के बीच में आपसी सामंजस्य बढ़े, एजुकेशन आया, अवेयरनेस आया। तो डेफिनेटली आज जो लड़कियाँ कर रही हैं वो फ्रीडम है, आज हमारा सोशल मीडिया उन्हें हेल्प कर रहा है, तरह तरह की चीज़ें अवेलेबल है जो स्पॉट पर उनको एम्पावर करती है। पहले ऐसा नहीं था, माँ बाप डरते थे कि एजुकेशन नहीं हुआ, अगर ज़्यादा एजुकेशन हुआ तो उनकी एज की लड़का मिलेगा कि हाँ मिलेगा कि नहीं, फिर मिला तो घर अच्छा है कि नहीं, तो उनके कई सारे क्वेरीज थे। बट जिस तरह से एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंडिया में, उससे एटलीस्ट पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर मेरी बेटी को परिवार नहीं मिला, एटलीस्ट वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है बिकॉज वो एजुकेटेड है, आज भी मेरा मोरल सपोर्ट रहेगा। बट उस टाइम नहीं था, जब जो एरा में मैंने जो देखा था एज अ चाइल्डहुड, कि जो लेडीज़ थी वो ज़्यादातर आपको हाउस होल्ड वर्क की ट्रेनिंग देना चाहती थी ताकि आप अच्छे से लोगों को संभाल सको, क्योंकि उनका मानना था कि पेट के द्वारे दिल पे राज करते हैं, उनके मन में ये था। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुकिंग, हाउस होल्ड वर्क को दिखाते थे। ऐसा नहीं कि हाउस होल्ड इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो इक्वली 360 डिग्री का इन्वॉल्वमेंट है जहाँ पे हाउसहोल्ड भी आपको देखना है, एटलीस्ट मैनेज करना है आपको, आपको करियर भी देखना है, आपकी फैमिली भी देखनी है, और आपका कोई मिशन है, वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने को उस तरह से प्रिपेयर करते हो, एजुकेशन से, स्किल से, इन्वॉल्वमेंट से, सपोर्ट से. तो आई थिंक दैट इज चेंज टूडे.
0: जी, इस संस्था को बनाने और लोगों को इससे जोड़ने के लिए, खासतौर पर एक्सपर्ट्स को जोड़ने के लिए, किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा?
1: कोई भी रास्ता है वो कभी इजी नहीं होता है. इवन हम घर पे भी अगर एक डिनर भी होस्ट करते हैं तो उसमें कई प्रिपरेशंस होते हैं, कई चैलेंजेस होते हैं, बट एंड रिजल्ट बहुत स्मूथ लगता है. तो मुझे ऐसा मानना है कि जब आप संस्था बनाए थे तो डेफिनेटली वो एजुकेशनल और मेडिकल हेल्प के लिए बनाया था, बट वो धीरे धीरे पूरे जो दायरा है मेड्सकेप इंडिया का, वो पूरी मैसिवली मेजर इशू जो भी महसूस हुआ, गर्ल चाइल्ड का हुआ, तो आज हम एजुकेशन पे काम करते हैं. शुरू किया था फीमेल फिटिसाइड से, स्किलिंग से, बहुत सारे हेल्थ के, बट नाउ टुडे वी आर स्पॉन्सरिंग द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड. वो कोविड से शुरू किया है. फिर हमारे वी डॉक्टर्स कैंपेन था जो COVID-19 में काम कर रहा था, और पूरे देश के 17 स्टेट में हमारे मेडिकल के सपोर्ट चल रहे थे. इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ हमारा कोलैबोरेशन था, टेली ICU पूरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगे थे. 60% जो डेथ था वो रिड्यूस हुआ टेली ICU डालने के बाद. फिर हमारा फिट महाराष्ट्र गेटवे ऑफ इंडिया पे प्रोग्राम हुआ जो स्पेशली हेल्थ और फिटनेस को अवेयरनेस के लिए हुआ, और फिट महाराष्ट्र बलून फेस्टिवल भी हुआ. और ये मकसद इसलिए था कि जब हम कोविड में वो 2-3 साल जो डिप्रेशन, जो हमारे जो लॉसेस हुए, हमारे जो मेंटल स्टेटस था हमारी पूरी कम्युनिटी का ओवरऑल, उसमें ये थॉट प्रोसेस था हमारा कि अब नेगेटिविटी जा रही है, बलून रिलीज किया, सारे अपने के वर्ड्स लिखे, और पॉजिटिविटी गेटवे ऑफ इंडिया के से आ रही है. ऑफकोर्स पूरी CM से, डिप्टी CM, हेल्थ मिनिस्टर, सारे एक्टिवली सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन जो टेली ICU टेलीमेडिसिन का था उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था.
0: क्या बात है.
1: तो इसी तरह से हमारा फिट इंडिया भी प्रोग्राम है जो 2014 में शुरू हुआ, पायलट प्रोजेक्ट, और फिर उसमें 5 पिलर, ऑफकोर्स कलाम साहब को हमने एज अ मेंटोरिंग, एज अ गाइडेंस रखा. उनका इतना सिंप्लिसिटी था और देश के लिए जिस तरह से सोचते थे, मुझे कहीं ना कहीं ज़रूर इंस्पायर किया, क्योंकि उन्होंने पहला वर्ड बोला था कि आप सिर्फ मेडिकल कम्युनिटी के लिए क्यों कर रहे हो, मेड्सकेप नेशनल अवार्ड लाए हो, हैंड राइटिंग कैंपेन डॉक्टर्स का कर रहे हो, इतने सारे डॉक्टरों के लिए ही आपके ज़्यादा दिख रहे हैं, तो वाई डोंट यू थिंक अबाउट 126 बिलियन पीपल, आप उनके बारे में सोचिए. तो आई थिंक वही एक फिट इंडिया का बहुत बड़ा आविष्कार हुआ हम लोगों के द्वारा, और
0: उन्होंने एक तरह से विस्तार दे दिया.
1: हाँ, उन्होंने दिया एक्चुअली मिशन, दिया एक शब्द दिए कि कभी भी आपका विजन इतना छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कितने भी हुए बहुत बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वही जो डॉक्टर आज के देश में है वही 140 बिलियन को केयर कर रहे हैं, उसी के सहारे पूरा देश हमारा हेल्दी है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो प्रिवेंशन हो, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन हमारी खुद की ब्रांच हो. तो आई थिंक एक बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया कि एक विचार को उन्होंने एक पिलर बनाया, जो हमारी 5 पिलर, जैसे उन्होंने 14 पिलर बनाया, तो उनसे इंस्पायर करके हमने 5 पिलर प्रोग्राम फिट इंडिया का है.
0: जी, फिट इंडिया के बारे में और भी बात करेंगे, यहाँ आपकी पसंद का एक गाना सुनते हैं.
1: जीतेंगे जीतेंगे ये एक गाना है जो बहुत इंस्पायर्ड करता है, और उसमें हमारे देश की जो एनर्जी है और जो पॉजिटिविटी है इस गाने में मुझे महसूस होता है. जब भी आप देखते हो अच्छा फील होता है, सुनते हो तो भी अच्छा फील होता है. इनफैक्ट हमारे डॉक्टर्स क्रिकेट लीग में वो गाना बहुत बार बार बजता रहता
0: अच्छा,
1: है
0: अच्छा।
1: हमारे 2012 से हमारा डॉक्टर्स क्रिकेट लीग भी अक्रॉस इंडिया डॉक्टर्स उसको प्ले करते हैं. 3,500 डॉक्टर, हर स्पेशलिटी के डॉक्टर, इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ भी है, और 2 साल से तो इंटरनेशनली भी हो रहा है. नेक्स्ट हमारा मलेशिया में है, लास्ट ईयर दुबई में था, तो जीत भी रहे हैं. तो आई थिंक जीतेगा वो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है गाना, आप उसे प्ले कर सकते हैं.

0: भाई 83 फिल्म का ये गाना हमने सुना जो भारत की जीत की बात करता है, और आप फिट इंडिया कैंपेन चला रही हैं और उसके अलावा ढेर सारे कैंपेन आप अलग अलग चला रही हैं, तो मुझे इसके बारे में और दूसरे कैंपेन के बारे में भी बताइए कि उनके ख्याल किस तरह से आए और कैसे आपने उस दिशा में काम करना शुरू किया डॉक्टर सुनीता।
1: एक्चुअली आप ये होता है कि जैसे यू हैव क्लियर बहुत विजन है कि प्रॉब्लम अगर कभी दिखती है तो उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, जैसा कि कलाम साहब का बोलना था। तो जैसे कि CPR जो लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है, और वो इंस्पिरेशन मेरा मेडिकल स्टूडेंट, मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में थी कार्डियक डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर मैं ऑलरेडी CPR क्रिटिकल केयर तो हम लोग देखते ही थे, तो वहाँ पे मैंने CPR तो हम लोग डेली करते थे, डीप फिब्रिलेशन ये सब करते थे। तो हमने पहला CPR मैंने गांव में किया था जहाँ पे एक लेडी कोलैप्स हो गई थी।
0: और क्या हुआ था वो, क्योंकि वो घटना थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: ऐसा था कि उनकी फैमिली में एक डेथ हो गया था और जो उनकी वाइफ थी वो जीना नहीं चाहती थी, यंग लेडी थी, एक बेटे के साथ थी, तो वो जीना नहीं चाहती थी तो कूद गई थी। और चूंकि वो कंडोलेंस का टाइम था तो वहाँ पे मैं भी पहुँची थी, और उसी टाइम उनको ऑलमोस्ट गांव और लोगों ने डिस्क्लेयर कर दिया कि लड़का तो गया और ये भी गई। लेकिन मैंने वहाँ पे CPR किया, उनके रिलेटिव के द्वारा माउथ टू माउथ ऑक्सीजन दिया, और फिर वो सर्वाइव हुई। पास के मेडिकल शॉप से हमने इमरजेंसी मेडिसिन भी मंगाई, उसको दी और सर्वाइव किया, और वो आज एक स्टेबल महिला है। लेकिन उसके साथ ही कई बार ऐसा हुआ कि हम ये BKC हमारे मुंबई में ही, एक बार मैं रोड क्रॉस कर रही थी तो देखा कि एक कार रुकी है, भीड़ रुकी हुई है, बहुत सारे लोग एक आदमी को ज़मीन पर डाल के रोड पर भीड़ लगा के बैठे हैं, तो मुझे रियलाइज़ हो गया था कि वो कोलैप्स हो गया। मैंने उनका पल्स देखा तो पता चला, CPR किया, थोड़ा स्टेबल हुआ, एम्बुलेंस आया और एम्बुलेंस एशियन हॉस्पिटल में लेके गई तो उनकी जान बच गई। ICU ने बोला आपने राइट ली, उनको CPR दिया। दो बार फ्लाइट में भी हुआ, एक इंडिगो फ्लाइट में हुआ, एक और फ्लाइट में हुआ जो दिल्ली से आ रही थी, तो एक पेशेंट कोलैप्स हो गया। तो नॉर्मली बोलते हैं डॉक्टर ऑन बोर्ड फ्लाइट में, तो जब अनाउंस किए तो उसमें मैंने जाके उनको CPR किया और स्टेबल हुए। फिर इनफैक्ट दो और पेशेंट की हालत ख़राब हो गई थी वहाँ पे, क्योंकि थोड़ी पैनिक हो जाता है ना फ्लाइट में, थोड़ी पैनिक हो जाता है। तो सीनियर सिटीजन को हुआ था, तो वो भी एक जान बचाए। जब फ्लाइट रुकी तो उसको एम्बुलेंस आई, लेके गई। अभी रिसेंटली, बहुत रिसेंटली बैंगलोर जा रही थी तो वहाँ पे भी जब रनवे शुरू हुआ तभी एक पेशेंट एक लेडी के साथ थी, वो कोलैप्स हो गया, सडनली गिर गए। तो फिर वही होता है ना, डॉक्टर ऑन बोर्ड, तो डॉक्टर सुनीता दुबे गए और उनको CPR किया, स्टेबलाइज किया, और लकली क्या था, रन पे ही था तो उसको रुका गया और पेशेंट को शिफ्ट किए घाटकोपर में, ही वॉज स्टेबल लेटर ऑन। तो
0: लेकिन ये कितनी ज़रूरी है, आपने इतनी सारी घटनाएं बताई कि किस तरह से आपने इमरजेंसी में CPR देके लोगों की जान बचाई। आम जनता के लिए ये अवेयरनेस और ये करते आना, ये सीखना कितना इम्पोर्टेंट है और इसके लिए आप क्या कर रही हैं?
1: पहले तो लाइक कि जो CPR ट्रेनिंग था हमारा, लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम लोगों ने कई सारे बच्चों को, लिटिल डॉक्टर स्कूल में जो करते हैं बच्चे, अगर सीख लेते हैं, एक बच्चा सीखता है 20 को और सिखाता है तो हम उसको लिटिल डॉक्टर बनाते हैं। उससे में हमारे दो फायदे होते हैं, एक तो डॉक्टर इंस्पायर्ड होता है कि हाँ मैं लिटिल डॉक्टर हूँ, और आगे भी एजुकेशन के लिए इंस्पायर्ड होते हैं, प्लस वो जान भी बचाते हैं। एक मेरा ही स्टूडेंट जो हमारी ही संस्था के द्वारा सीखा हुआ, जब उनकी प्रिंसिपल सडनली कोलैप्स हुई, इमीडिएटली वो बच्चा तुरंत CPR दिया और वो लेके गए। बाद में लोगों ने पूछा कहाँ सीखा, तो प्रिंसिपल ने कॉल किया कि आप हमारे पूरे स्कूल के लिए करिए। ऐसे होता है, आप लिफ्ट में जा रहे सडनली कोई कोलैप्स होता है, इट्स वेरी टेक्स वेरी सेकंड पीपल टू कोलैप्स व्हेन हार्ट फेल्स। तो यू नो उस टाइम जो इसका है, तो अभी हमने मिशन निकाला हुआ है कि भारत एक ऐसा देश बनना चाहिए कि वो पहला लाइफ सेवर डिक्लेयर हो वर्ल्ड में। तो डेफिनेटली हमने गवर्नमेंट में भी कई चिट्ठी लिखी हुई है, आज से नहीं 2014 से, तो अभी लास्ट फ्यू ईयर से, जैसे मनसुख मांडविया थे उन्होंने भी एक्टिवली इस मैटर को लेकर CPR किया, हमारे पास फोटो आए। अभी करंट जो हेल्थ सेक्रेटरीज हैं उन्होंने भी CPR किया, उसके पहले डॉक्टर भारती थी वो भी MOS की मिनिस्टर थी। तो कई लोगों ने CPR को एक्सेप्ट किया, और प्लस मेरी हर प्रोग्राम में CPR स्टेशन होता है
0: जी।
1: तो ये सर्टिफाइड प्रोग्राम है, हार्डली 5 मिनट लगता है उसको एक्सप्लेनेशन के लिए, आप कभी भी कार्डियोलॉजी से ऑनलाइन सीख सकते हैं, बट प्रैक्टिकली करने के लिए आप इसको 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। और एक बार सीख लिए तो आप साल में एक बार और रिपीट कर सकते हैं। अगर आप लाइफ में एक भी जान बचा पा रहे हैं तो ये आपका सबसे बड़ा

0: अचीवमेंट हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: और अगर हमारे देश में अगर देख पहले 2% ही था और हमारा टारगेट ये है कि 2030 तक 25% हमारी पॉपुलेशन को CPR आनी चाहिए
1: जी।
0: तो वो एक अच्छा मकसद है। एक ज़माने में मैं 2000 की बात कर रही हूँ कि कार्डियोपल्मरी रिसैसिटेशन बोलने के लिए लोगों को डिफिकल्ट जाता था। CPR क्या है बहुत एक्सप्लेन करने के लिए टाइम जाता था
1: जी।
0: लेकिन चाहे वो मेरा खुद मेडिकल मेरी कम्युनिटी हो या पुलिस हो या फिर गवर्नमेंट हो या फिर एक एम्प्लॉई हो वॉचमैन हो, आज लोग इजीली बोल पा रहे हैं कि CPR करना है।
1: तो लोगों में ये अवेयरनेस
0: बहुत,
1: ये कितनी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है,
0: बहुत अवेयरनेस आया हुआ है बट एडॉप्टेशन नहीं आया है और इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि हमें एक ने बोला अरे डॉक्टर हम CPR मुझे तो आता था लेकिन मैं डर लग रहा था कि मैं उसकी कहीं छाती की हड्डी नहीं तोड़ दूं, तो उसको ये जेन्युइन डर था। तो मैंने बोला देखो अगर आप CPR नहीं करोगे तो छाती की हड्डी टूटने की भी कुछ फ़ायदा नहीं, हड्डी टूट सकती है और रिपेयर भी हो सकती है लेकिन जान वापस से नहीं आ सकती है। अगर अभी आप CPR कर रहे हो और समझो 1, 2, 3, 1 में आपने देखा पहला तुरंत किसी ने कॉल कर दिया एम्बुलेंस को बुलाओ, जब तक एम्बुलेंस आएगा तब तक आप CPR करो। एक बार में चेस्ट के कॉर्नर में एक पॉइंट है वहाँ पे आप 100 बार 1 मिनट में पुश करो और जब तक करते तब तक एम्बुलेंस आएगा आपका पेशेंट चला जाएगा, एटलीस्ट आपने एफर्ट तो डाला। अगर आपने 30-60% चांसेस है कि डेथ प्रिवेंट हो जाएगा और पेशेंट सर्वाइव हो जाएगा, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। हमारे भारत के लोगों में इतनी ताकत है कि चाहे वो चीज़ें जाने या ना जाने वो कोशिश बहुत करते हैं। मैंने कोविड में वो कोशिश देखी, समाज ने किया, डॉक्टरों ने किया, गवर्नमेंट ने किया और हम एक हो जाते हैं कभी कभी। तो इस पर्टिकुलर मुहिम में भी अगर आप एक जन की भी जान बचा सकते हो इस 5 मिनट के स्किल से तो मुझे लगता है, और हमारी संस्था हर कॉर्नर में सिखा रही है, देश के हर कोने में CPR दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है और इजिली मॉड्यूल्स हैं, तो मैं टोटली ओपन हूं कि हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ओपन है कि कभी भी सिखाया जा सकता है आपको।
1: बिल्कुल। तो इस कार्यक्रम को देश दुनिया के कोने कोने के लोग सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहेंगी कि वो कैसे CPR सीखें और जरूरत पड़ने पर लोगों को दें भी?
0: बहुत ही सिंपल है, इवन ऑनलाइन भी अवेलेबल है, यूट्यूब में भी बहुत अभी एग्रेसिवली ऑल ओवर वर्ल्ड ये फर्स्ट एड की एक टेक्निक है जो हो रही है। तो इसमें बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है, आप सीख कर उसको कर सकते हो, डरना नहीं चाहिए क्योंकि जिस टाइम पे कोलैप्स कोई होता है तो उसकी लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, न कि डर कि मैंने कोशिश नहीं की।
1: लोग अपने शहरों में किससे सीख सकते हैं ये?
0: आई थिंक जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी आसपास हॉस्पिटल हैं वहाँ पे डॉक्टरों को CPR आता ही आता है, वहाँ पे जाके बैच बना के कर सकते हैं या फिर हमारे मेडस्केप इंडिया के ऑफिस में फ़ोन करके अगर CPR सीखना चाहते हैं या हमारे ऑर्गेनाइजेशन medscapeindia@gmail.com पे आप मेल भेजोगे तो हम कैसे कर सकते हैं, वी विल लाइन अप फॉर यू।
1: अच्छा, अब यहाँ पर एक गाना लाइन अप करते हैं।
0: मैं आपको गर्ल चाइल्ड एंथम के लिए बोलूँगी जो मैंने 2008 में गाना प्लान किया था, लिखा भी था, समीर अंजान जी लिखे थे। तो वो ऐसा गाना था कि बच्चे पेट में से बेटी बोल रही है, 2008 की कल्पना सोचिए कि 2008 में बोल रही है कि मेरी माँ मुझे बचा टाइप, सुनो ऐसे गाना था। सो अभी जो क्योंकि वो गाना किसी न किसी रिसोर्स की कमी की वजह से नहीं बन पाया, तो जब ये 2026 में बना तो ये टोटली स्टेडियम सेलिब्रेटिंग सॉन्ग था।
1: वाह वाह।
0: और बेटियों का जयकारा जो बेटियों के अचीवमेंट्स को दर्शाता है और लोगों को बताता है कि अब कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ पे आपकी बेटी अपनी काबिलियत को न साबित करे और सिस्टम का स्ट्रॉन्ग पार्ट न हो। तो बहुत सेलिब्रेटिव सॉन्ग है जिसको हम लोगों ने मिलके बनाया हुआ है, समीर इसमें शान जी ने भी गाया, कई सारे लोग इस गाने को आवाज़ दिए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है, आप इसको ज़रूर प्ले करिए।
1: बिल्कुल।

0: बहुत ही शानदार गाना हमने सुना डॉक्टर सुनीता, और अब बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो 2026 और यहाँ से आगे की यात्रा है, इसमें आपका फोकस क्या है, किन चीज़ों पर आप ज़्यादा काम कर रही हैं?
1: वैसे फिट इंडिया में भी कैंसर स्क्रीनिंग और ट्रीटमेंट का था, बट एज आई सेड कि रिसेंटली मेरी मदर इन लॉ को यूट्राइन कैंसर था, तो आई वॉज एबल टू डिटेक्ट अर्ली. तो उनका यूट्रस निकाला, रोबोटिक सर्जरी हुई और वो आज एक हेल्दी और फिट एंड फाइन है. सिमिलरली मेरे फादर को भी रिसेंटली कैंसर हुआ, बट वो आए बहुत लेट, उन्होंने ओवर लुक किया. सो आई एम वर्किंग ऑन अ तारा कैंसर. सो ये तारा कैंसर का पोस्टर लॉन्च हो चुका है डॉक्टर्स डे पे, और पूरा ये प्रोग्राम इस कमिंग डॉक्टर्स डे पे आएगा, जिसमें हम लोगों को अर्ली डिटेक्शन से लेके प्रिवेंशन, अवेयरनेस. और आप देखे होंगे, आज मैं सुबह भी जब सोनोग्राफी कर रही थी, आज एक मैमो सोनोग्राफी सुबह में 3 पेशेंट थे जिसमें 2 को CA था, तो वो जो लेडीज़ थी उनको पता नहीं था कि मैं बाद में जाऊंगी, अरे कैसे, यू नो, लाइक अभी भी वो स्टिग्मा है
0: जी.
1: जब तक बड़ा गांठ नहीं हो जाएगा, जब तक कुछ इशू नहीं हो जाएगा और तकलीफ बहुत बढ़ जाएगी, तब तक आते नहीं है लोग कैंसर के मामले में. तो ये अर्ली डिटेक्शन से लेके, और कभी कभी पैसे के वजह से भी पेशेंट नहीं आता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि अगर उसकी कल डायग्नोसिस हो जाए, अगर उनका रिपोर्ट आ भी जाता है और डायग्नोसिस हो भी जाता है, तो भी पेशेंट उसको छुपाते हैं. वो सोचते हैं कि मेरी इस ट्रीटमेंट की वजह से फैमिली पे बर्डन होगा. पर मेरा आप लोगों को ये बोलना है कि आपको कोई भी बीमारी छुपाने के बदले में डिटेक्शन करनी चाहिए और डॉक्टरों के पास जानी चाहिए, न कि यूट्यूब से, तांत्रिक के पास और यू नो गूगल के पास. ये सब आपकी ट्रीटमेंट का जरिया नहीं है. आपको खुद से जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी खुद का. मैंने माना है, जो मेरे महसूस में हुआ है, कि जो आपका जो शरीर है वो आपका एक्चुअल में मंदिर है. हम बाहर जाते हैं पूजा करने के, लेकिन ये आपका शरीर ही ईश्वर ने दिया है, जिसको आपको, आपकी जो आत्मा है वो आपकी भगवान है. तो आत्मा के बारे में आपको सोचना है और उसकी पूजा के लिए, जो उसके आसपास जो ईश्वर ने शरीर दिया है, चाहे वो लीवर हो, आपका किडनी हो, या आपका पैनक्रियाज हो, इंटेस्टाइन हो, या एनी बोन, एवरीथिंग, उनके रख रखाव की जिम्मेदारी आपके ऊपर है. तो आपको उसको अर्ली डिटेक्शन, समय समय पे जांच करना, और शरीर आपका संकेत देता है बीमारी का, और आपको भी मालूम है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है सही नहीं है, नॉर्मल नहीं है. और ये संकेत को अनदेखा मत करिए अपनी जिम्मेदारियों के सामने, कि नहीं नहीं आज मेरे बेटे की शादी हो जाए तब मैं ये करूँगी, अरे मैं उस जगह जाऊँगी उसके बाद करूँगी. कि मैं पेशेंट से सुनती हूँ कि आज रिसेंट जो सुबह की पेशेंट थी, मुझे बोली कि मैंने उनको बोला कि यू हैव अ लंप, उनका 3 सेंटीमीटर का वैस्कुलर लंप था. तो मुझे बोलती, नहीं नहीं अरे मुझे तो गांव जाना है, मैं नेक्स्ट मंथ आऊँगी, तब मैं बायोप्सी करूँगी, तब मैं ये करूँगी. मुझे 5-10 मिनट उनकी यही बात चली. तो पूरे उसमें उनके हेल्थ का कोई उनका रोल नहीं था,
0: प्रायोरिटी नहीं थी,
1: प्रायोरिटी नहीं दिया था उन्होंने. वो सिर्फ बोली थी, अरे थोड़ा डिस्कम्फर्ट लग रहा था, अब मैं गाँव जा रही हूँ 6 महीने के लिए, तो ऐसे ही जाँच कर लिया. तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ एजुकेटेड होने के बाद, इवन मेट्रो सिटी में फैसिलिटी होने के बाद भी लोग अपना केयर नहीं करते हैं. अगर आप कॉस्मेटिक बोलोगे चले जाएंगे सर्जरी कराने के लिए, बोटॉक्स लगाने के लिए, फेशियल के लिए, ब्लीचिंग, वैक्सिंग, सब चीज़ के लिए, बट अगर हेल्थ का कोई उनका एक नीड है तो वो नहीं जाते हैं. और उस पर कटौती भी करते हैं, क्योंकि मैं एक हॉस्पिटल भी है मेरा, आर्यन हॉस्पिटल, जहाँ पे मैंने देखा है कि लोग अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इतने बहाने करते हैं, ट्रीटमेंट को टाइम मिली, उसका फॉलोअप उसके. तो वो मुझे बोलना था कि आप अपने शरीर के संकेत को पहचानिए और अपनी जानकारी जो भी है मेडिकल की, वो रेगुलर चेकअप पे कर. 30 के बाद आपको साल में हेल्थ चेकअप करना है. अगर आप महिला हैं तो आपको अपने हाथ से अपने ब्रेस्ट को टच करना है, गांठ देखना है, कुछ गड़ तो नहीं रहा है. अगर कुछ लगता है फिर आप क्लिनिकल डॉक्टर के पास जाइए. और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप किसी झोला छाप या किसी वर्बल या मेरे पास होता था किसी लेडी की बात में, या जिसको जानकारी न हो, मेडिकल मॉडर्न जानकारी न हो स्पेशली आई एम टेलिंग, तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए.
0: आजकल तो क्या हो रहा है कि लोग बहुत सारी रीलें देख लेते हैं और सेल्फ प्रोक्लेम्ड डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स की मदद, या इंटरनेट पर कुछ देख लिया और अपनी डॉक्टरी खुद कर ली. ये बेहद खतरनाक है.
1: ये बहुत ख़तरनाक है। अब एक अभी लास्ट वीक में एक पेशेंट हमारी आई थी, उसको पेट में दर्द था, तो उसने गूगल किया कि मेरे को फ़ोटो उसने गूगल में डाल दिया चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी ने बोला उसको कि भाई ये एरिया में यहाँ पे आपका किडनी आता है और आपको किडनी का और वो ओबेसिटी की मेडिसिन ले रही थी, एक मेडिसिन ले रही थी ओबेसिटी, कुछ हर्बा लाइफ ले रही थी, तो उसको एक्चुअली किडनी का कैंसर था। लेकिन उसने अपना गूगल इलाज ऑलमोस्ट 6 महीने 7 महीने किए, और जब आई तो काफ़ी टॉक्सिक थी, अभी तो टाटा में भेजा हुआ है। बट मैं ये बोल रही हूँ कि जो लोग होते हैं, वो जो सोशल मीडिया होता है, वो एल्गोरिदम पे चल रहा है, वो नंबरिंग पे चल रहा है, वो एक सोल्ड इन्फॉर्मेशन है। ऑथेंटिक जो डॉक्टर्स हैं वो लोग अगर आपको गाइड करते हैं तो, और जब तक आपका डॉक्टर आपको क्लिनिकली न देखे और आपको इन्वेस्टिगेशन आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद आपके जो प्रॉब्लम्स हो उसके हिसाब के आपको जांच न कराए और फिर उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, तब तक उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये बहुत इम्पल्स जरूर आता है कि हम रील इतना एडिक्टिव है, इट इज़ सो एडिक्टिव एट टाइम यू फॉरगेट, टाइम सेंस भी ख़त्म हो जाता है। बट दीज आर थिंग्स आर मार्केट एंड यू हैव टू यूज़ इट इन अ पॉजिटिव वे। आपको ये सब चीज़ जो अवेलेबल है देश में, गूगल है या फिर इंस्टा है, वो पॉजिटिव चीज़ उसकी यूज़ करनी चाहिए, न कि उसको पूरी तरह से फॉलो करके मिसडायग्नोस करके। क्योंकि आज भी जब हम बैठे रहते हैं तो आजकल बहुत सारे डॉक्टर लिख रहे हैं कि अगर आप गूगल के डॉक्टर से आ रहे हो तो तुम्हारी फीस 6 बार ज़्यादा है, एज अ जोकिंगली। बट ये ट्रुथ है कि इतना ओवर एजुकेट आते हैं कि जब एक्चुअल डायग्नोस उनको पता चलता है, अरे मुझे तो सिर्फ बीपी गैस्ट्रिक पेन था और कुछ बेसिकली मेरा सोनोग्राफी नॉर्मल आ गया, लेकिन गूगल ने तो बहुत बड़ी बीमारी बता दी आपको
0: जी।
1: आपको तो इतना दूर पहुंचा दिया, आपने वो दवाई भी ले ली, खा भी लिए। तो बहुत सारे जो काउंटर मेडिसिन जो हम लेते हैं कि मुझे पेट में दर्द है तो साइक्लोस्पाज़म ले लिया, कोई और मेडिसिन ले ली, और वो क्लिनिकली आपको किसी एक्सपर्टाइज डॉक्टर ने नहीं

0: की है तो उसके साइड इफेक्ट हुए
1: जी।
0: उस साइड इफेक्ट के चलते ये हुआ, और कितना भी कंट्रोल आप करते हो आज भी काउंटर पे मेडिसिन लिया जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: और जो पेशेंट है भारत के वो जुगाड़ू पेशेंट है, उनको हर जुगाड़ आता है। इवन मेरी मम्मी या मदर इन लॉ, अगर मैंने उनको एक बार पेट की दवाई दर्द की दी है तो नेक्स्ट टाइम मैं गांव में गई तो आधी गांव वो पेट की दवाई दर्द में खा रही थी,
1: सेम दवा।
0: हाँ सेम दवा। सो ये बहुत ही कॉमन इशू, ये मेरे ही घर की नहीं है, हर घर की है। क्योंकि उनके घर में डॉक्टर है तो उनको पता है कि हाँ ये पेट दर्द का है, ये उल्टी का है, और ये यू नो दर्द का है, तो वो फिर भी थोड़े डायग्नोस्ड एरिया में जा रहे हैं। बट मेनी ऑफ द हॉस्पिटल से दवाई बची हुई एक्सपायरी दवाई खा लेते हैं पेशेंट, क्योंकि अरे उसमें पैसा गया हुआ है, उससे मोह है। तो ऐसी बहुत सारी डेली बेसिस पे हमारे पास एज अ डॉक्टर केस आता है कि यहाँ पे ये दवाई खा ली और कॉम्प्लिकेशन हो गया। और हॉस्पिटल में जब स्टेज देखा है मैंने डॉक्टर पेशेंट का, उनके ऊपर सारी दवाइयाँ फेल हैं, क्योंकि हर एक चीज के लिए उन्होंने अपनी इम्यूनिटी बना ली है, और द टाइम कम्स व्हेन यू नीड द मेडिसिन मोस्ट, उस टाइम आपके ऊपर कोई दवाई नहीं काम करी, क्योंकि आउट ऑफ द यू नो काउंटर से आपने जो भी दवाई ली उसके साइड इफेक्ट नहीं पता थे, उसके यू नो कॉन्ट्रडिक्शंस और उसके यूजेस नहीं पता थे, तो वो कई सारी दूसरे ऑर्गन्स पे डैमेज करके चली आई हैं।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी बातें आपने बताई डॉक्टर सुनीता, और यहाँ एक और गाने की जगह है, और मुझे अंदाज़ा है कि अपने पिता से आपको बहुत प्यार रहा है और एक गाना आप उनको डेडिकेट करना चाहती हैं।
0: तो मेरे डैड बचपन में काफ़ी, जैसे कि डेफिनेटली वो सबके फादर करते हैं, बहुत ट्रैवल करते थे और बहुत सारे काम करते थे, जैसे एक नॉर्मल परिवार का जो जिम्मेदारी होता है वो देखते थे। लेकिन ये बात मुझे इम्पॉर्टेंटली ये फील हो रहा है कि विश्व में जितने भी बच्चे हैं ये रिलेट कर सकते हैं कि जो फादर होते हैं एक आसमान की तरह होते हैं, या आप सोचे एक पहाड़ की तरह होते हैं, और सामने ही होते हैं, हमें दिखता नहीं है। जब वो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, और वो जो वैक्यूम क्रिएट होता है उनके जाने के बाद, वो मतलब ये कभी प्लेस नहीं हो सकता, एक डीप वैक्यूम। या आप उनकी बातों से इंस्पायर हों या उनको याद करें, लेकिन वो पेन जो डीप है वो कभी नहीं जाता है, वो प्रैक्टिकली मैंने महसूस किया। और अगर आपके डैड बहुत इंस्पिरेशनल हो, बहुत वेल लर्न हो, तो उनकी बातें आपके कानों में गूंजती रहती हैं, जो कि बहुत प्रैक्टिकल होती है। और आपके माँ बाप को छोड़कर कोई भी आपको वो नहीं बताता जो हार्श है। आपको बहुत पिंकिश लाइफ लोग दिखाएंगे, आप भी बहुत अच्छा सोचते हो, पर जो डैड थे वो आपको रियलिटी चेक कराते थे। तो उस टाइम जब वो जाते थे, बहुत जब मिस करते थे एज अ चाइल्ड, तो ये गाना मैं बहुत गाती थी,
1: पापा जल्दी आ जाना,
0: पापा जल्दी आ जाना। ये गाना मुझे बहुत रिलेट होता था, एंड एज अ किड आई यूज्ड टू सिंग अ लॉट।
1: सुनते ही ये गाना

0: डॉक्टर सुनीता, बहुत सारी बातें हमारी हो रही हैं और आपने बताया कि कितनी सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मेडिकल की दुनिया की जिनको लेकर आप लगातार अवेयरनेस का काम कर रही हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब थोड़ा सा भी खाली वक्त मिलता है तो क्या कर रही होती हैं आप?
1: खाली वक्त में आई प्ले लॉन टेनिस, आई एम अ किक बॉक्सर ऑल्सो।
0: अच्छा।
1: सो मोस्टली खाली वक्त एज सच नहीं है, बट डेफिनेटली आई ऑलवेज आई एम वर्किंग एट होम ऑल्सो। आई विल डू माई होमवर्क, प्रिपेयरिंग माई सेल्फ, स्पेंडिंग टाइम विद माई किड, एंड यू नो क्वाइट डीपली रूटेड हूँ, फैमिली ओरिएंटेड आई एम, बट डेफिनेटली आई हैव अ वेरी ग्रेट फैमिली ऑल्सो। द किड्स आर वेरी गुड, मदर इन लॉ इज वेरी लविंग केयरिंग, फादर इन लॉ बहुत यू नो लाइक ऑल आर वेरी नाइस, एंड आई स्पेंड टाइम, आई लाइक टू राइट ऑल्सो। सो अभी जो सबसे बड़ा मेरा 4 साल का सबसे बड़ा काम चल रहा है, प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट नेशनल हेल्थ केयर प्रोविजन पे काम कर रही हूँ, तो उस पर भी काम करती हूँ। एंड आई ऑल्सो हैव अ हैबिट ऑफ राइटिंग और लिसनिंग, सॉन्ग तो ज़्यादा नहीं है बट चॉइस ऑफ सॉन्ग है। बहुत रेयरली आई वॉच मूवी विद माई फैमिली, बहुत रेयरली, अगर पूरी फैमिली देख रही है तो ही मूवी। मैंने टीवी कभी देखा ही नहीं एज अ चाइल्ड ऑल्सो, कभी टीवी देखा नहीं, ज़्यादा आउटस्कर्ट, बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी पढ़ना पसंद नहीं है बिकॉज दे डिस्टर्ब मी।
0: जी बिल्कुल। तो इन सारी गतिविधियों से आप अपना वक्त निकालती हैं। मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि ये डॉक्टर्स डे पर आप कुछ और चीज़ें लॉन्च करने जा रही हैं, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे होता है, क्या तैयारियां हैं आगे की, क्या मिशन है?
1: इस साल ये डॉक्टर्स डे दिल्ली का ही प्रोग्राम है, हर साल दिल्ली में ही होता है। पिछली बार विज्ञान भवन में हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ, अभी ये 1 जुलाई को होगा दिल्ली में। और इस प्रोग्राम में कैंसर एक हमारा बहुत बड़ा फोकस्ड एरिया है, और सेफ्टी ऑफ द डॉक्टर जो चल रहा है नेशनल हमारा बिल, उसके बारे में, और कई एमिनेंट अक्रॉस वर्ल्ड लोग आने वाले हैं इसमें, और क्योंकि ऑलरेडी इस्टेब्लिश प्रोग्राम है इसमें, आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट एक जो मिशन है, जो प्रिवेंशन ऑफ असॉल्ट नेशनल बिल जो हमने 2023 में शुरू किया था, जो आज देश का ऐसा मुहिम बन गया है जिसमें देश के 58 मेडिकल बॉडी, हर स्पेशलिटी के 8,200 इंस्टीट्यूट और 78 MP पार्लियामेंटेरियन सपोर्टिंग, और रिसेंटली एक MP फोरम भी सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर के लिए फॉर्म किया जिसमें 34 MP एक वीक में ज्वाइन हुए टू सपोर्ट आवर मिशन। बेसिकली मिशन ये है कि जब डॉक्टर ड्यूटी पे रहता है तो उसको एक इन्वायरमेंट ऐसा चाहिए जो पीसफुली पेशेंट पे फोकस होकर ट्रीटमेंट करे, कि जिसके वजह से एक सिस्टम आए और एक स्पेशलाइज्ड लॉ डॉक्टरों के लिए आए और एक नेशनल बिल आए जो डॉक्टरों को उनके ड्यूटी पे सुरक्षित रह सके और वो काम होके अपनी नॉलेज को ट्रीटमेंट में यूज़ करें, न कि क्योर्स में यूज़ करें। और पेशेंट अगर सेफ तभी होगा जब डॉक्टर सेफ है, तो ये डॉक्टरों की कोई डिमांड नहीं है। अगर भारत चाहता है, हमारे देश चाहती है कि हमारे पेशेंट सेफली ट्रीट हों, तो उन्हें एक सेफ इन्वायरमेंट अपने डॉक्टर को देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के डॉक्टर, इवन प्राइवेट डॉक्टर उतने ही इक्वल हैं, और डॉक्टरी में कोई जेंडर नहीं होता है कि लड़की है डॉक्टर, लड़का है डॉक्टर, सबको इक्वल सेफ्टी की राइट है और फंडामेंटल राइट है जो मिलनी चाहिए, उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। और चाहे वो लोकसभा कमेटी हो या राज्यसभा कमेटी हो या फिर पिटीशन कमेटी हो, हेल्थ कमेटी हो, सब में ये बातें चल रही हैं। और मैं एक जरूर, बहुत अच्छी फीलिंग है मुझे इस बात के लिए कि जो हमारे भारत के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसका मेरा एक्सपोजर पहले नहीं था, ये लोग इतने अच्छे हैं, समझ के तुरंत ही हेल्प करने के लिए हाथ एक्सटेंड किए हैं, वो किसी भी पार्टी के होने दो, वो अप्रिशिएशन मेडिकल फ्रेटर्निटी के माइंड में हमारे इस मिशन के द्वारा एज अ पॉजिटिव, इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
0: जी,
1: शी हर सेल्फ की हाँ ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और इसे होना चाहिए
0: जी।
1: तो ये बहुत बड़ा चीज़ है, और वी जस्ट प्रे, और आपके माध्यम से भी चाहेंगे कि डॉक्टर की सेफ्टी के लिए आप भी आवाज़ करिए और सी टू इट की वो सिस्टम बने और सेफली हमारे डॉक्टर अपना काम करें।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए और इतने सारे मुद्दों पर हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए, बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच।
0: आज के मेहमान कार्यक्रम में ये थी बातचीत डॉक्टर सुनीता दुबे से। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन काजल बदरगे
2: और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज के मेहमान।

0: तंबाकू जानलेवा होता है। गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक होता है। इस बात का हमेशा से जिक्र होता रहा है और होता रहेगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि तंबाकू से क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं, विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 BEST के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार सिंगल से एक भेंट वार्ता। सुनना न भूलिए, शनिवार दिनांक 30 मई 2026 को दिन में 11:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम मैटिनी शो में।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफ़ेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मैं हूँ जॉन अब्राहम। मैं तो यही कहूंगा कि धूम में भी मैंने हेलमेट पहनी थी। जितने पेरेंट्स हैं, जितने यंगस्टर्स हैं, जो भी सुन रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। हेलमेट बहुत ही जरूरी है। मैं अपने यंगस्टर्स को ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं बाइक्स को रेसिंग ट्रैक पे लेके जाता हूँ, नॉर्मल रोड्स पे ऐसे नहीं चलाता हूँ। काफ़ी यंगस्टर्स बहुत फास्ट बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट। तो मैंने एक यंगस्टर को साइड में लाके मैंने कहा कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहनते हो, लड़कियों को दिखाना चाहते हो, राइट? तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा तो इतना तेज क्यों चलाते हो, कौन देखेगा तुम्हें, राइट नाउ यू आर एन इडियट, आराम से चलाओ। और मैंने कहा कि जो कूल कोशेंट है ना, वो हेलमेट पहन के आराम से चलाओ, बिना हेलमेट के मत चलाओ।
1: कूल बनिए, फूल नहीं, हीरो ही पहनते हैं हेलमेट। बेहतर जिंदगी के लिए ये था हमारा छोटा सा प्रयास।
2: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजने को ही कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार, पहले हिंदी में, 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार।
3: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की मंजूरी दे दी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में मदद करेगी।
4: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
3: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक PDS योजना के दूसरे चरण के लिए 25,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सत्यापन पुष्टि पर्ची से संबंधित दिशा निर्देशों में बदलाव की मांग वाली याचिका पर कहा है कि इस बारे में निर्णय लेने का अधिकार निर्वाचन आयोग का है। न्यायालय ने कहा कि ये तकनीकी मामला है और निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है। याचिका में कहा गया था कि इन पर्चियों पर समय अंकित करने से पारदर्शिता, सत्यापन और ऑडिट प्रक्रिया में सुधार होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG 2026 पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने आज केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $50 अरब तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। जापानी संसद ने आज विदेशी खतरों से निपटने के लिए सूचना जुटाने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने हेतु एक राष्ट्रीय खुफिया परिषद की स्थापना के लिए कानून को मंजूरी दे दी। परिषद की स्थापना जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के शासन के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। आईपीएल क्रिकेट के पहले एलिमिनेटर मुकाबले में आज शाम 7:30 बजे न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इस मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन से मुकाबला करेगी, वहीं हारने वाली टीम प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
5: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved continuation of the scheme for assistance in ration transport and handling income with automation in PDS, Sarthak PDS, as an umbrella scheme in the 16th Finance Commission cycle award period, with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the scheme will provide assistance to state agencies for intra-state movement of food grains, support fair price shops, and help in modernization of the public distribution system.
4: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं।
6: 3 मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे। फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज एफसीआई वेयरहाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स। सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड अ डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल। थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन system through the use of technology.
4: Public distribution system ko hum kaise modernize kar sakte?
5: Home Minister Amit Shah today hailed the approval of over 25,500 crore rupees for Sarthak PDS Phase 2 by the Union Cabinet. In a social media post, Mr. Shah said the government is equipping poverty alleviation schemes with technology to make them more transparent and convenient. The Supreme Court today agreed to examine a plea challenging a CBSE policy mandating the study of 3 languages, including at least 2 native Indian languages, for Class 9 students. A bench of Chief Justice Suryakant and Justices Joymalia Bagchi and Vipul M. Pancholi issued notices to the Centre, the CBSE and the NCERT and sought their replies within 2 weeks. According to a recent circular issued by the Central Board of Secondary Education, CBSE, the study of 3 languages, including at least 2 native Indian languages, has been made compulsory for Class 9 students beginning from the 1st of July. The Supreme Court today left to the Election Commission to take a decision on a plea seeking changes to VVPAT guidelines to show the exact time when a vote is cast on each slip. A bench of Chief Justice of India Suryakant and Justice Joymalia Bagchi said the matter is technical in nature and falls within the jurisdiction of the Election Commission. The plea stated that adding a timestamp on VVPAT slips would improve transparency, verification and auditability in the electoral process. The Central Bureau of Investigation has arrested 2 more accused in the NEET UG 2026 examination paper leak case. An accused, namely Dr. Manoj Chirure, A Latur-based doctor has been arrested in the case. Another arrested accused is Tejas Harshad Kumar Shah, who is a physics faculty at Dr. Abhang Prabhu Medical Academy, a Pune-based coaching center. The agency has arrested 13 accused so far in the case from Delhi, Jaipur, Gurugram, Nashik, Pune, Latur and Ahilya Nagar. Amid rising temperatures in different parts of the country, Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to take as many precautions as possible. In a social media post, Mr. Modi advised all to keep themselves hydrated and carry water when stepping out of the home. Mr. Modi stressed that in such weather, sensitivity becomes a great source of support. He further directed placing a small vessel filled with water outside homes, balconies, rooftops, shops or offices for animals and birds. The Indian Meteorological Department has issued a yellow alert for heatwave conditions today over parts of Delhi, with maximum temperature expected to hover between 43 and 45 degrees Celsius. The Met Department has also predicted severe heatwave conditions over Haryana, Chandigarh, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbha. In badminton, Indian shuttler H.S. Pranoy stunned fifth-ranked Jonathan Christie of Indonesia with a 10-21, 21-12, 21-18 first-round victory in men's singles at the Singapore Open today. Later in the day, Lakshya Sen will take on China's Liu Kuangsu. In the mixed doubles, the pair of Dhruv Kapila and Tanisha Krasto defeated the Malaysian duo of Wong Tianxi and Lim Chiu Sen in the first round. And with that, we end this news bulletin.
2: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी भजन।

अभी आप सुन रहे थे गैर फिल्मी भजन। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा मंच। युवा साथियों, जय हिंद। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे खेलों के बारे में, और खेलों का हमारे जीवन में कितना महत्व है ये तो आप और हम सभी जानते ही हैं। साथ ही साथ कार्यक्रम में करेंगे आपका मनोरंजन गीत संगीत के साथ। जी हाँ दोस्तों, खेल एक और जहां हमारे शरीर को चुस्त दुरुस्त रखते हैं, चिरायु निरोग रहने में हमारी सहायता करते हैं, वहीं आज के परिवेश में खेल हमारी आमदनी का अच्छा साधन होने के साथ साथ देश विदेश में हमें पहचान भी दिला सकते हैं। देखना ये होता है कि खेलों के प्रति आप कितना समर्पित हैं। साथियों, आजकल की बात करें तो आजकल सभी पर क्रिकेट का बुखार चढ़ा है। पिछले रोज धर्मशाला के अंतर्राष्ट्रीय HPCA क्रिकेट स्टेडियम में IPL का हाई वोल्टेज मैच खेला गया, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को करारी शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब फाइनल में दूसरी टीम कौन सी रहेगी, IPL का विजेता कौन बनेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन IPL में एक बात हमें बहुत अच्छी लगती है, और वो ये है कि टीम चाहे कोई भी जीते, जीतेगा तो इंडिया ही।

युवा साथियों, यूं तो आप अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार किसी भी खेल का चयन कर सकते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे खेल के बारे में जिसे खेलने के लिए एक बड़ी टीम की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आपके साथ केवल एक ही साथी है तब भी आप इस खेल का मजा ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बैडमिंटन के बारे में। बैडमिंटन रैकेट से खेला जाने वाला एक खेल है जो दो विरोधी खिलाड़ियों एकल या दो विरोधी जोड़ों युगल द्वारा नेट से विभाजित एक आयताकार कोर्ट में आमने सामने खेला जाता है। खिलाड़ी अपने रैकेट से शटल कॉक को मारकर अपने विरोधी पक्ष के कोर्ट के आधे हिस्से में गिराकर पॉइंट्स प्राप्त करते हैं। प्रत्येक पक्ष शटल कॉक के उस पार जाने से पहले उस पर सिर्फ एक ही बार वार कर सकता है। बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा इंडोर में ही खेलना श्रेष्ठ होता है क्योंकि शटल हल्की होने के कारण हवा का प्रभाव इस पर पड़ता है, लेकिन मनोरंजन के लिए इस खेल को हम आउटडोर भी खेल सकते हैं। बात मनोरंजन की हो रही है, आपको सुनवाते हैं ये गीत।

0: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
1: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
0: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट 4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट 4.42 लाख ओनली
1: विद 1,999 डाउन पेमेंट एंड 1,999 EMI। विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
2: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
3: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
2: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
3: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
2: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
3: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।
0: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
1: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
0: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट 4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट 4.42 लाख ओनली
1: विद 1,999 डाउन पेमेंट एंड 1,999 EMI। विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
4: युवा मंच कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

स्पोर्ट्स बीट्स के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं बैडमिंटन के बारे में। बैडमिंटन खेल सबसे पहले 18वीं शताब्दी में खेले जाने के प्रमाण मिलते हैं। वर्ष 1992 से इस खेल को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। 1860 में लंदन के एक खिलौना व्यापारी इसहाक स्प्रॉट ने बैडमिंटन बैटलडोर एक नया खेल नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी कोई प्रति बच नहीं पाई। 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश सैनिक अधिकारियों द्वारा इसका सृजन किया गया। ऐसा भी माना जाता है कि ब्रिटिश छावनी शहर पूना में ये खेल खास तौर पर प्रचलित रहा। शायद इसीलिए इस खेल को पूनाई के नाम से भी जाना जाता है। धीरे धीरे बैडमिंटन खेल के नियम बनाए गए। 13 सितंबर 1893 में इंग्लैंड में आधिकारिक तौर पर बैडमिंटन की शुरुआत की गई। 1899 में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत हुई, जो विश्व की पहली बैडमिंटन प्रतियोगिता बनी।

0: अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
1: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
0: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट 4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट 4.42 लाख ओनली।
1: विद 1,999 डाउन पेमेंट एंड 1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
2: युवा मंच कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम हम बात कर रहे हैं आज बैडमिंटन के बारे में। आज विश्व बैडमिंटन संघ खेल का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त शासकीय निकाय है। बहुत सी प्रतियोगिताएं इस खेल के लिए आयोजित की जाती हैं, जिनमें विश्व बैडमिंटन संघ द्वारा जिन्हें संचालित किया जाता है थॉमस कप और उबर कप प्रमुख हैं। 1973 में फोर्ट के ड्यूक ने इंग्लैंड में इस खेल की शुरुआत की थी, इसलिए उन्हें बैडमिंटन का जनक भी कहा जाता है। बाकी खेलों की तरह बैडमिंटन खेलने के लिए भी खिलाड़ी को फिटनेस का विशेष ध्यान रखना होता है। चुरुस्त दुरुस्त और मानसिक रूप से स्वस्थ खिलाड़ी इस खेल में हिस्सा लेकर देश का नाम रोशन कर सकते हैं।

युवा साथी अभी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युवा मंच। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:55 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पर सदाबहार संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मोचा ग्राइंदियां। कार्यक्रम में आज कृषि औजारों की देखभाल के विषय में जानकारी दी जाएगी। किसान वाणी कार्यक्रम का प्रसारण समय रहेगा 7:10। कार्यक्रम में आज हिमाचल प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्रों पर बात होगी। बजे पेश किया जाएगा विविध संगीत कार्यक्रम होगा सबरस। 9:15 पर एक ही कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत आज विख्यात गीतकार कौसर मुनीर के लिखे कुछ फिल्मों से चुनिंदा गीत सुनवाए जाएंगे। शास्त्रीय संगीत का आनंद लीजिएगा रात 10:00। रात 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

आकाशवाणी शिमला से शाम 6 बजे और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिली किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से 9:30 पर रिले किया जाएगा कार्यक्रम चर्चा का विषय है। आकाशवाणी दिल्ली से रिली किए जाने वाले समाचारों का समय रहेगा 7:00 और 11:00 हिंदी में समाचार, 7:05 और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार, 8:45 पर समाचार संध्या और 9:00 न्यूज़ @9।

कार्यक्रम विवरण में आज बस इतना ही। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में कल 28 मई को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। मतदान के तुरंत बाद पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान और सरपंचों के लिए पड़े वोटों की गिनती होगी, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए मतदान की गिनती 31 मई को होगी। 31 मई को ही प्रदेश के 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला के लिए हुए चुनाव की मतगणना भी होगी। पंचायतीराज संस्थाओं के दूसरे चरण के चुनाव के लिए कल 1274 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। राज्य में पंचायतीराज संस्थाओं के तीसरे और आखिरी चरण में 30 मई को 1187 पंचायतों में मतदान होगा। इस बीच कल होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज उम्मीदवारों ने भीषण गर्मी के बावजूद राज्य के विभिन्न हिस्सों में घर घर जाकर वोट मांगे और अपनी जीत पक्की करने का प्रयास किया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को विधानसभा या लोकसभा की तरह सत्ता का सेमीफाइनल बताना पूरी तरह गलत है। विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि पंचायत चुनाव व्यक्तिगत क्षमता, स्थानीय जन समर्थन और उम्मीदवारों की मेहनत के आधार पर लड़े और जीते जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पंचायत चुनावों के अभी 2 चरण होने बाकी है और पूरी तस्वीर सामने आने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।
1: अधिकतर जो इसमें चुनावों में, चाहे वो पंचायत के प्रधान है, चाहे वो जिला परिषद के हैं, चाहे वो हमारे उप प्रधान है, मैक्सिमम प्रधान जो है वो किसी पार्टी लाइन पे जीत के नहीं आते हैं। अभी तो क्योंकि फर्स्ट फेज इस चुनावों का हुआ है, 2 फेज अभी और इसके होने हैं अगले 2 दिन के अंदर, उसके बाद इसमें स्थिति स्पष्ट होगी। मगर मैं आपको ये पूरी मजबूती के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके से नगर पंचायतों में, नगर निकायों में अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहा है, उसी तरीके से जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव का परिणाम भी आना है 4 नगर निगमों का, वहां पे भी कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन।
0: विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पंचायत, नगर निकाय और नगर निगम चुनावों में जो भी प्रतिनिधि जीत कर आएगा, सरकार उसके साथ मिलकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि धर्मशाला में आयोजित आईपीएल मुकाबलों ने हिमाचल, खासकर धर्मशाला, कांगड़ा, मैक्लोडगंज, पालमपुर और आसपास के क्षेत्रों की स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा प्रोत्साहन दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल में क्रिकेट को नई पहचान देने के साथ साथ खेल पर्यटन को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से न केवल प्रदेश की आर्थिकी को बल मिलता है बल्कि राज्य की संस्कृति के प्रचार प्रसार को भी बढ़ावा मिलता है। प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक हर व्यक्ति अपनी और अपने परिवार की गणना स्वयं कर सकेगा। स्व जनगणना के लिए डिजिटल तकनीक का सहारा लिया जाएगा। राज्य जनगणना कार्य निदेशालय के अनुसार स्व जनगणना से जनगणना का काम तेजी से और पारदर्शी ढंग से हो सकेगा। स्व जनगणना में डिजिटल तकनीक के प्रयोग से प्रदेशवासियों को अपनी गणना और जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसके बाद उन्हें स्व जनगणना आईडी नंबर मिलेगा। ये नवंबर जनगणना कर्मी के घर घर सर्वेक्षण करने के दौरान उन्हें बताना होगा। ऐसा करने से स्व जनगणना के दौरान पोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी स्वतः ही जनगणना

0: कर्मी के मोबाइल ऐप में प्रदर्शित हो जाएगी और इसकी पुष्टि भी हो जाएगी। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है, खासकर राज्य के मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन और मंडी में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। ऊना जिला में तापमान लगभग 44 डिग्री पहुंच जाने के चलते छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से हल्के रंग के कपड़े पहनने, शरीर में पानी की कमी न होने देने और 12 से 4 बजे के बीच अनावश्यक रूप से घर से न निकलने की सलाह दी है। सिरमौर से हमारे संवाददाता सतीश शर्मा के मुताबिक हीटवेव से अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अत्यधिक गर्मी के कारण राज्य के मैदानी क्षेत्रों में बाजारों से रौनक गायब हो गई है। हालांकि शिमला, मनाली, डलहौजी जैसे शहरों में गर्मी से बचने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 28 मई से हिमालय क्षेत्र में ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से 28 मई को राज्य के 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में ओलावृष्टि, अंधड़, आसमानी बिजली गिरने और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे
2: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार संगीत। हाय।

0: मोहम्मद रफी, एस बलबीर और साथियों की आवाजों में हंसते जख्म फिल्म का गीत अभी आपने सुना। ये गीत कव्वाली कुछ भी इसे कह सकते हैं। कैफी आजमी के बोल थे, संगीत मदन मोहन का था।
1: मारुति सुजुकी अरीना के साथ

0: घर लाइए खुशियों की चाबी,
1: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
0: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट 4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट 4.42 लाख ओनली।
1: विद 1,999 डाउन पेमेंट एंड 1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
0: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
1: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
0: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट 4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट 4.42 लाख ओनली।
1: विद 1,999 डाउन पेमेंट एंड 1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
2: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना,
3: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार,
5: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
3: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रूपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
2: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट ₹4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट ₹4.42 लाख ओनली।
3: विद ₹1,999 डाउन पेमेंट एंड ₹1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
2: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
3: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रूपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
2: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट ₹4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट ₹4.42 लाख ओनली।
3: विद ₹1,999 डाउन पेमेंट एंड ₹1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
4: सदाबहार संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए मोहम्मद रफी की आवाज में प्यार ही प्यार फिल्म का गीत, संगीत शंकर जयकिशन का है।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में प्यार ही प्यार फिल्म का गीत अभी आपने सुना।
1: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
2: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
1: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट 4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट 4.42 लाख ओनली।
2: विथ 1,999 डाउन पेमेंट एंड 1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
1: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
2: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
1: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट 4

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 होने को हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम मौजा ग्रांतियां।

0: कार्यक्रम मौजां ग्रहण दिया सुनने वाले सारे किसान करें बागवान भाइयां बहना जो केसरों दी तो आज जोड़ी करी राम राम। किसान साथियों आज दिखा ट्याले पर मिंजो कने मेरी बहन चंचलो भी आई हो। चंचलो तो अंजो भी राम राम।
1: राम राम केसरो जी कने प्यारे प्यारे किसान भाइयों जो मेरी तरफ ते भी प्यार भरी नमस्ते कने राम राम।
0: बिल्कुल चंचलो कने दिखना अजकल गर्मियां जड़ी हैं से बड़ी बड़ी पोआ दी हैं कने संजा दा टाइम हुंदा कने आहा सोचदे ट्याले पर जाए करी गपशप मार लैंदे कने ठंडी ठंडी हवा खाई लैंदे।
1: बिल्कुल कने दिखा गर्मियां दी तुहां गल ठीक बोली कहे कि तू तो जा गला गुला खराब के आई हो ना इत्थू।
0: बिल्कुल
1: ता मैं पहले बोलिया था कि भाई गर्मी बड़ी है तो अपना ध्यान रखना कने धुप्पा च ता तू नहीं जाना।
0: सही गल है ना घरे बैठी नहीं हुंदा धुप्पे दिल करता ता गप्पा मारे आईए ता गप्पा मारी आईए कने धुप्पा च निकली करी फिरी जालू आहां आउंदे ता बड़ी बड़ी प्यास लगदी कने फिरी सीधा हाथ जांदा फ्रिजे पासे कने ठंडी ठंडी पानी दी बोतल कड्ढी के आहां से गड़ागड़ पी लैंदे कने बाद च जेहड़ा गले दा हाल हुंदा ना जेहड़ा मेरा होया चंचलू सही हुंदा सारयां दा।
1: तां मैं तीजो पहले बोलदी थी भी फ्रिज दा पानी नहीं हुंदा खरा मिंजू सहीयां काढ़ा रख मैं तां काढ़ा रख्या कई वारी तां मंगी के पीते भी ऐसा पानी तक देया लग्गिया तीजो।
0: बिल्कुल ते ओह ठीक गल गलाई पर सही गल ना आदत जेहड़ी सुधरदी है तो हूँ गड़ा तो मैं रखी लिया पानी भी पीता एक दो बारी पर सच्ची गल है चंचलो पानी मीठा बड़ा भरी कने ठंडा भी बड़ा भरी
1: ठंडा भी कने अगर धुप्पा ते बाहर ते आंदे न तो घड़े का पानी पीते न तो इसने अहां का गला भी खराब नहीं होता कने अहां जो पानी भी खरा लगता।
0: बिल्कुल कने चंचलो चलो अहां खेती बाड़ी का काम करते ना अजकल दिने या सवेरे भी करना ही पौंदा 10-11 बजे तक तो 10-11 बजे सूरज जेड़ा ना सिरे पर इं खड़ोंदा ना आई करी कती इस जो धुप्प पौंदी कती इसके बाद अहां चलो ठंडा पानी पी लैंदे तो थोड़ी रात भी मिलती कने गड़े दिखी गए मुझे तेरी बड़ी याद आती कि चंचलो मुझे खरी सलाह दी थी कने गड़ा रोज इं दो दाई के छलाई करी भरी के हाँ रखी लेंदे कने निके आने भी पीते तीसते।
1: हाँ तै बिल्कुल ठीक बोलिया गया कि देख ना फ्रिजे का पानी तो कुछ भी नहीं यहाँ घड़े के पानी अगे ना इस करके हूं तो याद रखना कने घड़े भरना भुली आंदी था।
0: ना ना ना बिल्कुल हूँ गल याद रखनी है कने चंचलो अच्छा हूँ हाँ ट्याले पर आई बैठे हो कने हूँ दिख जानकारियां पासे भी चलना है तो अज क्या जानकारी लेके आई चंचलो।
1: हाँ दिख जानकारी दे बारे च अज जड़ी हाँ गल करनी है सै कृषि औजारा दी देखभाल दे बारे च हाँ गल करनी है
0: जी।
1: कृषि औजारा दी अगर हाँ सही देखभाल कर दे तो इसने हाँ दे जड़े कृषि औजार होंगे तो इन्हों की उम्र भी बधदी कने जो जड़ा खर्चा भी घट लगता कहीं कि अगर हाँ औजार की सही तरीके ने देखभाल कर दें तो इसने सह तौले खराब नहीं होंदा कने हाँ जो नवा नहीं खरीदना पौंदा।
0: बिल्कुल चंचलो बिल्कुल ठीक गल गलाई जलू हाँ कोई काम कर देना तो मिट्टी ने सड़े सड़े औजार होंगे या कोई भी चीज़ है तो इसी अहाँ लियाई करी सीधे तीन रखी देंदे तो इसने क्या होंगे तीन कई बार जंग लगी आंदा कोई कुछ हो जाता तीन हाँ साफ सफाई करके बनाई के रखना चाहिए।
1: हाँ तीन मैं कणक बढ़ी थी ना कने मैं कणक बढ़ी कने मैं दराटी कणक कुणक बढ़ी के हूँ लगता है ना कि भाई हाँ भाई बेले हो गए तो हूँ दराटी की क्या है ना जरूरत तो तीस जड़ी मिट्टी लगी थी कने थोड़ी मैं बाहर रखी थी तो थोड़ा बच्चा पानी पुनी फेंकी दिया था तीस पानी भी लगी कने फिर मैं तीन से अंदर रखी दिया कने तीसने क्या होया कि तीस चु जंग लगी है।
0: बिल्कुल
1: कने दराटी से खराब हुई हूँ नौ ही खरीदना पौनी
0: नौ ही खरीदी लैनी है फिर तीसरी पली पुली के खरी किते चमकाई के एक बारी फ्री ते रखी लेना।
1: हाँ तो हाँ दे वैसे तो किसान भाई हाँ दे किसान भैन काफी समझदार हैं पर हाँ भी ट्याले पर हो के जड़ी गलती हाँ कर दी तो अपनी किसान भैन ने ना दसी लैंदी है तेना जो गलतियां नहीं करना
0: सारे दस देना बोलते अपनी कमियां भी दसना चाहिए तो हाँ भी गलतियां हो जाए कमियां हो जाए पर जलू गलतियां होनी तीन ध्यान जो सीखने जो बड़ा कुछ मिलता।
1: हाँ जी कने इसते सोगी क्या होंदा कई बार यहाँ जेड़े भी कृषि औजार रखे होंदे तो इस जंग भी लगी आंदा ना।
0: बिल्कुल
1: तो जंग ते बचाने वास्ते हाँ जो क्या करना चाहिए कि जेड़े भी यहाँ दे औजार होंदे तीस थोड़ा देर तेल या फिर ग्रीस जड़ी होंदी ना तीस जो जरूर लगाई देना चाहिए कई कि ये जेड़े यहाँ दे कृषि औजार होंदे जियां कि यहाँ दी कुदाल दराटी फावड़ा वगैरह तो इन्हां दी थोड़े थोड़े समय बाद जरूरत पौंदी रहिंदी ना तो जालू यहाँ दी जरूरत खत्म हो जाती तो तालू यहाँ इन्हां भुली आंदे ना
0: जी जी।
1: तो इसने क्या होंदा कि इन्हां च जंग वगैरह लगी जांदा तो इस करके हाँ जो इन्हां छोटियां छोटियां गल्लां दा ध्यान जेड़ा से जरूर रखना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: हाँ जी कने इसते सोगी इसते अगर हाँ सही भंडारण की गल कर मतलब कि हाँ बाल तो बड़े सारे होंदे हाँ किसान हैं तो हाँ बाल बड़े सारे कृषि औजार होंदे ना जियां कि हाँ गल की कुदाल दराटी फावड़ा होर भी बड़े सारे होंदे तिना जो भी अहां तां तूं बिखेर के रखी दे ना हाँ अगर स्टोर स्टोरेज रखते तो तिथु भी आई फेंके होंदे
0: बिल्कुल।
1: हाँ जी तो इस वास्ते भी हाँ जो क्या करना चाहिए कि भी तिस जो या तो कोई हाँ कोई भांडा दे लगाई सकते हैं जी या
0: कोई तू रैक बनाई लिया
1: रैक बनाई लिया
0: दूर दूर तीन जो रखी सकते ताकि हवा भी लग रही है कने पानी ते बची रहे
1: ना तो इन्हां गल्लां दा हाँ जो जेह्ड़ा असें ध्यान रखना चाहिदा कि जैलूं बी हां जो कम्म पौंदा, जियां कि में कनका दी गल्ल करा दी तां मिंजो याद नहीं था कि भाई में हून कनक बड्ढनी ऐ तां भाई में अपने दराटियां दूटियां लग्गी तो अपना तां मेरी दराटी तां बिल्कुल खुन्नी होई रही
0: है ना।
1: तां इस करके हां जो पैह्ले ही हां जो पता कि हां जो इन्हां चीजां दी जरूरत पौनी ऐ तां हां जो पैह्ले ते इन्हां दे जेह्ड़े हां दे औजार होंदे कृषि औजार होंदे इन्हां जो दिक्खी सुनी लैना चाहिदा, पल्ली भुल्ली लैना चाहिदा, कहीं कई बारी कुछ हां दे औजार जेह्ड़े से खराब भी होए होंगे ना, तो एकदम हां खरीदना तां जाना होंदा। पर इन्हां गल्लां दा हां दे किसान भाइयां जो किसान भैणां जो जरूर ध्यान रखना चाहिदा, कन्नै अहां भी इन्हां चीजां दा ध्यान जेह्ड़ा से रखदे न कहां जो भी ध्यान रखना चाहिदा ना।
0: बिल्कुल, तो चंचलो दिक्खना हां टियाले पर आई करियै गल्लां करदे रहिंदे न ना, जरूरी जरूरी जेह्ड़ी गल्लबात होंदी, तां हुण इन्हां गल्लां बातां दे बाद मिंजो लग्गा तां हुण टियाले पर मौजां लगाने दी जरूरत पवा दी है ना।
1: हाँ मैं समझी गई, तो अपने किसान भाइयों जो हाँ लोग गीत जरूर सुनाना, पर इससे पहले कुछ एक सुने सुनी लेंदे।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल।
2: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
3: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
2: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट ₹4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट ₹4.42 लाख ओनली।
3: विद ₹1,999 डाउन पेमेंट एंड ₹1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।
4: मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूँ और आपका साथी बन जाता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। तो मैं हूँ HIV वायरस, मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
5: हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।

0: किसान भाइयों ता तुहां सुने ये प्यारा दिया लोक भजन कने इस ते बाद हाँ फिरी ते कम्मे दी गल जड़ी से करनी है।
1: बिल्कुल चंचलो गल जड़ी से हाँ कम्मे दी हुण करनी है। दिखा किसान भाइयों हुण खेती बाड़ी दे काम काज जड़े ने साढ़े चले रहिंदे ने।
0: हाँ जी हाँ
1: हुण सब्जी उत्पादन दे बारे जड़ी है थोड़ी दी गलबात करनी है
0: जी।
1: चंचलो भैन दिखा हिमाचल प्रदेश दे जड़े निचले पर्वतीय क्षेत्र ना जित्थू टमाटर बैंगन मिर्च शिमला मिर्च कने कद्दू वर्गी फसलां दी बिजाई या रुपाई फरवरी के दूसरे या मार्च के पहले पखवाड़े की गई उथी तो इतों हूँ इन्ह सब्जियों निराई गुड़ाई करनी है। कने सोगी ही 40 ते 50 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टर भी तुहां पाई सकते हैं
0: जी जी।
1: कने सोगी ही किसान साथियों दिखा जरूरत पौने पर इन सब्जियों 7 ते 8 दिन के अंतराल सिंचाई भी तुहां हूँ करनी है। इस समय जड़ा सा बिल्कुल इन कामों वास्ते चलिया है
0: जी। तो हाँ बिल्कुल ठीक बोल करें। इसके बाद अगर हाँ मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र की गल करन ता मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र च फुलगोभी दी अगेती किस्म दी पनीरी उगाने दा जड़ा सा समय उपयुक्त चलिया।
1: बिल्कुल
0: हाँ जी करें। इन क्षेत्र च जित्थू टमाटर बैंगन मिर्च शिमला मिर्च लाल मिर्च दी रुपाई जड़ी है सै किसान भाई करी सकदे न। कने इसते सोगी भिंडी फ्रास बीन दी बिजाई कने कद्दू वर्गीए सब्जियां जियां कि खीरा करेला घिया तोरी कद्दू कने चप्पन कद्दू दी बिजाई या रुपाई जित्थू अहां दे किसान भाई आ नहीं कीती उता सै इन सारियां सब्जियां दी बिजाई या रुपाई इस समय करी सकदे न। कने रुपाई दे समय जड़ा सै टमाटर बैंगन शिमला मिर्च कने लाल मिर्च जड़ी है इस 250 क्विंटल गोबर दी गली सड़ी खाद 235 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इफको 12:16 मिश्रण कने 29 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर खेत च किसान भाइयों जो पाना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल कने ये जड़ी गल्ला ने जड़ी जानकारी ने से तुहां जरूर गठी बननी है कने इस पर अमल भी करना है।
0: हाँ जी
1: कने चंचलो पैन हुण जानकारी दे बाद फिर ते टियाले पर अहां चलना है कने सुनना है प्यारा दिया लोक गीत।
0: हाँ जी पर दिखा केसरो पैन पहले हाँ एक सुनिया भी सुन लें।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: ठीक है।
2: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
3: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
2: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट ₹4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट ₹4.42 लाख ओनली
3: विथ ₹1,999 डाउन पेमेंट एंड ₹1,999 EMI। विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।

0: किसान साथियों तू हाँ संजय दे बेला दिखा सुनया है प्यारा दिया लोक गीत कने चंचलो बहन मैं था थोड़ी दी फराटियां भी लाई ली का जो कि गीत ही बड़ा प्यारा था गुलजारी साफे वाले ते कने दिखा मिंजु पुरानी गल याद आई चंचलो जलू ब्याह कारज हुंदे हे ना तालू साफे चलदे हे दे याद है
1: हाँ
0: गुलाबी गुलाबी दे होंदे हे कने तिना दी कलगी खड़ोई रहिंदी ही कने मजा आई जांदा हा कने बरात जे आउंदी ही ना तो दूरे च तिना दिखणे दा मजा आई जांदा हा
1: देखना केसर हूं तू सहरा च रहना लगी पी ना ग्राएं चली भी धीं ही होंगे
0: सही गल है कने हाँ। मजा तो सही था भाई अजकल दिखा साफे बड़े बड़े चले चंचलो रंग बिरंगे कोई जयपुरी कोई छोटी छोटी चुनिया चली पी हाँ। गले च लपेट दे कने बराती चली पौंदे
1: पर ना साफे दी कोई रीस नहीं
0: कोई रीस नहीं कने बड़े ही अच्छे लगते ये गीत सुनी के ना मैं तो कुछ इसे पुराने जमाने के ब्याह चली कने तिना साफिया वाला मेरी जड़ी एक ध्यान चली है
1: अच्छा
0: खैर चंचलो बोलते ना गीत संगीत जेड़े ना कुछ ना कुछ सांझो पुरानी गल्ला पर पुजाई ही दिंदे है ना
1: कने हां दी संस्कृतियां ने जोड़दे
0: बिल्कुल
1: हां याद आंदी है कि वे दिखा हां मतलब ग्राएं च तां हल्ली भी है जी है ना
0: हल्ली भी
1: सही तो देखना तू तो सहारा च रहंदी पर मैं तो ग्राएं च रहंदी ना तां मैं तो दिखदी रहंदी
0: पर दिख ग्राएं दा जेड़ा माहौल है ना रहन सहन है कने रीति रिवाज है ना सै मैं बोलदी शहरां च आई करी भी सांझो अपनाना चाहिए छड़ना नहीं चाहिए हां लोग छड़ी इंदे फटाफट आई करी है ना
1: हां तां बिल्कुल ठीक बोले कने हां जो अपने बच्चियां जो भी सिखाना चाहिए ना
0: बिल्कुल
1: कने दसना चाहिदा गयो कि हां दे बच्चे दिखा अजकल ता तेनो लगदा भी हां जो मोबाइल फोन दे दिए कने कोई गल नहीं करे हां
0: बिल्कुल कुछ बोलला नहीं बस मोबाइल फोन मिली आए तो ना दुनिया सब कुछ मिली
1: आ
0: कने चंचलो तू ठीक गल गलाई कि बच्चों जो ब्याह कार्ज च लेके जाना चाहिए नहीं तो अजकल बच्चे पता क्या पूछते पहले भाई ते तू स्टैंडिंग खाना होगा कि
1: नहीं होगा
0: डीजे होगा कि नहीं होगा अगर डीजे नहीं होगा स्टैंडिंग खाना नहीं होगा तो अहा नहीं जाना भाई पंक्ति च बही के अहा नहीं खाना तो सह बच्चे बोलते क्योंकि तिना सह माहौल नहीं दिखा कने अगर सह दिख गए कि भाई नीचे बही करी चौंकड़ी मारी के जड़ी धाम खाने का मजा है ना सह बहुत अच्छा है
1: सेहत
0: वास्ते सह भी हरी हरी पत्तलों
1: च
0: बिल्कुल चंचलो बिल्कुल
1: तैं बिल्कुल ठीक बोलिया केसरो कहे कि बच्चों का भी कसूर नहीं है कहे कि हाँ बच्चे उस चीजा दसा दे भी नहीं हूं तिना हाँ। जो बच्चे तो यही पता कि स्टैंडिंग खाना होंगे इतू जाए कने खाना है ना
0: चंचलो इसका मजा क्या होंगे दिखना प्लेट च चौल पाने कने सारिया सब्जियां पाई लैनिया कने एक कूने च खड़ोई के चमचू कने लगे ठूंगा मारना तो सह स्वाद भी नहीं आता कने दिख बैठी के जलू अहां खाते ना एक दे बाद एक सब्जी आँदी कने जलू अहां हाथे ने तीस खाते ना तो धामा का स्वाद ही बड़ा
1: स्वाद कने मिंजो तो स्वाद भी लगा दिता
0: दिख मुँह
1: कूड़ेदान कने मैं दिखा भी कूड़ा कूड़ेदान था ही नहीं बाहर ही
0: चंचलो बड़े पुराने कूड़े वाले रखे हुए ना पर सह कूड़ा सह बाहर ही होंदा कूड़ेदान च बरोई मुंह तक बरोया होंदा पर फिर भी सह कूड़ा थले पे होंदा घरे दिख आने जाने वाले जेड़े पशु मवेशी हैं सह भी दिसी लगे कने मुस्क जो चली होंगी सारे सह नक्का च बुदड़े दे के चले होंगे ना
1: हाँ कने इसते सोगी दिख तिसते बखे ना एक गोल गप्पे वाला भी है तीजो मुंह च पानी भी आई कने जितू मक्खियां भी बड़ी बड़ी लगी
0: मक्खियां तो लगनी है मी इतना कूड़ा हाँ। जब बाहर पई रहना था मक्खियां क्या करना फिर
1: हां तो पहले तो मैं भी चली गई मैंने देख धूप पी मैं गोलगप्पे खा लेंदी
0: पर जब कूड़ा दिखेगा
1: तो मैं तो हां मैं तो सोचे भी स्वाद नहीं तो बीमारी है
0: करे चंचलो दिखना हूं तो बोल देना कि बड़े भरी सहूलत हुई हो घर घर तक बोले कूड़ा कचरा लैने साढ़े जेडे भाई बहन है ना आंदे हैं तो तिना वल कूड़ा पकड़ा भी मैं भी दिखा दिख चंचलो आहा क्या करदे सांझो वल टाइम नहीं हुंदा ना आहा दिखदे कूड़े वाले कुतू जी कूड़ा रखदे हैं ते तू जाए कि अपना चुपचाप लफाफू पाना ना तो तू दिखना कोई दिखा था तो नहीं है डोल करके रखी के आई आंदे इसके बाद कुत्ते आई आंदे कोई जानवर आई आंदा खिलारा पाई के चली आंदे तो सांझो समझना चाहिए कोई तुहानू दिखा था कि नहीं दिखा था पर तुहानू अपनी अंतरात्मा का दिखदी ना कि तुह क्या काम करा दे ना
1: हाँ जी कने देख साफ सफाई पर्यावरण जो हाँ इक्की दिन च साफ नहीं रखी सकते ना
0: बिल्कुल
1: ये तो जो आदत बनाना पौनी कने सारे जो बनाना पौनी
0: हाँ कने इक्की दे करने ते नहीं होना सारे जो करना
1: सारे करना पौना कने आंदे दिखा तैं ठीक बोले भी कूड़ा लेना उंदे आंदे पैना भी उंदे पाई भी उंदे ता प्यागा प्यागा आई आंदे ने
0: प्यागा आई आंदे
1: ता जो पता होंदा कि भी एक दिन छड्डी के कि दो दिन छड्डी के उंदे ता तीस तरीके ने जेड़ा
0: कने चंचलो अगर नहीं भी आंदे ना ता तू अपने कूड़े अपने गेटे अंदर रखा भी टाइमे पर तू हां तिना जो दिया है ना
1: हाँ
0: कने चंचलो हूँ मिंजो लगा था गप्पा ज्यादा होई हैं कने गीत संगीत वाले चलते कने सुनांदे एक प्यारा जिहा लोक गीत
1: हाँ जी पर इसते पहले एक संदेश भी सुना लैंदे ना
2: मारुति सुजुकी अरीना के साथ घर लाइए खुशियों की चाबी,
3: क्योंकि जून से मारुति सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में 30,000 रुपए तक की बढ़ोतरी होने जा रही है।
2: आज ही बुक करें स्टाइलिश मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 स्टार्टिंग एट 3.03 लाख ओनली, स्मार्ट मारुति सुजुकी सिलेरियो स्टार्टिंग एट 4.28 लाख ओनली, और स्पेशियस मारुति सुजुकी वैगनआर स्टार्टिंग एट 4.42 लाख ओनली।
3: विद 1,999 डाउन पेमेंट एंड 1,999 EMI, विजिट योर नियरेस्ट मारुति सुजुकी अरीना शोरूम टुडे।

0: किसान साथियों ताई से लोग गीत करने ही हुण कार्यक्रम मौजा ग्राएं दिया दा समय जड़ा से इत्थों संपन्न होआ करदा है। तो जाने ते पहले तुहानूं दस दईए कि तकनीकी सहयोग अज दित्ता सुनील कुमार ने और कार्यक्रम प्रस्तुत करदा जतिंदर पाल सिंह कने हुण अहां दोनों जुदिया अनुमति।
1: अच्छा जी जय।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौजा ग्राइंडियां। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। 7 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार। 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिलीज किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मंत्रिमंडल के आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना राज्य एजेंसियों को अंतर्राज्यीय खाद्यान्न परिवहन में सहायता प्रदान करेगी, उचित मूल्य की दुकानों को मदद करेगी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में जो FCI का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के दूसरे चरण की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upscionline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल हैं। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। श्री गोयल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। कई प्रमुख मानवाधिकार संगठनों और छात्र संस्थाओं ने पाकिस्तान में बलूच नागरिकों के जबरन गायब किए जाने की बढ़ती घटनाओं की कड़ी निंदा की है। आरोप है कि इन घटनाओं को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। इन संगठनों ने कहा कि कई प्रभावित परिवारों के लिए ईद का त्यौहार शोक, अनिश्चितता और अपनों से बिछड़ने के दर्द में बदल गया है। जापानी संसद ने आज विदेशी संकट से निपटने के लिए सूचना जुटाने की प्रक्रिया को केंद्रीकृत करने हेतु राष्ट्रीय खुफिया परिषद की स्थापना के लिए कानून को मंजूरी दे दी। परिषद की स्थापना जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकायची के शासन के प्रमुख उद्देश्यों में एक है। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। मैच की विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन से मुकाबला खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration, transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme, called the Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation and PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period, with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Aswani Vaishnav said the scheme will provide assistance to state agencies for interstate movement of food grains, will support fair price shops and help in modernization of public distribution system.
2: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं।
4: थ्री मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे। फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज एफसीआई वेयरहाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स। सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड ए डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल। थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन system through the use of technology.
2: Public distribution system ko hum kaise modernize kar sakte?
3: The minister said the scheme will work towards fulfilling the government's commitment to 81.35 crore persons covered under the National Food Security Act. He said the scheme is not replacement of the existing PDS scheme. Home Minister Amit Shah has hailed the approval of Sarthak PDS Phase 2 by the Union Cabinet. The Assam Legislative Assembly today adopted the Uniform Civil Code Bill, making Assam the first state in the Northeast and the third state in the country to adopt such a legislation. The bill, introduced during the first session of the 16th Assam Legislative Assembly on Monday, was passed by the House today on the concluding day of the session. Assam Parliamentary Affairs Minister Atul Bora tabled the bill on behalf of Chief Minister Himanta Biswa Sarma. The Supreme Court today upheld the legality of the Special Intensive Revision SIR of the electoral rolls been conducted by the Election Commission of India, ECI. The court held that the Election Commission has the power to conduct SIR under Article 324 of the Representation of the People Act 1950 and the rules made thereunder. It observed that SIR advances the constitutional imperative of free and fair elections. The top court pronounced the judgment in the writ petitions which challenged the notification issued by the ECI in June last year to conduct SIR in Bihar. Hearing another case, the apex court today said the ongoing trial related to the 2023 violence in Manipur needs to be expedited and sought a status report from the authorities. A bench comprising Chief Justice of India Surya Kant and Justice Joymalia Bakchi noted that according to an SIT report, charge sheets had been filed in 207 cases against more than 400 accused persons. President Draupadi Murmu today said the development of the Northeast is vital for the country's overall progress. Addressing the convocation ceremony of Sikkim University in Gangtok, the president urged students to contribute to nation building through innovation, ideas and mutual trust. Early in the day, President Murmu flagged off a women-centric public transport service titled Pink City Rana Amma Didi Bahini Bus Seva in Gangtok. Prime Minister Narendra Modi has urged citizens across the country to take all possible precautions amid soaring temperatures been witnessed in different parts of the country. In a social media post, Mr. Modi advised people to keep themselves hydrated, avoid stepping out during peak afternoon hours, carry water when stepping out of homes, and extend help to others by offering them water during the harsh weather conditions. The Indian cities of Chandigarh and Bhubaneswar were awarded hosting rights of next year's Asian Relays and the 2028 Asian Indoor Championships by the continent's athletics governing body during its Executive Council meeting in Hong Kong today. The Asian Athletics Association's AAA Council meeting was held ahead of the Asian Under-20 Championships from May 28 to 31st. The Athletics Federation of India, AFI, had last year submitted the bids to host both the events. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad won the toss and elected to field against Rajasthan Royals in the eliminator match at New Chandigarh. The winner will take on Gujarat Titans in qualifier 2 on Friday for a place in the final, which will be played on the 31st of this month in Ahmedabad. And that is the end of this news bulletin.
0: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्यारे प्यारे किसान भाइयों का एक बारी फिर ते टाले पर स्वागत है। कने किसान भाइयों कार्यक्रम है किसान वाणी। कने किसान वाणी कार्यक्रम च आज मिंजो सोगी है केसरो ता केसरो तेरा भी एक बारी फिर ते टाले पर स्वागत है।
1: धन्यवाद जी। कने राम राम तो अंजो भी कने किसान साथियों जो भी एक बारी फिर ते केसरो दी प्यार भरी राम राम। ता चंचलो दिख हूँ हाँ टाले पर बैठी हैं ना कन ठंडी ठंडी हवा भी चली कने लोग जड़े से अपने अपने कम्मा काजा दे घरे जो भी जा दे कने कई जड़े से गप्पा शप्पा मारना खड़ोते हो कने हूँ अहाँ भी गप्पा मारनी है कने जानकारियाँ तो पिटारू भी खोलना है ना।
0: हाँ देखना जालू भी हाँ टाले पर होंगी तो अपने किसान भाइयों का मनोरंजन तो हाँ करवाना ही होंगे पर सोगी सोगी जानकारियाँ भी हाँ अपने किसान भाइयों देना होंगी पर तै मिली है कोई जानकारी।
1: बिल्कुल कने किसान भाइयों दिखा टाले पर हाँ आंदे कने जानकारियाँ तो पिटारू जोड़ा जरूर खोल दे कने आज जी जानकारी अहाँ तो हाँ तक पहुँचानी है सह है हिमाचल प्रदेश से कृषि जलवायु क्षेत्र। तो चंचलो भैन जी कि सो सारे पता है कि अपने अपने इलाके च अपने अपने तरह का मौसम होंगे कने जलवायु होंगी है ना।
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: इसकी गलबात जी असें अज अहाँ करनी है कने किसान भाइयों कने जोड़ा असें जानकारी साझा करनी है।
0: तैं बिल्कुल ठीक बोलिया कई कि कृषि वैज्ञानिक भी बोलते हैं ना कि हाँ दे किसान भाइयों जड़ी खेती करनी है कोई भी फसल या सब्जी लगानी है तो अपनी जगह जलवायु का ध्यान देना जो बिल्कुल रखना चाहिए।
1: बिल्कुल कने हिमाचल प्रदेश च चंचलो चार कृषि जलवायु क्षेत्र मन्ने जाते हैं।
0: हाँ
1: तिना च
0: जी
1: है उप उष्ण कटिबंधीय निमन पहाड़ी क्षेत्र। इन्हों की ऊंचाई चंचलो लगभग 350-350 से 900 मीटर होंगी है कने इन्हों पहाड़ी क्षेत्र की जलवायु गर्म कने आद्र होंगी है कने सोगी ही इन्होंने क्षेत्र की प्रमुख फसल जड़ियाँ से हैं गेहूँ धान मक्का और गन्ना कने ऊना बिलासपुर हमीरपुर के कुछ भाग जड़े से इस पहाड़ी क्षेत्र च आते हैं। कने दूई गल जी इस है उप समशीतोषण निमन कने मध्यम वर्गीय जड़े पहाड़ी क्षेत्र हैं तिना की ऊंचाई जड़ी है से 900 से 1500 मीटर की होंगी है। कने जलवायु की गल की जाए तो इतों की जलवायु जी है से मध्यम ठंडी होंगी है कने प्रमुख फसल तो इतों दियाँ मक्का गेहूँ अदरक कने सब्जियाँ कने इन्हें जी है से मंडी सोलन कने कांगड़ा के कुछ भाग आते हैं।
0: बिल्कुल कने बिल्कुल ठीक बोलिया कने
1: अगला
0: दिख
1: अगला जड़ा है ना चंचलो एक और दस दी मैं
0: अच्छा
1: तुम्हें
0: अच्छा
1: क्षेत्र है सह आद्र समशीतोषण उच्च पहाड़ी क्षेत्र। इन्हों की ऊंचाई जी से 1500 से 2250 मीटर होंगी है कने जलवायु जी चंचलो इतों क्या होंगी कि बई ठंडी होंगी कने ज़्यादा बरखा वाली होंगी कने प्रमुख जी फसल इतों होनी सेब आलू राजमा कने जौ जियाँ कि शिमला हुई है कुल्लू हुई है चंबा के उपरी भाग हुई है।
0: कने इस दे बाद दिखां दे किसान भाई दिन भर खेतों च लगे होंगे ना तो
1: बिल्कुल
0: थकी भी ये होंगे
1: जी
0: तो इन्हों का मनोरंजन भी हाँ जरूर कराना होंगे कई कि बोलते हैं ना कि संगीत ऐसी चीज़ है जिसने आदा तनाव भी घटता कने थकावट भी घटी
1: बिल्कुल
0: आती।
1: कने टियाले पर जलू कार्यक्रम किसान वाणी चलता है ना तो साढ़े किसान भाई अपने काम काज भी करते कने सोगी सोगी मनोरंजन भी करते कने जानकारियां भी सुन देन तो भाई हूँ चंचलो अहाँ चलना है
0: एक
1: गीत
0: प्यारे दे लोग गीत की तरफ
1: बिल्कुल।

0: चंचलो दिखना ये गीत लगाया कने मैं तो नची भी ली कने हंसी भी ली भाई नचने का मजा आई आ कने चंचलो बहन भी अज खरी हंसी कने खरी गप्पा मारी है क्योंकि दिखना जलू हाँ दो भैन मिल दी तो गप्पा भी लगदियाँ कने फिर हस खड़ाका भी लगी पौंदा कने होना भी चाहिए है तो चंचलो हूँ हाँ अगे बढ़ना है कने जानकारी देनी है ना।
1: हाँ देखो हूँ भेंट वार्ता का समझते वादा कने हाँ उन्नत किसान कुशल सिंह के अनुभव सुनाने कि भी शून्य लागत कृषि करते हैं तो कि शून्य लागत कृषि करते हैं तो सुनते हैं इन्हों अनुभव
0: जी।
2: किसान साथियों कार्यक्रम किसान वाणी च अहां दा प्रयास रहंदा कि हर दिन एक नित नवी जानकारी अहां तुहां तक पहुँचाइए चाहे वह अहां दे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा दी गई जानकारी होवे या फिर अहां दे उन्नत किसान बागवान साथियों कन्ने की गई गलबात होवे। उसी कड़ी विच अज एक उन्नत किसान मेरे सोगी जुड़ा करदे हन करदे ने इन्हां कन्ने गलबात। राम राम जी।
3: राम राम
2: जी। अपना नाम दसा।
3: मेरा नाम कुशल सिंह जी।
2: कुशल जी घर कुतू पौंदे तुहां दे?
3: घर बछवाई पौंदे जी।
2: अच्छा ये कुतू होई जगह है?
3: ये थुरला कन्ने होई सर बछवाई पंचायत।
2: अच्छा बछवाई पंचायत है कन्ने थुरला जड़ा सा मेन ग्राम पौंदा?
3: थुरला दे 5 किलोमीटर दूर है ना।
2: अच्छा कन्ने ब्लॉक कन्ने तहसील?
3: 16 बेडू महादेव कन्ने तहसील थुरला।
2: तो खेती बाड़ी करदे तुहां ने?
3: हां जी हां जी।
2: कितनी की जमीन है तुहां वाल जिस तुहां खेती करदे ने?
3: जो लाए इस वक्त कोई 15-20 करनाल।
2: खेती करदे क्या क्या लगांदे तुहां?
3: जिन्या छली लांदे अजकल छली लाईती हो।
2: हां जी।
3: कणक लांदे?
2: हां जी।
3: फिर सब्जियां लांदे दी
2: जिया पिछली? हां जी जेड़ी पिछली जेड़ी फसल ही यहां दी कदे ही रही सा?
3: ठीक रही सर खरी ही कणक।
2: प्राकृतिक विधि कन्ने करदे खेती?
3: हां जी हां जी प्राकृतिक विधि कन्ने।
2: त जिया हुन तुहां दस्या कि तुहां छलियां लगाई तियां सोकी सब्जियां लगाई तियां और धान वगैरा दी तैयारी है पूरी?
3: धान नहीं धान हां ने ज्वार बड़ी हुंदी सर।
2: अच्छा ते जेड़े तुहां दे ये जेड़े बीज हुंदे कौन बी बांधे तुहां अपने घरे दे बी है नहीं?
3: देसी बी बनने जी देसी कने कुछ आत्मा प्रोजेक्ट आले दिन दे आहां सह लांदे देसी बी।
2: प्रदर्शनी प्लॉट जेड़े लगदे हैं ना छलियां कौन बाईयां तुहां चिटियां की लाल?
3: लाल
2: एक देसी बीज लाल भी होंदा ना छलियां दा?
3: हां जी हां जी बस ते सह लांदे आहां।
2: अच्छा अपना घरे दा बी रखिया तुहां हल्ली ना? दिक्खा बड़ी अच्छी गल है दिक्खा आहां जो जेड़े से अपने जेड़े पुराने जेड़े बीज हैं ना जियां कोई सब्जियां भिंडियां दे होइए या धाना दे पुराने दे पुराने बी हे कने जियां कोई कणका दा बी है इससे सोगी जियां तुहां छलियां दा बी भी अपना रखिया ना? अच्छा छलियां
3: बैला ने?
2: अच्छा बैल भी रखी हल्ली
3: जी बैला ने बांधे हां।
2: दिक्खा वे ए भी एक बड़ी अच्छी गल है कि तुहां हल्ली भी जड़ा सा बैला ने खेती करा करदे लेकिन अहां हुण अगर अहां दिखदे हां तो दिक्खा बैल तां तूं जड़े सा घुमा करदे लेकिन कोई एक जमाना हा जालू की एक खरे पाए जड़ा से दांत चलो बिकी जंदा हा कने तोपने पर भी दांत नहीं मिलते हे
3: जी हुण तां बिल्कुल ही नहीं मिलला दे हुण तां वारे बड़े भारी चढ़े
2: ते दांत तुहां अपने घरे दे पाले हे कि मुल्ले खरीदे हे?
3: नहीं नहीं अपने ही पाले सर।
2: है ना दिखा भाई अहां दे जिले कांगड़े दी अगर अहां गल करन तां इत्थू दिखा कितनियां बैलाईयां मंडियां लगदियां ही जालू सीजन लगदा हड़वाई है ना इतने सारे व्यापारी जेड़े से आउंदे हे ते जियां हुण बरसाती आलियां जिहड़ियां तुहां सब्जियां कने फसलां जियां बाही तियां हन तुहां कने गलबात करदे न अहां जियां प्राकृतिक खेती दी कितने साल होई गए प्राकृतिक खेती तुहां जो करदे?
3: जो प्राकृतिक खेती करदे कोई 4 साल होई है सर।
2: तो अंज कुदू ते ए प्रेरणा मिली कि हुन रसायन छड्डी के जेड़ा से हुन कुछ प्राकृतिक खेती
3: की हमदी ट्रेनिंग हुई थी हमदी आत्मा प्रोजेक्ट आले दी सुभाष पालकर जी ने ना।
2: अच्छा
3: तिथिया कन्ने कन जुड़े वीर साहिवाल गां दी हरियाणा ते इस तिते गां सिखदे सिखदे ते हिसाबे लगे करना फिर। हां जी
2: त खरे इदे जेड़े रिजल्ट हैं खरे मिलदे तो हां जो उत्पादन
3: अच्छे अच्छे रिजल्ट अच्छे चलो हां कणक त नहीं दे पाए ना बे।
2: हां जी प्रति किलो यानी कि 6000 रुपया क्विंटल है इस बार
3: दिखा
2: इतने वधिया भा लेकिन अगर दुए पहा गल करिए दिखा 2200-2300 रुपया कणक जेड़ी से बिका कर दी लेकिन जिन्हें प्राकृतिक विधि कन्ने लगाई ही दिखा तिन्हें जो इतने तगड़े जी
3: जी हां ना 3 क्विंटल दित्ती थी ना 18-18000 रुपया मिली है।
2: हां दिखा इससे और ज्यादा और के चाहिए था
3: कने
2: इससे भी जड़ा से अहां दे अखे बखे जड़े अहां तो हां जो सोना करते हैं ये दिना ये दिखियो कणक बिकदी तेने भी जड़ी से प्रेरणा जड़ी से हुन मिलनी है कि नहीं अहां भी जड़ा से यो दिया अनाज उगान है ना त ਤਾਂ ਤੁਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਥੁਰਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਥੁਰਲ ਪਾਲਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ
3: ਸਿੰਚਾਈ ਵਰਸ਼ਾ ਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਸਰ
2: ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ
3: ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ
2: ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖੱਡੇ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਪਾਣੀ ਇਹ ਬਰਸਾਤੀ ਦੇ ਰੁਕਣੇ
3: ਟੈਂਕ ਟੂੰਕ ਛੋਟੇ ਬਣਾਏ ਜਿੰਨਾ ਹਰਿਆਲੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬਣੇ ਥੇ ਚਾਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵਰਸ਼ਾ ਤਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਤੇ ਹੈ ਸਿੰਚਾਈ ਥੱਲੇ ਹੋਈ ਅੰਦਰ ਸਾਫ ਤੇ ਦਾ
2: ਅੱਛਾ ਚੱਕ
3: ਡੈਮ ਵਗੈਰਾ ਬੜੇ ਵਾਟਰ ਸ਼ੈਡ ਦੇ ਥੋੜੀ ਹਰਿਆਲੀ ਰਹਿੰਦੀ
2: ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਬੈਲ ਰੱਖੇ ਹੋ ਬੈਲਾਂ ਸੋਗੀ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਣੇ
3: ਗਾਂ ਰੱਖੀ ਸਾਹਿਵਾਲ
2: ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਵਾਲ ਦੁੱਧ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
3: ₹1500
2: ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਹੈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੈ ₹1500 ਕਿਲੋ ਹੈ ਨਾ
3: ਅੱਛਾ
2: ਵਿਕੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ
3: ਬੋਲਨੇ ਮਤਲਬ ਜੀ ਨਾ ਹੋਲੇ ਹੋਲੇ ਇਸਾ ਦੇ ਚੂਰੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ
2: ਹਾਂਜੀ
3: ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨਾ
2: ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੇ ਸੋਗੀ ਜੀਆਂ ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਵਾਲ ਜਲੂ ਗਾ ਤੁਹਾਂ ਆਂਦੀ ਹੈ

0: बूटे है ना अंबे दे कोई 30 करी ना।
1: हाँ जी
0: कने लीचियां दे है ना कोई 5-7 थी, 5-4 सेबां दे लायो।
1: यानी कि फल जड़े से अपने घरे गुजारा तक ही होंगे, थोड़े बहुत बेची
0: भी। आज नाम बेच भी लेंदे, कोई लीने वाला हो तो बिकी भी आंदे।
1: हाँ, या अपने रिश्तेदार आए हैं या सगे संबंधी हैं, ग्राएं बिच तो दिखा ये मेल भाव होंगे ही है कि अगर आ बार कुछ ऐसे ही कोई अगर कोई फल सब्जी लगी हो तो बंडने की जी सही एक परंपरा ग्राएं बिच।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हुण गोभी ही बाजो, चलो ज्यादा तो नहीं होंगी, पलमा सा ही है, पर अपनी गुजारा ठीक है ना, बेची भी लई 5-10-20 किलो,
1: हाँ जी हाँ जी
0: 50 रुपये किलो।
1: अच्छा अच्छा तो जिया तुह प्राकृतिक विधि कन्नै खेती करते हैं तो जल जिया इस च कोई ऐसा दिखा कोई बीमारियां कीट तो आई जाते कोई भी अगर अहां जो भी बीमारियां लगी जाए फसल जो भी तो प्राकृतिक विधि से कौन कौन ऐसे घटक तुह बनाते हैं जिससे जी कीड़े मकोड़े भगाने वास्ते।
0: हाँ जिया जीवामृत दिंदे पहले,
1: हाँ जी
0: जीवामृत तो देना देना एक ही दिन बाद।
1: हाँ जी
0: फिर जिया अग्नि अस्त्र हुई गया, ब्रह्म अस्त्र हुई गया, हाँ जी। फिर दसपरणी हुई, जिया बड़ा कीड़ा लगी तो दवाई छिड़क दे ना,
1: जी
0: छिड़काव
1: जी
0: करते ही करते ही सर।
1: हाँ जी
0: इधर आप ही बनाते हाँ गोल कने,
1: इसते क्या पूरे जी कीड़े मकोड़े जी बीमारियां से दूर हो जाती हैं फसल।
0: नहीं लगते
1: हाँ जी
0: जिया अग्नि अस्त्र वगैरह देना तो तीते भी जिया सब्जियां बंद तोंदी आईया
1: हाँ जी
0: कीड़े लगा दे अजकल तो शायद थोड़ा कंट्रोल रहा
1: हाँ जी
0: कने, ते सब्जियां खाने का मजा कुछ होर है ना।
1: अच्छा जी इं प्राकृतिक विधि कहना चलो तो हाँ कोई भी अनाज तैयार करते हैं जी तो हाँ सब्जी बेचनी है ता उदे भाव तुम जो से उदे मिली जाते।
0: हाँ जी हाँ जी जिया ले लेंदे कई जिन्हें पता ना इस थ्यूरी दा
1: हाँ
0: ले लेंदे सर। हाँ जिया हूँ गोभी है रेट बाजार 70-80 आ, तो चलो हाँ 50 रुपये देती।
1: हाँ जी
0: हाँ
1: कहना
0: जी
1: देखा अगर हाँ जो एक जी तो हाँ बोलते हैं कि जेड़े समझते हैं जी जो पता है कि प्राकृतिक चीज क्या है
0: हाँ जी हाँ
1: सह
0: जी
1: दूई गल ही नहीं करते सह सीधे तेना जो बस समान जड़ा सह मिलना चाहिए। इससे सोगी जी तो हाँ गलबात की जी तो दस्या कि घर माल बछू भी रखे कोई बकरियां वगैरह नहीं पाली मुर्गियां देसी मुर्गियां भी।
0: पालियां बकरियां भी 2-3 बकरियां हैं ना।
1: अच्छा कौन नस्ल है बकरियां दी
0: ये अपनी है देसी नस्ल ही,
1: दो तीन दिन ज्यादा नहीं पाली है।
0: ज्यादा नहीं होना, अजकल बच्चे पढ़ा देता फिर ही मेन चक्कर सा दिखने का पौंदा।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ सहत है
0: हाँ
1: कहना दिखा बकरी का दुध भी दिखा उसकी बड़ी बड़ी जड़ी से मांग है।
0: हाँ जी हाँ जी
1: हाँ ता
0: कुछ सेल घटी आंदे तां बकरी दुध बड़ा यूज लेंदे लोग।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ
0: हाँ
1: कहना दिखा ये ता हाँ ते ग्राएं बीच ता फिरी भी ये सारिया जिया कुछ आगे दुध है दही पनीर है
0: जी
1: ये
0: हाँ जी
1: मिली भी आंदा कहना दिखा जिया कोई कोई तो जिया अगर अहां दूर शहर बाजारा की गल करना तेना जो ये सारा समान लेने जिया ग्राएं बीच आना पौंदा। कुशल जी अहां दी जिहड़ी बेरोजगार युवा पीढ़ी है ना दिखा नौकरियां पिछे तां तूं घूमा करदे न इहदे बावजूद इहनां वल अपनी दिखा खरियां खुलियां जमीनां भी जिहड़ियां सै हन उस नौजवान युवा पीढ़ी जो तुहां क्या संदेश देना चाहंगे कि सै भी।
0: थोड़ा दे हम
1: हाँ
0: दी
1: जी
0: सरकार पर मंथन करे ना, तो हम दे युवा वर्ग जे से हटी होने वापस, जिन्हें सब्सिडी वगैरह दे दे खेत आम तो दे आरडी दा राशन मिला डिपुआं दे बंद हुई है ना,
1: हाँ जी हाँ जी
0: सारे कमाना सर ही ना, क्योंकि सारे निठल्ले हुई है ना, कमाई राजी नहीं।
1: हाँ जी
0: युवा पीढ़ी बीच जिन्हें हूं देखा 60 रुपये कणक बिकी, इस बात से जरा की हटी हुआ युवा भी थोड़ा इना गांह ते गांह दुगनी आए जे सरकार बोल रही तो यही है इन्हों का लक्ष्य।
1: बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी
0: हाँ
1: हाँ
0: जी क्योंकि ज्यादा कितना खेत जे इनता एक खिले पी इस वक्त
1: हाँ जी हाँ देखा दिनों दिन जड़े से खेत खिले पवा दे
0: खिले खिले खिले, हर बंदा शहरे पिछे चले, शहरे पिछे शहरे पिछे। हाँ जी
1: जितनी दिखा खेती बिच नई नई तकनीक नए नए बीज
0: हाँ जी
1: कृषि
0: हाँ जी
1: उपकरण होवा दे उतनी हर साल खेती जड़ी से घटा कर दी है।
0: घटा दी सर।
1: हाँ तो दिखा
0: हाँ गांव दे
1: ता
0: सियाणे बुजुर्ग गए पहले दूर दूर भाई हुंदे खेती बाड़ी आ,
1: हाँ जी
0: अच्छा ते तू रुके रहंदा हप ए जानवर
1: हाँ जी हाँ जी जी
0: हुण घरे नेड़े बाद दे 4-10 माणू एक पट्टी बाद देता है घरे होना ते जानवरां भी।
1: जी हाँ जी कुल मिलाई के यहाँ ये बोल सकते हैं कि कोशिश जड़े से सारे करा
0: हाँ
1: अपने
0: जी
1: घरें अपने माँ प्यो जो भी जड़ा सा थोड़ा आते ना जो सहारा दिया कि
0: हाँ
1: जमीन
0: जी हाँ
1: जड़ी
0: जी
1: से खिली नहीं छड़नी है अहाँ भी सहयोग जड़ा से पूरा करके बाने कमाने च।
0: हाँ
1: जी कुशल जी तुहां अपने खेतीबाड़ी दे अनुभव अहाँ कन्ने साझा किते अपना कीमती समय तुहां अहाँ जो दिता तुहां दा बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
2: किसान भाइयो ता ए थे उन्नत किसान कुशल सिंह ता तुहां इना दे अनुभव सुने कि भी शून्य लागत कृषि किया ये कर देना
3: बिल्कुल
2: ता इस दे बाद हाँ तुहां जो फिर ते सुनाना एक प्यारे दयाल लोग।

किसान भाइयों, इस प्यारे दे लोकगीत दे कन्ने ही किसान बाणी कार्यक्रम हुण इत्थों मुकदा। तां जाणे ते पहले दस दईए कार्यक्रम च तकनीकी सहयोग रिहा सुनील कुमार, कार्यक्रम प्रस्तुति जतिंदरपाल सिंह, कन्ने हुणा दुनी उहदे अनुमति। अच्छा जी, जय हिंद।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने पर लगातार कार्य कर रही है सरकार। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण का चुनाव कल, सभी तैयारियां पूरी। पंचायत चुनावों में कांग्रेस और भाजपा ने किए अपनी अपनी जीत के दावे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, पंचायती राज चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल कहना पूरी तरह गलत। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, ऊना में पारा 44 डिग्री के पार, कल वर्षा और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण की दिशा में लगातार कार्य कर रही है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री आज शिमला जिला के नेरवा में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान विद्यार्थियों के सवालों के जवाब में कहा कि हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी CBSE स्कूल खोले जाएंगे ताकि गांव के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों को परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं, लेकिन विधायक बनने की परीक्षा के लिए कोई तैयारी नहीं करवाता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि भविष्य में बादल फटने की घटनाएं केवल हिमाचल तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में इन घटनाओं के बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि ये खुलासा केंद्र सरकार द्वारा करवाए गए एक अध्ययन में हुआ है। मुख्यमंत्री शिमला में नगर निगम के पूर्व उप महापौर टिकेंद्र पंवर द्वारा संपादित पुस्तक सिटी लिमिट्स द क्राइसिस ऑफ अर्बनाइजेशन के मौके पर बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए विकास को आगे बढ़ा रही है।
1: हमारे पास भगवान ने सब चीजें दी, प्राकृतिक सौंदर्य दिया है, पानी दिया है, हवा दी। हमारी 90% लैंड पहाड़ों से गिरी है, 90% हमारी पॉपुलेशन गांव में है, अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा हो, और 2040 तक हिमाचल प्रदेश की 50% पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन में रहनी शुरू कर। अब एक जो हमारी अर्बन है, अब सिटी बिगड़ चुकी है, और जो सिटी बनाने जा रहे हैं उसको हमने कैसे सोचा? एक तो बिगड़ी सिटी जिसको आपने और हमने पूर्वजों ने बना दिया।
0: प्रदेश में कल 28 मई को पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। मतदान के लिए चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। मतदान के तुरंत बाद पंचायतों में प्रधान, उप प्रधान और सरपंचों के लिए पड़े वोटों की गिनती होगी, जबकि जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए मतदान की गिनती 31 मई को होगी। 31 मई को ही प्रदेश के 4 नगर निगमों सोलन, मंडी, पालमपुर और धर्मशाला के लिए हुए चुनाव की मतगणना भी होगी। पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण के चुनाव के लिए कल 1274 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के तीसरे और आखिरी चरण में 30 मई को 1187 पंचायतों में मतदान होगा। इस बीच कल होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज उम्मीदवारों ने भीषण गर्मी के बावजूद राज्य के विभिन्न हिस्सों में घर घर जाकर वोट मांगे और अपनी जीत पक्की करने का प्रयास किया। प्रदेश में बीते रोज हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के पहले चरण के नतीजे घोषित होने के बाद अब प्रदेश के दोनों प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी जीत के दावे करने में जुट गए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज मंडी में दावा किया कि पंचायत चुनावों में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिली है, जबकि कांग्रेस की करारी हार हुई है। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि पंचायत चुनाव के पहले चरण में प्रदेश की लगभग 75% पंचायतों में भाजपा समर्थित प्रधान, उप प्रधान और सरपंच चुने गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने अब इस सच्चाई को अच्छी तरह से समझ लिया है कि यदि गांव और क्षेत्र का वास्तविक विकास करना है तो भाजपा के साथ ही आगे बढ़ना होगा। जयराम ठाकुर ने भाजपा को जनादेश देने के लिए मतदाताओं का आभार भी जताया। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने भी पंचायत चुनावों में पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में राज्य की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में जनादेश दिया है। विनय कुमार ने ये भी कहा कि प्रदेश के लोगों ने भाजपा को पूरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्यों के चलते जिस तरह से पंचायत चुनाव में कांग्रेस को समर्थन मिला है, उसी तरह अगले साल विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस फिर से जीत कर सत्ता में लौटेगी। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को विधानसभा या लोकसभा की तरह सत्ता का सेमीफाइनल बताना पूरी तरह गलत है। विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि पंचायत चुनाव व्यक्तिगत क्षमता, स्थानीय जन समर्थन और उम्मीदवारों की मेहनत के आधार पर लड़े और जीते जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पंचायत चुनावों के अभी 2 चरण होने बाकी हैं और पूरी तस्वीर सामने आने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।
2: अधिकतर जो इसमें चुनावों में, चाहे वो पंचायत के प्रधान हैं, चाहे वो जिला परिषद के हैं, चाहे वो हमारे उप प्रधान है, मैक्सिमम प्रधान जो है वो किसी पार्टी लाइन पे जीत के नहीं आते हैं। अभी तो क्योंकि फर्स्ट फेज इस चुनावों का हुआ है, 2 फेज अभी और इसके होने हैं अगले 2 दिन के अंदर, उसके बाद इसमें स्थिति स्पष्ट होगी। मगर मैं आपको ये पूरी मजबूती के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके से नगर पंचायतों में, नगर निकायों में अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का रहा है, उसी तरीके से जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव का परिणाम भी आना है 4 नगर निगमों का, वहां पे भी कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहेगा।
0: प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक हर व्यक्ति अपनी और अपने परिवार की गणना स्वयं कर सकेगा। स्वगणना के लिए डिजिटल तकनीक का सहारा लिया जाएगा। राज्य जनगणना कार्य निदेशालय के अनुसार स्वगणना से जनगणना का काम तेजी से और पारदर्शी ढंग से हो सकेगा। स्वगणना में डिजिटल तकनीक के प्रयोग से प्रदेशवासियों को अपनी गणना और जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। इसके बाद उन्हें स्वगणना आईडी नंबर मिलेगा। ये नंबर जनगणना कर्मी के घर घर सर्वेक्षण करने के दौरान उन्हें बताना होगा। ऐसा करने से स्वगणना के दौरान पोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी स्वतः ही जनगणना कर्मी के मोबाइल ऐप में प्रदर्शित हो जाएगी और इसकी पुष्टि भी हो जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि धर्मशाला में आयोजित आईपीएल मुकाबलों ने हिमाचल, खासकर धर्मशाला, कांगड़ा, मैक्लोडगंज, पालमपुर और आसपास के क्षेत्रों की स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा प्रोत्साहन दिया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल में क्रिकेट को नई पहचान देने के साथ साथ खेल पर्यटन को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से न केवल प्रदेश की आर्थिकी को बल मिलता है बल्कि राज्य की संस्कृति के प्रचार प्रसार को भी बढ़ावा मिलता है। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने आज भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल से समीरपुर स्थित उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने इस मौके पर प्रोफेसर धूमल को मोदी युग में भारत का सशक्तिकरण नामक पुस्तक भी भेंट की। सिकंदर कुमार ने इस मौके पर कहा कि प्रोफेसर धूमल का राजनीतिक जीवन संगठन, सुशासन और जनसेवा का प्रेरणादायक उदाहरण रहा है। सिकंदर कुमार ने कहा कि प्रदेश के विकास, भाजपा संगठन के विस्तार और आमजन के हितों की रक्षा में प्रोफेसर धूमल का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। इस मौके पर संगरोह पंचायत के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों ने भी प्रोफेसर धूमल से शिष्टाचार भेंट की। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। खासकर राज्य के मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन और मंडी में लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। ऊना जिला में तापमान के 44 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाने के चलते छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से हल्के रंग के कपड़े पहनने, शरीर में पानी की कमी न होने देने और 12 से 4 बजे के बीच अनावश्यक रूप से घर से न निकलने की सलाह दी है। सिरमौर से हमारे संवाददाता सतीश शर्मा के मुताबिक हीटवेव से अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अत्यधिक गर्मी के कारण राज्य के मैदानी क्षेत्रों में बाजारों से रौनक गायब हो गई है। हालांकि शिमला, मनाली और डलहौजी जैसे शहरों में गर्मी से बचने के लिए पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 28 मई से हिमालय क्षेत्र में ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से 28 मई को राज्य के 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में ओलावृष्टि, अंधड़, आसमानी बिजली गिरने और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने पर लगातार कार्य कर रही है सरकार। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के दूसरे चरण का चुनाव कल, सभी तैयारियां पूरी। पंचायत चुनावों में कांग्रेस और भाजपा ने किए अपनी अपनी जीत के दावे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, पंचायती राज चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल कहना पूरी तरह गलत। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, ऊना में पारा 44 डिग्री के पार, कल वर्षा और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी प्रसारित किया जा रहा था। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं देश गान।

0: आकाशवाणी शिमला से अभी आप सुन रहे थे देश गान। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 8 बजे हैं, प्रस्तुत है विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की गाई इस गजल के साथ।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का मनोरंजन संसार छुए सबके दिल के तार।
2: सुबह से रात तक रहता है हमारे अंग संग, इसीलिए तो रंगे हैं हम इसके रंग।

0: कहानी। छूटे ना हर दिन कोई जानकारी, इसीलिए तो है हर किसी को प्यारी।
1: भक्ति संगीत के साथ करता है भाव विभोर, बांधे हुए है सबके दिल की डोर।
2: ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
0: सदाबहार गीतों का संगम, थामे है हर दिल की धड़कन।
1: फिर आती युवाओं की बारी, मनोरंजन के साथ मिलती हर जानकारी।
0: किसानों का तो नाता जुड़ा इससे, सुनते जानकारियां और नए नए किस्से।
1: महिलाओं का भी अपना संसार, लेकर आती हैं घर परिवार।

0: मधुर है ये मीठी वाणी, नाम है इसका आकाशवाणी।
1: प्यार करते हैं हम तुम्हें इतना।
2: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस।

0: वो जो बैठी,
1: कौन
0: वो जो बैठी है? वो नहीं, वो जो उनसे परे बैठी है।
1: देखो बड़े भैया की नजर कहाँ चली गई, आशिक होने लगा है। क्या है?
0: वो जो बैठी है।
1: कौन?
0: वो नहीं, वो जो उनसे परे बैठी है। कोई जाके उनको कह दो।
1: क्या कहूँ?
0: कोई जाके

अभी आप सुन रहे थे विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:30 होने को हैं। लीजिए सुनिए देश गान।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या और 9 बजे न्यूज़ @9 रिले किए जाएंगे।

0: भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित। यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
3: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
3: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुँचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश वासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक PDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Centre approves extension of Sarthak PDS scheme to modernise public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heat wave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and

कौसर मुनीर भारतीय सिनेमा की जानी मानी गीतकार और संवाद लेखक हैं। कौसर मुनीर का जन्म मुंबई के बांद्रा में हुआ था। सेंट सेवियर कॉलेज मुंबई से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 1997 में उन्होंने फिल्म अभिनेता निर्मल पांडे से विवाह किया, जो सफल नहीं रहा। बाद में 2001 में उनका विवाह नवीन पंडिता से हुआ।

कौसर मुनीर ने छोटे पर्दे की लोकप्रिय धारावाहिक जस्सी जैसी कोई नहीं के लिए लेखन कार्य से अपने करियर की शुरुआत की। आपको बता दें कि कौसर मुनीर विख्यात उर्दू उपन्यासकार सलमा सिद्दीकी की पोती हैं।

एक ही कलाकार कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है विख्यात गीतकार कौसर मुनीर पर। कौसर मुनीर ने टशन, अनजाना अनजानी, जय हो, इश्क जादे, एक था टाइगर, धूम थ्री, बजरंगी भाईजान, यंगिस्तान, डियर जिंदगी जैसी फिल्मों के लिए गीत लिखे।

इंग्लिश विंग्लिश फिल्म के लिए कौसर मुनीर ने भाषा सलाहकार के रूप में भी कार्य किया। वर्ष 2021 में ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप का आधिकारिक राष्ट्रगान खेल जियो खेल से प्यार करो कौसर मुनीर की ही रचना है। आशा करते हैं आगे भी कौसर मुनीर के लिखे कुछ उम्दा गीत हमें सुनने को मिलेंगे।

इसी गीत के साथ आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:30 होने को हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: चर्चा का विषय है।
1: सीमाएं सिर्फ नक्शों पर खींची गई रेखाएं नहीं होती, ये किसी देश की पहचान होती हैं, उसकी सुरक्षा, उसकी संस्कृति और उसके भविष्य की सबसे मजबूत दीवार होती हैं। लेकिन जब इन्हीं सीमाओं को पार कर अवैध घुसपैठ देश के भीतर प्रवेश करती है तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं रह जाता, सवाल उठता है जनसंख्या संतुलन का, सामाजिक ढांचे का, रोजगार, संसाधनों और राष्ट्रीय पहचान का। क्या बदलती जनसंख्या तस्वीर भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को प्रभावित कर रही है? क्या सीमाओं से शुरू होने वाली ये चुनौती अब शहरों और गांवों तक पहुंच चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले वर्षों में ये भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए गंभीर संकट भी बन सकती है? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है। मैं हूँ आनंद श्रीवास्तव। हमारा आज का विषय है जनसंख्या परिवर्तन का सामाजिक आर्थिक ढांचे पर प्रभाव। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर और सीमा सुरक्षा की चुनौतियों को बेहद करीब से देखने वाले पूर्व बीएसएफ प्रमुख और असम के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह। आप दोनों का

0: कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है
1: जी। नमस्कार।
2: नमस्कार
0: प्रकाश जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय भारत के सामने है वो दूसरे देशों से आए लोग हैं। दो तरह के लोग हैं, एक शरणार्थी हैं और दूसरे घुसपैठिए हैं। इसको लेकर जो हमारे बॉर्डर स्टेट हैं वहां पर कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है, क्या लगता है? चूंकि आप खुद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख रह चुके हैं, असम एक ऐसे राज्य के आप डीजीपी थे जहां पर इस तरह की बहुत बड़ी समस्या है, कैसे देखते हैं आप इसे भारत के नजरिए से?
2: देखिए, भारत के नजरिए से तो बहुत साफ है और अलग अलग समय पे बड़े बड़े हस्तियों ने इस विषय पे रोशनी डाली है कि ये देश की सामाजिक ढांचे के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, तीनों ही दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठिए जो है आज से नहीं, ये स्वतंत्रता के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से ही शुरू हो गया था, पर यह है कि इसकी प्रक्रिया अगर हम 1971 के बाद देखें, 1971 में बांग्लादेश बन गया तो उसके पहले जो कुछ उत्पीड़न हुआ था पाकिस्तान आर्मी द्वारा, उस समय आप जानते हैं लाखों की तादाद में बांग्लादेशी आए थे और यहाँ पे उन्होंने शरण ली थी। बाद में बहुतों को वापस भेजा गया, कुछ गए, शायद कुछ नहीं भी गए होंगे, परंतु 1971 के बाद भी ये समस्या ऐसा नहीं है कि इसका समाधान हो गया। हम लोग ये समझते थे कि अब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट हो गया और भारत के सहयोग से हुआ है तो अब हिंदू वहां पे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे, मुस्लिम तो वहां पे रहेंगे, परंतु बहुत सारे कारण ऐसे हुए जिसकी वजह से ये घुसपैठ की समस्या बराबर बनी रही। सबसे बड़ा कारण जो था आर्थिक था, वो बांग्लादेश तो बन गया पर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो इतनी बड़ी जनसंख्या को सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके, सबको रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके। नतीजा ये हुआ कि आर्थिक कारणों से बहुत भारी संख्या में 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद भी यहाँ पलायन होता रहा, लोग आते रहे सीमा पार से और जितने बॉर्डरिंग स्टेट से वहां पे बढ़ते गए। इस समस्या से सारी सरकारें अवगत थी। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के बाद 4 टास्क फोर्सेज बनी थी बॉर्डर की समस्या देखने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी की, डिफेंस की, इंटेलिजेंस की, और चारों टास्क फोर्स बड़े हाई पावर बॉडीज थी। इसमें एक बॉर्डर मैनेजमेंट वाली जो बॉडी थी वो माधव गोड बोले उसका नेतृत्व कर रहे थे, जो भारत सरकार के गृह सचिव थे और बड़े योग्य आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो अगस्त 2000 में प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में ये लिखा कि हर वर्ष करीब 3 लाख बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और इस समय वर्तमान में 2000 में उनकी संख्या 1,50,00,000 है। ये 2000 की बात है, उसके बाद भी बढ़ता ही रहा होगा। आज की तारीख में 3 करोड़ हो गया हो, 3.5 करोड़ हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता। अलग अलग समय पे भारत सरकार ने इसका अलग अलग एस्टिमेट दिया है। 2001 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने चारों टास्क फोर्सेज के रिपोर्ट को इवेल्युएट किया था, उसका आकलन किया था और इन्होंने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठियों को होना देश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर बाद में आ जाइए 2005 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया, सोनोवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था एक 2005 में, उसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज ए डेमोग्राफिक एग्रेशन और एक्सटर्नल एग्रेशन में इसको उन्होंने क्लासिफाई किया था, ये एक्सटर्नल एग्रेशन है ऑन इंडिया, और कहा था इसके लिए भारत की संप्रभुता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये समस्या आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। और अगर आप और पहले जाना चाहें तो 1998 में जब जनरल सिन्हा आसाम के राज्यपाल थे, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 8 नवंबर 1998 में एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें लिखा था कि असम में जो घुसपैठ हो रही उससे जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहे हैं, हो सकता है कि कालांतर में, मतलब बहुत कुछ वर्षों बाद, बांग्लादेश ये मांग करे कि असम के जो सीमावर्ती मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश हैं इन्हें बांग्लादेश में मिला दिया जाए क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो ये तो स्थिति है, ये आज से नहीं, कम से कम 1998 से बराबर चेतावनी हमको मिल रही है। अब 26-27 साल हो गए हैं, वर्तमान सरकार को इस बात का श्रेय तो हम देंगे कि इन्होंने इस समस्या की नोटिस ली है और मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में कहा है कि एक डेमोग्राफिक कमीशन बनाएंगे तो इस समस्या को गंभीरता से उसको स्टडी करके अपने रिकमेंडेशन देगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई अवसरों पर कहा है कि घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
3: जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है, देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है, उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें, उनके सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
0: जी हाँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और अब न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवेलकर सेवानिवृत्त समिति के अध्यक्ष होंगे। जनगणना आयुक्त के अतिरिक्त 3 विशिष्ट विशेषज्ञ श्री दुर्गा शंकर मिश्रा सेवानिवृत्त IAS, श्री बालाजी श्रीवास्तव सेवानिवृत्त IPS और डॉक्टर शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी समिति के सदस्य सचिव होंगे। ये समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आवश्यकता पड़ने पर गृह मंत्रालय समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त 2025 को घोषणा की थी उच्च स्तरीय कमेटी की, अब उसका गठन हो गया है और घुसपैठियों के बुरे दिन की शुरुआत भी इसी के साथ हो गई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
1: भारत सरकार ने यह तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए।
0: प्रफुल्ल जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि सीमावर्ती जिलों और देश के कुछ चुनिंदा महानगरों में अचानक आई इस जनसांख्यिकी बदलाव के संकेत जो मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को ये प्रभावित कर रहा है?
4: जी निश्चित, वैसे तो ये अचानक नहीं आया है, लेकिन समस्या के रूप में अचानक उसको अभी देखा जा रहा है। जैसे हमने हाल ही में देखा नोएडा में अचानक से एक इरप्शन हुआ मूवमेंट के रूप में, और बहुत सारे सोसाइटीज में क्रिमिनल एक्टिविटीज में जब भी नाम आता था तो शुरू में इसके बारे में चर्चा जरूर होती थी लेकिन कोई एक्शन नहीं होता था। हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, अभी IMDT एक्ट 1983 में बना, उस एक्ट का नाम ही था इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाई ट्रिब्यूनल। इसका मतलब पहली बार तो समस्या उस समय से शुरू कम से कम मानी गई कि इलीगल माइग्रेंट्स है। अब इसमें दो तरीके के अलग अलग थे, एक जो 1971 से पहले या 1971 के बाद, फिर 1990 के दशक में भी 92 के बाद खास करके अयोध्या के आंदोलन के रिएक्शन में वहां पे जो मंदिर गिरा गया, और केवल हिंदू ही नहीं हिंदू बुद्धिस्ट वहां की सो कॉल्ड जिनको हम माइनॉरिटीज बांग्लादेश के संदर्भ में कह सकते हैं, ऐसे लोग भारत में उनको शरण लेनी पड़ी जिनके लिए ये जैसा प्रावधान करना पड़ा। लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसने इलीगल इमिग्रेंट्स की या इलीगल माइग्रेशन की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इसके आधार पर खड़ी कर दी। प्रकाश सिंह जी ने जैसे बताया कुछ कारण तो पर्यावरणीय कुछ कारण आर्थिक भी रहे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं आप यदि इंटरनेशनल इंडेक्स निकाल लो तो बहुत सारे पैरामीटर्स में असम के सीमावर्ती जिले या बंगाल के सीमावर्ती जिले उनकी तुलना में बांग्लादेश की इकोनॉमी उस समय बहुत अच्छा कर रही थी, तो ऐसे में उनको क्या माइग्रेट होने की जरूरत पड़ी? मुझे लगता है कि इसके पीछे आर्थिक और पर्यावरणीय एनवायरमेंटल कारणों की वजह से, क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे हैं बांग्लादेश के जहां पे बाढ़ की स्थिति आती है और वहां से माइग्रेशन होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक सोची समझी राजनीति थी, एक सोची समझी रणनीति भी थी। काउंटरफिट करेंसी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, जब कालियाचक की पुलिस चौकी को जलाया गया था बंगाल में तो उस समय उजागर हुआ था, ये साफ साफ दिखाता है। या इलीगल जो आर्म्स का ट्रेडिंग है उसका एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग का ये एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है। यही रास्ता है जहां म्यांमार से बांग्लादेश में गए हुए रोहिंग्या रेफ्यूजीज भी सीधे आकर उसी रूट से कोई जम्मू कश्मीर तक कोई हैदराबाद तक पहुंच गया। वो यदि रेफ्यूजी थे तो वो वहीं पे शरण ले सकते थे, उनको जम्मू कश्मीर तक जाने की क्या जरूरत थी? किसने पहुंचने के लिए उनको मदद की? उनके कार्ड्स भी बन जाते थे वहां, बॉर्डर क्रॉस करने से पहले उनको सारे आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स बनाने की प्रक्रिया एक चलाने का प्रयास शुरू हुआ, और उसके बहुत सारे नेटवर्क भी भारत के अन्य शहरों से एक्सपोज हुए। क्या हुआ दुर्भाग्य से 1980 के बाद मुझे याद है उस समय ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पार्लियामेंट में था 2005 में शायद, और उस समय वो लेफ्ट गवर्नमेंट को और बुद्धदेव भट्टाचार्य को घेर रही थी और उस समय वो पूछ रही थी कि कब तक इन इलीगल माइग्रेंट्स को वोट बैंक बनाकर अपने लिए पोसोगे। दुर्भाग्य से वही ममता बनर्जी बाद में वही नीति आगे बढ़ाने लगी। तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है, वहां की सांस्कृतिक स्थिति खराब होती है, वहां की रिसोर्सेस पर अतिरिक्त भार पैदा होता है और ये इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा भी मिलता है। तो एक समग्र दृष्टि से आंकड़े अलग अलग होंगे, क्वेश्चन ये है कि पहली बात किस कारण से इसको बढ़ावा मिला, दूसरा उसको रोकने की, तीसरा जो भारत में आ गए हैं उनको आइडेंटिफाई करने की। तो डिटेक्शन इज द फर्स्ट स्टेज, एक्सेप्टेंस एंड डिटेंशन जब तक डिटेक्ट नहीं होंगे उसके बाद तो बाकी सारी प्रोसेस आएंगी कि उनको वोटर्स लिस्ट से डिलीट करना है या डिपोर्ट करना है, ये तो बाद की स्टेज है। उनको वर्क परमिट्स भी दिए जा सकते हैं, लेकिन कम से कम आइडेंटिफाइड हो कि विदेशी मूल का नागरिक है, बिना पासपोर्ट के आया है और हमारे पास उसका एक ठोस डेटा है। और पूरे विश्व भर में ये होता है, उसमें भारत को अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमने यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दो अलग अलग बॉर्डर पार्टीशन के बाद एक्सेप्ट किए हैं तो वैश्विक नियमों के अनुसार उनको भारत में आना है तो वीजा लेकर ही आना चाहिए, लीगल तरीके से ही आना चाहिए, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन उसका रास्ता नहीं हो सकता। तो इसके नेटवर्क को डिसमेंटल करना ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भी एक महत्वपूर्ण विषय है और मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो समिति बनी है वो उस दिशा में एक साल के अंदर समग्र रिपोर्ट भी देंगे और इसके आधार पर नीति भी बनेगी।
0: जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि शरणार्थी और घुसपैठियों को अलग अलग तरह से देखना चाहिए क्योंकि दोनों के साथ अलग तरह की चुनौतियां हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
5: शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों को एक पेज पर रखकर नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे संविधान को जानते हैं, जो हमारे इतिहास को जानते हैं, हमारे देश की राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, उन्होंने कम से कम ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है, घुसपैठ कर आते हो, अलग अलग उद्देश्यों से आते हो तो आपको जरूर घुसपैठी का लेबल लगेगा और वो लगाना चाहिए शासन में। फिर कुछ लोग दलील करते हैं कि अगर वो भारत में ही रहना चाहते हैं तो हम क्यों सीमित करते हैं, कुछ सीमित नहीं करते हैं। इसके लिए भी कानून है, किसी भी धर्म का व्यक्ति एप्लीकेशन करे और एप्लीकेशन करके वैध तरीके से पासपोर्ट लेकर वीजा लेकर आए, हम उनके क्रेडेंशियल देखकर उनको नागरिकता देंगे, ये रास्ता खुला ही है। मगर आप अवैध तरीके से घुसपैठ करोगे तो सीमाएं पोरस नहीं हो सकती, सीमाओं से घुसपैठ नहीं होनी चाहिए और उनको संभालना भी चाहिए।
0: प्रकाश जी, चूंकि इन चुनौतियों को आपने काफी करीब से देखा है और अक्सर देखा जाता है कि सीमा पार करने के बाद जो घुसपैठिए हैं वो स्थानीय आबादी में घुल मिल जाते हैं, सुरक्षा बलों और स्थानीय राज्य पुलिस या खुफिया एजेंसियों के बीच जो तालमेल है उसको आप कैसे देखते हैं इस समस्या के निराकरण में?
2: देखिए, ये तालमेल तो बहुत जरूरी है, पर मेरा अपना अनुभव यह है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज है अगर वो डिटरमिंड है तो इसका बहुत तरह से उपाय है। मैंने एज IGBSF पंजाब कुछ ऐसा काम किया है जिसको 25 साल तक तो उसको गोपनीय रखा मैंने, उसके बाद उसकी किताब में मैंने खोल के रख दिया। बहुत सारे भारी बांग्लादेशी जो थे, भारी मुसलमान बांग्लादेश से चलते थे और वो पंजाब में आ जाते थे और पंजाब में गुरुद्वारों में लंगर खाते थे, फिर जब उनको मौका मिला तो बॉर्डर पार करते थे। अब मेरे जाने के पहले BSF क्या करती थी, उसको बॉर्डर पे रोकती थी, उनको पंजाब पुलिस को हैंडओवर करती थी, पंजाब पुलिस दो चार दिन रखते थे, उसके बाद कहते थे हम आतंकवाद से लड़ें कि इनको कलकत्ते पहुंचाएं, ये छोड़ दो इनको, फिर थोड़े दिन बाद फिर वो वापस जा रहे हैं। तो मैंने अपने जिम्मेदारी पे बिना किसी होम मिनिस्ट्री के सैंक्शन के, चिदम्बरम साहब से जब मैंने पूछा तो उनका यू विल बी डूइंग दिस एट योर ओन रिस्क, आई कैन नॉट परमिट दैट ऑफिशियली, मैंने अपने कहा जितने लोग हैं इनको अपने BSF के कैंप्स में रात भर रखो और जब अंधेरी रात हो तो इनको सीमा के पास से इनको पाकिस्तान भेज दो। मैंने कम से कम 25-30,000 आदमी तो भेज दिए। इसका उपाय हर आदमी अपने लेवल पे काम कर सकता है। मैंने पर इसका ढिंडोरा नहीं पीटा, कोई इनाम नहीं मांगा, इसका ढोल नहीं बजाया, चुपचाप ये काम हो गया। फिर 25 साल बाद मैंने कहा कि मैंने इस तरह का काम मैंने किया था। पर यह है कि अभी भी इस समस्या का देखिए कुछ निदान हमें ढूंढना पड़ेगा। कुछ सुझाव तो गोडबोले साहब ने अपनी कमेटी की रिपोर्ट में दे रखा है, मैं कहूंगा कि उस रिपोर्ट को फिर से अध्ययन किया जाए सरकार द्वारा और जिन समस्याओं के लिए डेमोग्राफी कमीशन बन रहा है उन समस्याओं पे गोडबोले साहब ने बहुत गहन चिंतन किया है। इसके अलावा देखिए अभी जैसे प्रफुल्ल जी ने कहा उनको हमें डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करके उसके बाद उनको रिपोर्ट करना है। अब डिपोर्टेशन में दिक्कत आ सकती है, बांग्लादेश उसको नहीं मानेगा तो उसका क्या करना होगा ये हमें बाद में देखेंगे। पर अगर मान लीजिए एक संख्या कोई आपने रखी है जो होल्डिंग सेंटर्स बनाए हैं, उनको कहिए कि भाई अगर तुम हिंदुस्तान में रहना है तो हम तुम्हें रहने देंगे, पर तुम्हें अपना सिटीजनशिप कार्ड या आधार कार्ड तो सरेंडर करना पड़ेगा और तुम्हें एक बांग्लादेश का एक कार्ड दिया जाएगा कि तुम बांग्लादेश के नागरिक हो, इस देश में तुम्हें 2 साल रहने की और काम करने की इजाजत दी जाती है, 2 साल बाद फिर हम इसको रिव्यू करेंगे कि तुम्हारा क्या किया जाए। और पर इन आदमियों को जिनको ये बांग्लादेश का कार्ड दिया जाता है, ये हमारे आई कार्ड से रंग में फर्क होना चाहिए, केवल कार्ड को देखकर ही मालूम हो जाए कि ये बांग्लादेश का ये आदमी। और इस आदमी को 2 कंडीशन होनी चाहिए कि तुम हिंदुस्तान में रह सकते हो और अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हो, परंतु तुम वोट नहीं दे सकते और कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते। ये 2 कंडीशन उस पर इम्पोज की जाए और उसको सख्ती से लागू किया जाए कि मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीदोगे और तुम्हारा नाम इलेक्टोरल लिस्ट में नहीं होगा। तो इसपे हमें थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन भी रखना पड़ेगा और कालांतर में मैं कहता हूँ कि इस पे हमें बांग्लादेश से सख्ती से कहना पड़ेगा, देखिए आपके अभी भी हमारे पास 2.5 करोड़ 2 करोड़ जितना भारत सरकार का आंकलन हो इतने आदमी है, या तो आप इन्हें वापस लीजिए या इसके बदले में हमें जमीन दीजिए। और वो जमीन हम मांगे ठीक चिकन नेक के अगल बगल रंगपुर डिवीजन में मांगे, हमारा चिकन नेक की समस्या भी हल हो जाएगी और इन आदमियों को हम वहां बसाएं या जहां भी बसाएं, पर हम कहीं इतने आदमियों को रहने के लिए इतने वर्ग फुट हमें जमीन चाहिए, इतनी जमीन आपको देना पड़ेगा, तो सख्ती तो करनी पड़ेगी, या तो इनको वापस लो। तो एक स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा हमें और उसकी भी शायद नौबत कालांतर में आएगी। पर यह है कि इस समस्या का हमें निदान ढूंढना है, वरना ये तो हमारे ऊपर बोझ है आज की तारीख में।
0: जी प्रफुल्ल सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो अवैध रूप से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जब स्थानीय श्रम बाजार यानी लेबर मार्केट में शामिल होते हैं, तो रोजगार, सब्सिडी, राशन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सीमित सरकारी संसाधनों पर इसका जो असर पड़ रहा है वो एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए चुनौती है, और वो कितनी गंभीर समस्या बनते जा रही है भारत जैसे देश में जहाँ की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है।
4: देखिए, आज की भाषा में जैसे कहा जाता है कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, और डेमोग्राफी इज डेस्टिनी ये मोर रिलेवेंट हो जाता है जब आपकी डेमोक्रेसी, क्योंकि उस डेमोक्रेसी में आपको सरकार चुनने का भी अधिकार मिल जाता है और उस सरकार से दिए हुए योजनाओं का लाभ लेने का भी। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले और एक बिंदु मैं श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूँ।
0: जी,
4: 1983 में जो IMDT एक्ट बना, जनरल सिन्हा की रिपोर्ट ने उस पर बहुत डिटेल में ये दिया था, और वेंकैया नायडू उस समय मंत्री थे, मुझे स्मरण है, शायद ठीक बता रहा हूं, तो उन्होंने पार्लियामेंट में उसको लेकर स्टेटमेंट भी दिया था, गोडबोले कमेटी ने भी उसका रेफरेंस लिया था। IMDT एक्ट में एक बहुत बड़ा लूपहोल था। IMDT एक्ट में जो इलीगल व्यक्ति जो आया है वहां से, उसको अपनी नागरिकता प्रूव करने का कोई भी बंधन नहीं था। जो कंप्लेंट उसके विरोध में करेगा कि ये बाहर से आया हुआ है और ये भारत का नागरिक नहीं है, उस पर ओनस था कि वो ये प्रूव करे कि ये भारत का नहीं है। और ऐसे में भारत में स्वाभाविक रूप से मानसिकता होती है, और इसने भारत में एक कॉम्पिटिटिव वोट बैंक पॉलिटिक्स को जन्म दिया। शायद मुझे पता नहीं है जानबूझकर रखा गया था उस समय का, उसका क्या लॉजिक था, क्या कारण थे, लेकिन इसने इस समस्या को बढ़ाया। अब आपने जो पूछा कि सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो खाद्यान्न से जुड़ी हुई हो या अन्य योजनाओं का लाभ हो, इन सबके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन होता है, जिसका हक ये मारते हैं? भारत का जो गरीब तबका है, उसके अधिकारों का, उनके रिसोर्सेस का एक तरीके से ये इलीगल माइग्रेंट जो है, जो रोजगार के नाम पर या अन्य किसी नाम पर आते हैं, मैं नहीं मानता रोजगार पर, भारत के लोग नहीं जाते क्या रोजगार के लिए बाहर? लेकिन क्या वो इलीगल बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं? बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं तो भी भारत उनको स्वीकार करता है। ऐसी कुछ घटनाएं बाहर के देशों में हुई तो हमने कहा कि भाई हम उनको कोई भारत बढ़ावा नहीं देता है। तो हमको वही नीति हमारे पड़ोसी देशों के बारे में, या भारत और नेपाल के बीच में बहुत सारे लोग आते जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक प्रावधान बना हुआ है, कायकाज दिखाकर वो आते हैं, वर्क परमिट के नाते यहाँ पे रहते भी है। तो मुझे लगता है इसका जो परिणाम होता है वो स्थानिक संसाधनों पर होता है, सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के कारण होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर होता है, और खास करके असम में जो समस्या आई, स्थानिक संस्कृति, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सा सारे जंगलों के और अभी पूर्वोत्तर के बहुत राज्यों में ही आ रहा है, जहां पे भारत के सामान्य व्यक्ति को भी जाने के लिए एक परमिट लेना पड़ता है, इनर लाइन परमिट जिसको कहते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पर आकर बैठ गए हैं, वहां के जंगल संसाधनों का नुकसान कर रहे हैं। तो ये हमारा मल्टीपल रिसोर्सेस का एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन भी है, उन पर स्ट्रेन भी है। तो मुझे लगता है कि ये भी डायमेंशन हमको, जब हम रिलीजियस इम्बैलेंस तो है ही, वो इम्बैलेंस क्रिएट होता है जिसके कारण समाज में एक तनाव पैदा होता है, लेकिन सांस्कृतिक और आर्थिक साधनों के आधार पर भी ये घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या सीमावर्ती क्षेत्र में बनी हुई है, जिसके कारण इस समिति का गठन करना पड़ा है।
0: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने भी कहा है कि बाहर से आए हुए लोग देश की समस्या के साथ साथ असम के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
6: आई थिंक चैलेंज हैज बिकम मोर ग्रेव दैट डेमोग्राफिक पैटर्न इज चेंजिंग फास्ट। टुडे ऑलमोस्ट 40% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन विल बी फ्रॉम दोज हु हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। Legalities apart, today Assamese is marginalized in our own land, our culture is marginalized in our own land, economy is fast shifting to those people who were never associated with our culture and with our history. So the silence continue, but one good thing is that there is a collective spirit today to face the challenge, and I am sure that our new generation will fight, will keep on fighting, and God will bless us, will survive.
0: प्रफुल जी, आप बहुत समय से भारत के अलग अलग विषयों पर पैनी नजर रखते हैं। ये जो समिति बनी है और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से इसकी घोषणा की थी, क्या लगता है कि इस समिति के बनने से क्या कुछ बदलने वाला है निकट भविष्य में?
4: देखिए, मुझे इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव लग रहा है बंगाल के चुनाव के बाद, मुझे लगता है एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन से भी ज्यादा इसमें अलग अलग स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन की बड़ी समस्या रहती थी। बांग्लादेश से एंटर कर रहे हैं असम में जा रहे हैं, असम से एंटर कर रहे हैं बिहार तक पहुंच रहे हैं या झारखंड तक पहुंच रहे हैं, और ऐसे में फिर एक राज्य दूसरे राज्य पर ये चीज धकेल देता था कि ये तो हमारी समस्या नहीं है, ये तो आपको रोकना है, और फिर ये वहां का राज्य केंद्र पर कि ये तो आपको बीएसएफ के लेवल पर हैंडल करना चाहिए, लेकिन बॉर्डर की जो लैंड है वो पोरस रखेंगे, उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे बीएसएफ को। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो था। आज अभी राजनीतिक स्तर पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री ये निर्णय ले पाए, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण आज ये है कि इस सीमावर्ती क्षेत्र में झारखंड छोड़कर लगभग सारे हिस्सों में सत्ताधारी दल एक ही है, और या वो एनडीए का हिस्सा है या भाजपा से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में ये समन्वय ऐसे ही हुआ था। नक्सलवादी समस्या के बारे में तुरंत बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते थे, और फिर छत्तीसगढ़ का ये कहता था नहीं मध्य प्रदेश की समस्या है, मध्य प्रदेश वाला कहता था तो उसने क्राइम तो हमारे यहाँ पे नहीं किया है, वो तो महाराष्ट्र भाग गया है। तो ऐसे में पहली मीटिंग जब की थी गृहमंत्री, मुझे याद है चारों राज्यों के गृहमंत्री और डीजीपी को लेकर मीटिंग की थी। अब ये समन्वय संभव हो पाएगा, केंद्र सरकार ने जब ये समिति बनाई है तो मुझे लगता है समिति एक तो इसका समग्रता से अध्ययन करेगी, पिछले रिपोर्ट्स के आधार पर इसका एक जिसको हम कह सकते हैं क्लियर पिक्चर इसके कारण सामने आएगा। दूसरा, मुझे लगता है कि इसके समस्या के निराकरण के लिए भी नीतिगत सीधा सीधा एक मुझे लगता है कि क्लियर कट पिक्चर सरकार के सामने भी आएगा कि नीतिगत विषय में इसको आगे कैसे बढ़ाना है, और समन्वय के नाते कौन कौन सी एजेंसी की क्या क्या भूमिका रहेगी, ये भी स्पष्टता इस समिति के गठन के कारण आने की संभावना है। तो आने वाले जैसे शब्द थीम चले डिटेक्ट डिलीट एंड डिपोर्ट, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम डिटेक्शन और आने वाले कालखंड में इसको फिर से और आगे ना बढ़े, ये इलीगल माइग्रेशन ना बढ़े, जो है उनको डिटेक्ट करके क्या करना है वो तो है ही, लेकिन वो ना बढ़े इसके लिए क्या हो, इसके लिए निश्चित रूप से हमको एक नीतिगत दिशा मिलने की संभावना इस समिति से बनेगी, यह मेरा विश्वास है।
0: जी हाँ बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल अगर होगा तो इस चुनौती से पार पाया जा सकता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
5: सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित करें, कलेक्टर को सूचित करें, एसपी को सूचित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें।
0: प्रकाश जी, एक और सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि 2014 के बाद इस समस्या को लेकर वर्तमान केंद्र सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की हैं और उसी दिशा में इस समिति का गठन भी है, कैसे देखते हैं पिछले 12 वर्षों के मौजूदा सरकार के प्रयासों को घुसपैठियों और ये जो डेमोग्राफिकल चेंज है इससे पार पाने की दिशा में?
2: देखिए, समस्या की गंभीरता को समझा गया है, उसको स्वीकारा गया है और उसके निदान के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, ये तो यहाँ तक तो सार्थक है। अब हमें अपनी लॉ इन्फोर्समेंट मशीनरी से ये काम लेना पड़ेगा और ये काम मतलब वर्तमान सरकार लेने में सक्षम है। उन्होंने नक्सलियों को कहा कि हम मार्च 2026 तक खत्म कर दें, उन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस समस्या के लिए भी उनको कुछ टारगेट रखना पड़ेगा और इसकी मंथली ईयरली या क्वार्टरली कुछ चीज की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। हम पहले ये एस्टिमेट बनाए कि हर स्टेट में कितने कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उसके बाद हर स्टेट पे कहें कि इस महीने में आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, इनको कितने को डिटेक्ट किया, कितने होल्डिंग सेंटर में है, किनको डिपोर्ट करने के लिए क्या कार्रवाई की, इसका रेगुलर मॉनिटरिंग होनी पड़ेगी। इसमें सख्ती बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार करने में सक्षम है, इन्होंने नक्सल समस्या पे विजय पा ली है, तो इस समस्या का भी ये समाधान प्रभावी ढंग से ढूंढ सकते हैं, इसके लिए सख्ती करनी पड़ेगी और मैं समझता हूँ कि सरकार ये सख्ती कर सकती है।
0: प्रफुल्ल जी, कार्यक्रम के अंत में एक और सवाल बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया और फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क, आपको क्या लगता है ये घुसपैठ को बढ़ाने में कितनी भूमिका निभा रहे हैं?
4: देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि इसकी जुड़ी हुई एक इकोनॉमी है, ये केवल फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क नहीं है, ये फेक करेंसी नेटवर्क है, ये ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, इसमें आर्म्स के ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है और एक क्रिमिनल सिंडिकेट के रूप में ये काम करता है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से जिम्मेदार है और आज के जमाने में सोशल मीडिया इसको एम्पलीफाई करता है ह्यूमैनिटेरियन के नाम पर। जैसे ही ऐसी कुछ केसेस होती है, डिपोर्टेशन के लिए कुछ बात बढ़ती है, तो सोशल मीडिया में एक्टिविज्म चलता है, राजनीतिक कारणों से भी चलता है, कुछ धार्मिक कारणों से भी चलता है, कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरसीज के द्वारा भी चलता है। तो ऐसे में एक बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी देश के लिए किसी भी इलीगल माइग्रेंट्स के विरोध में सख्त कदम लेना। और आज जब टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग एक अच्छा उपयोग हो सकता है गवर्नेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे सीसीटीवी कैमरेज के रूप में, चाहे सेंसर्स के रूप में, हम बहुत सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सिंडिकेट्स डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि जब अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज के बारे में सोचा जाएगा तो इसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मीडिया एक्टिविज्म के एस्पेक्ट्स और अन्य जो इससे जुड़े हुए सिंडिकेट और क्रिमिनल एस्पेक्ट्स है, इस पर भी मुझे लगता है ये समिति सोचेगी भी और उस पर कुछ उपाय योजना भी सरकार को बताएगी।
0: सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ जवानों की जिम्मेदारी नहीं होती, ये पूरे राष्ट्र की सामूहिक चेतना का विषय है। जनसंख्या परिवर्तन और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे केवल आंकड़ों की बहस नहीं है, इनका सीधा संबंध देश की सामाजिक स्थिरता, आर्थिक संसाधनों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से है। आज की चर्चा ने यह साफ कर दिया है कि चुनौती केवल सीमा पार से आने वालों की नहीं बल्कि उस सोच की भी है जो राष्ट्रीय हित से ऊपर व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ को रख देती है। जरूरत है सजग नीति की, मजबूत सीमा प्रबंधन की और सबसे बढ़कर जागरूक समाज की। प्रफुल्ल केतकर जी आपका, प्रकाश सिंह जी आपका, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
7: चर्चा का विषय है।
8: नमस्कार,
9: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए पहले सुनिए पंडित राजन मिश्रा, पंडित साजन मिश्रा का गायन, राग है जय जयवंती।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप आनंद ले रहे हैं पंडित राजन मिश्रा साजन मिश्रा के गायन का। अभी आपने राग जयजयवंती में गायन सुना। लीजिए सुनिए राग अडाना में गायन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित राजन मिश्रा साचन मिश्रा का गायन। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। चित्रपट संगीत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मेरी हुजूर फिल्म का गीत अभी आपने सुना, हसरत जयपुरी के बोल थे, संगीत शंकर जयकिशन का था। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में बरसात की रात फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार रोशन।

शंकर जयकिशन की बनाई तर्ज पर लीजिए संगीत शैलेंद्र का लिखा गीत। ये गीत हमने लिया है लाट साहब फिल्म से। आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की।

0: छुप जा।
1: चित्रपट संगीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में जोगी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, संगीत रवि का था। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर का गाया गीत। ये गीत हमने लिया है आकाशदीप फिल्म से। मजरूह सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला है चित्रगुप्त ने।

रवि के संगीत निर्देशन में शकील बदायनी का लिखा गीत लीजिए सुनिए। दूर की आवाज़ फिल्म का ये गीत है। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने।

और दोस्तों ये है आज के कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में ये है जिगरी दोस्त फिल्म का गीत। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट संगीत एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिलीज किए जाएंगे।

0: साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय मालिया बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
0: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उल जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि यह पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: the gold medal. And that is the end of this news bulletin.
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11:10